0: घड़ी मिला लीजिए, इस वक्त सुबह के ठीक 5 बजे हैं।
1: आपकी खट्टी मीठी यादों में आपके संग MVC रेडियो

प्रभात आराधना हर सुबह 5 से 6 बजे तक भक्ति के मधुर सुरों में कीजिए ईश्वर की आराधना रेडियो मॉरिशस पर।

ईश्वर की आराधना के इन मधुर सुरों के साथ प्रभात आराधना का ये सफर यही समाप्त होता है। कल फिर मिलेंगे सुबह 5 बजे भक्ति के नए गीतों के साथ रेडियो मॉरिशस पर।

0: सुंदर है संक्षिप्त समाचार आपसे आस्था। नमस्कार।
1: नमस्कार। 6 बजे के प्रथम समाचारों में स्वागत है आप सभी का। यह नया दिन हम सभी के लिए शुभ हो। व्यापार मंत्री माकेल सिक्योन ने कलेबन में आयोजित प्रेस वार्ता में विपक्ष नेता के बयानों का दिया जवाब। उन्होंने कहा कि एसटीसी और सीबी के बीच हुए समझौते में तय दरों का पूरी तरह पालन किया गया है। मंत्री ने याद दिलाया कि यह समझौता वर्ष 2023 में हुआ था। उस समय जुली रोंगा ऊर्जा मंत्री थे। माकेल सिक्योन ने विपक्ष के आरोपों पर सवाल उठाते हुए सरकार की स्थिति को स्पष्ट किया है। मंत्री ने यह भी कहा कि एसटीसी रोजमर्रा के आवश्यक सामानों का आयात करेगी। इसके लिए जल्द ही टेंडर प्रक्रिया जारी की जाएगी। वर्ष 2011 में स्थापित मॉरिशस रीयूनियन कॉन्टैक्ट ग्रुप आज इलाकाई सुरक्षा सहयोग का एक मजबूत मंच बन चुका है। आंतरिक सुरक्षा, समुद्री सुरक्षा और न्यायिक सहयोग से जुड़े कई उपसमितियों के माध्यम से हर 6 महीनों में बैठकें आयोजित की जाती हैं। मुख्य उद्देश्य हैं इलाके में मादक पदार्थों की तस्करी और संगठित आपराधिक नेटवर्क पर प्रभावी प्रहार करना। इस वर्ष जुलाई में यूएस अफ्रीका बिजनेस समिट का 18वां संस्करण मॉरिशस में आयोजित किया जाएगा। 4 दिनों तक मोशवासी गल्फ स्टेट अफ्रीका और अमेरिका के बीच उच्चस्तरीय और आर्थिक व्यवसायिक चर्चाओं का केंद्र बनेगा। आयोजकों के अनुसार इस सम्मेलन में 2500 से अधिक सरकारी प्रतिनिधि, उद्योग जगत के प्रमुख हस्तियां भी इसमें शामिल होंगी, जिनमें कम से कम 7 राष्ट्राध्यक्ष भी मौजूद रहेंगी। हर वर्ष सड़क हादसों में लगभग 11,90,000 लोगों की जान जाती है। दुनिया भर में हर दिन 3,000 से अधिक लोग सड़कों पर मौत का शिकार हो जाते हैं। ये चिंताजनक आंकड़े WHO ने जारी की हैं, जो वैश्विक स्वास्थ्य रुझानों पर निगरानी रखने वाली संयुक्त राष्ट्र की संस्था है। आज सड़क दुर्घटनाएं 5 से 29 वर्ष के युवाओं में मौत का सबसे बड़ा कारण बन चुकी है। ईरान में हुर्मुज समुद्री मार्ग में अमेरिका और ईरान के बीच तनाव फिर से तेज हो गया। ईरानी मीडिया के अनुसार क्षेत्र में विस्फोट और गोलीबारी की घटनाएं हुई, जबकि अमेरिकी सेना ने दावा किया कि उसके युद्ध पोतों पर ईरान की ओर से मिसाइल, ड्रोन और छोटी नौकाओं के जरिए हमले किए गए हैं। और अब चलिए जानते हैं मौसम का हाल। हमारे इलाके पर हल्की हवाओं का असर जारी है। पूर्वानुमान आज सुबह के दौरान देश के ऊंचाइयों पर रह रहकर बरसात हो सकती है। अन्य जगहों में दिन के दौरान धूप खिली रहेगी। रात को ऊंचे इलाकों पर मौसम खराब रहेगा, अन्य जगहों पर मौसम सुहाना रहेगा। तापमान, न्यूनतम तापमान सेंट्रल प्लाटू पर 17 से 19 डिग्री सेल्सियस, अधिकतम 25 से 27 डिग्री सेल्सियस। न्यूनतम साहली इलाकों पर 21 से 24, अधिकतम 29 से 31 डिग्री सेल्सियस के बीच होगा। हवा पूर्व दक्षिण पूर्व की दिशा से 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बहेगी। प्रवाह रेखा के परे समुद्र खराब रहेगा, विशेषकर दक्षिण पश्चिम में 2 मीटर ऊंची लहरें उठेंगी। समुद्र में नहीं निकलने की सलाह दी जाती है। सूर्योदय 6:28 पर, सूर्यास्त 5:44 पर होगा।
2: Your news on NBC Play, NBC Play, NBC Radio.TV, NBC Radio.

प्रणाम सुप्रभात श्रोतागण, घर मिलाते चलिए। इस समय सुबह के 6:04 हो चुके हैं। इस शुक्रवार 8 मई 2024 को 7वीं है पूजा। श्रोताओं, कहा जाता है सम्मान करना सीख लीजिए, ना जीवन वापस आता है ना आए हुए लोग, और कई बार स्वास्थ्य दवा लेने

0: पूछने से नहीं, हाल पूछने से भी ठीक हो जाती है। आइए इसी सुविचार के साथ कार्यक्रम का आरंभ करते हैं सुधा वृष्टि के साथ।
1: हिंदू महासभा की प्रस्तुति में आइए सुनिए कार्यक्रम सुधा वृष्टि।
2: हरि ओम तत्सत् लोकाभिरामं रणरांगधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं

वेगम जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयुत्तमोख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्री श्री सीतारामचन्द्राय नमः। श्रीरामदूताय नमः। श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः। ओम नमो भगवते सियाराम कृष्ण हरि नारायण। मेरे सभी श्रोता भाई बहनों को सादर नमस्कार। हिंदू महासभा की ओर से आज फ्राइडे 8 मई 2026 के सुधा वृष्टि कार्यक्रम में मैं बाबा जी गिरीश शर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज का विषय है पंचायतन, अर्थात पांच देवताओं की पूजा का महत्व एवं विधि। सनातन वैदिक पूजा पद्धति में किसी भी कार्य का शुभारंभ करने, अपनी नित्य कर्म यानी अपनी दैनिक पूजा जप अनुष्ठान करने तथा प्रत्येक मांगलिक कार्य में आरंभ में सुख समृद्धि प्रदान करने वाले पांच देवताओं की उपासना का विशेष महत्व है। वास्तव में एक ही परंपरा पांच इष्ट रूपों में पूजे जाते हैं। पद रत्नाकर में वर्णित है, एक परम प्रभु सच्चिदानंद परम तत्व है सर्वाधार सर्वातीत सर्वगत, वही अखिल विश्वमय रूप अपार, हरि हर भानु शक्ति गणपति है इनके पांच स्वरूप उदार, मान उपास्य उन्हें भजते जन भक्त स्वरुचि श्रद्धा अनुसार। परब्रह्म परमात्मा निराकार और अशरीरी है, अतः साधारण मनुष्यों के लिए उनके वास्तविक स्वरूप का बोध करना कठिन है। इसलिए उसी निराकार ब्रह्म ने साकार रूप में पांच देवताओं को उपासना हेतु प्रकट किए हैं, जिन्हें पांच महाभूत पंचदेव भी कहा जाता है। ये पंच महाभूत है श्री हरि विष्णु, भगवान शिव, गणपति जी सूर्य नारायण और पराशक्ति जगदम्बा। उपासना तत्व में कहा गया है आदित्यानाम गणानामश्च देवी रुद्रमश्च केशवम पंचदैवत्यभियुक्तम सर्वकर्मस्तु पूजेत एवं यो भजते विष्णु रुद्र दुर्गा गणाधिपम भास्करमश्च निध्यानित्यमश्च कदाचिन सीदति। अर्थात सूर्य, गणेश, देवी, रुद्र और विष्णु, ये पांच देव सभी कार्यों में पूजनीय है। जो श्रद्धा और भाव से इनकी आराधना करता है वे कभी हीन नहीं होता, उसका यश पुण्य और प्रतिष्ठा सदैव बनी रहती है। वेद पुराणों में पंचदेवों की उपासना को अत्यंत आवश्यक और फलदायी बताया गया है। इसके दो मुख्य कारण हैं। प्रथम कि ये पांच महाभूत जो है वह पंचभूतों यानी आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी के अधिष्ठाता है। गणेश जी जल तत्व के अधिपति माने गए हैं, इसलिए उनकी सर्वप्रथम पूजा का विधान है, क्योंकि सृष्टि के आदि में सर्वत्र जल तत्व ही विद्यमान है। शक्ति यानी देवी जगदम्बा वह अग्नि तत्व की अधिष्ठात्री है, अतः भगवती देवी की पूजा अग्नि कुंड में हवन के माध्यम से करने का विधान है।

0: भगवान शिव पृथ्वी तत्व के अधिपति है, इसलिए उनकी पार्थिव पूजा शिवलिंग के रूप में की जाती है। श्री हरि विष्णु आकाश तत्व के अधिपति है, अतः उनकी स्तुति शब्दों, मंत्रों और नाम स्मरण द्वारा करने का विधान दिया गया है। दूसरा कारण यह है कि इनके नामों का अर्थ ही इनके परब्रह्म स्वरूप को दर्शाता है। विष्णु अर्थात सर्वव्यापक, शिव अर्थात कल्याणकारी, गणेश अर्थात समस्त गुणों के स्वामी, सूर्य अर्थात सर्वगत यानी सभी जगह जानने वाले, और शक्ति अर्थात सामर्थ्य। संसार में देव पूजा को स्थायी बनाए रखने के उद्देश्य से महर्षि वेदव्यास जी ने विभिन्न देवताओं के लिए अलग अलग पुराणों की रचना की। अपने अपने पुराणों में इन देवताओं को सृष्टि का सृजन करने वाला, पालन करने वाला और संहार करने वाला अर्थात परब्रह्म बताया गया। जैसे विष्णु पुराण में श्री हरि विष्णु को, शिव पुराण में भगवान शिव को, गणेश पुराण में गणेश जी को, सूर्य पुराण में सूर्य नारायण भगवान को तथा शक्ति पुराण में आदि शक्ति को परब्रह्म माना गया है। अतः मनुष्य अपनी रुचि, श्रद्धा और भावना के अनुसार किसी भी देवता की उपासना करें, अंततः उपासना एक ही परम ब्रह्म की होती है, क्योंकि पंचदेव उसी ब्रह्म को साकार स्वरूप है। उनकी आराधना में वास्तव में उसी परब्रह्म का ध्यान होता है जो इष्ट देव में स्थित होकर साधक को मनवांछित फल प्रदान करता है। वही एक परमात्मा अपनी विविध विभूतियों में स्थित होकर भिन्न भिन्न रूपों में प्रकट होते हैं। वास्तव में न कोई देवता बड़ा और न कोई छोटा, सभी उसी एक परम सत्य के विध विध प्रकाश स्वरूप माने जाते हैं। पंचायतन पूजा में अपने इष्ट देव को यानी जिसके प्रति हमारा मन कुछ ज्यादा लगाव करते हैं उसको मध्य में स्थापित कर अन्य चारों देवताओं को चारों दिशाओं में नियम अनुसार स्थापित किया जाता है। यह व्यवस्था केवल पूजा की विधि नहीं बल्कि सृष्टि के संतुलन और आध्यात्मिक सामंजस्य को प्रतीक करता है। यदि देवताओं की स्थापना शास्त्रीय विधि के अनुसार ना किया जाए तो साधना में बाधाएं उत्पन्न हो सकती है। एक उपास्य देव ही करते लीला विविध अनंत प्रकार, पूजे जाते वे विभिन्न रूपों में जिन जिन रुचि अनुसार। जो श्री हरि विष्णु भगवान की उपासना करते हैं वह वैष्णव कहलाते हैं। शिव के उपासक शैव के नाम से जाने जाते हैं। गणपति के उपासक गणपत्य कहलाते हैं। सूर्य के उपासक सौर होते हैं और शक्ति के उपासक शाक्त कहलाते हैं। इनमें शैव, वैष्णव और शाक्त विशेष रूप से प्रसिद्ध है। इन्हीं पंच देवों के विधविध नाम और रूप भी अन्य देवी देवताओं के रूप में प्रकट होते हैं, जैसे शालग्राम भगवान, शिवलिंग, लक्ष्मी नारायण, सत्यनारायण, गोविंद देव, सिद्धि विनायक, हनुमान, भवानी, सरस्वती, भैरव। यह सभी देवी देवता वास्तव में इन्हीं पंच देवों के विभिन्न रूप, स्वरूप और नाम अंतर है। इस प्रकार सभी उपासनाएं अंततः उसी एक परमात्मा की ओर ले जाने वाले जो भिन्न भिन्न रूपों में भक्तों के सन्मुख प्रकट होकर उनकी श्रद्धा अनुसार उन्हें अनुग्रह करते हैं। अब किस देवताओं को किस दिशा में रखना चाहिए? जब हम पंचदेव उपासना की बात करते हैं इनमें पांच देवता भगवान विष्णु, शिव जी, गणेश जी, सूर्य भगवान, दुर्गा माता, यह एक समान पूजनीय माने जाते हैं, परंतु इनके दिशाएं अलग बताई गई है। अपने पूजा गद्दी पर यानी अपने पूजा स्थल पर मध्य में अपने इष्ट देव को स्थापित करके शेष चार देवताओं को चारों दिशाओं में नियम अनुसार स्थापित किया जाता है। यही व्यवस्था पंचायतन कहलाती है। शास्त्रों में इनकी एक निश्चित विधि बताई गई है जिसे पंचायतन विधि कहते हैं। जो भगवान शिव की उपासना करते हैं, जो वैष्णव है, वैष्णव परंपरा में मध्य में भगवान विष्णु होते हैं, ईशान कोण यानी नॉर्थ ईस्ट में भगवान शिव होते हैं, अग्नेय कोण यानी साउथ ईस्ट में गणेश जी, नैऋत्य कोण साउथ वेस्ट में सूर्य, और वायव्य कोण यानी नॉर्थ वेस्ट में शक्ति होते हैं। जो सूर्य की उपासना करते हैं वह अपने पूजा गद्दी में मध्य में सूर्य को स्थापित करते हैं, फिर ईशान कोण में भगवान शिव, अग्नेय कोण में गणेश जी, नैऋत्य में भगवान विष्णु और वायव्य कोण में देवी को स्थापित करते। अब जो देवी की उपासना करते हैं वह अपने पूजा गद्दी में देवी को मध्य में स्थापित करते हैं, और ईशान कोण में विष्णु आ जाते हैं, अग्नेय कोण में शिव जी आ जाते हैं, नैऋत्य कोण में गणेश जी और वायव्य कोण में सूर्य भगवान। जो शिव जी की उपासना करते हैं वह मध्य में शिव जी को स्थापित करते हैं, फिर ईशान कोण में विष्णु जी, आग्नेय कोण में सूर्य भगवान, नैऋत्य कोण में गणेश जी और वायव्य कोण में जगदम्बा को। और जो गणेश जी की उपासना करते हैं अपने पूजा गद्दी में मध्य में श्री गणेश जी की स्थापना करते हैं, और ईशान कोण में भगवान विष्णु, आग्नेय कोण में शिव जी, नैऋत्य कोण में सूर्य भगवान और वायव्य कोण में शक्ति की स्थापना करते हैं। शास्त्रों के अनुसार यदि देवताओं को अनेक रूपों में और उनके नियमित स्थान पर स्थापित ना किया जाए तो साधक के जीवन में दुख, शोक और भय उत्पन्न हो सकते हैं। इसलिए स्थापना सदैव विधि और श्रद्धा के अनुसार तथा विधि पूर्वक होनी चाहिए। देवता चाहे एक हो या अनेक हो, तीन हो या 33 करोड़ हो, उपासना की परंपरा में पंच देवों की ही विशेष प्रतिष्ठा है। इनमें भी गणेश जी का पूजन अनिवार्य माना गया है। यदि अज्ञानवश गणेश जी का पूजन ना किया जाए तो विघ्नहर्ता गणेश जी उस पूजा का पूर्ण फल हर लेते हैं। पंचदेवों की उपासना में हमें यह शिक्षा मिलती है कि ईश्वर एक ही है, परंतु उनकी उपासना के अनेक रूप है, और वह केवल धार्मिक आस्था का प्रतीक नहीं अपितु वह संतुलन, एकता और पूरे सृष्टि का संचालन करने वाला माने जाते हैं। सो हमें सदैव अपने पूजा विधि में इन पंच देवताओं की पूजा करनी चाहिए, और पूरे निष्ठा के साथ, पूरे भेदभाव को त्याग करके और पूरे श्रद्धा के साथ हमें इनकी पूजा करनी चाहिए। चलिए आप अपनी साधना में सदैव इन पंच देवों की पूजा करते रहें और अपनी साधना को सफल करें। आज के कार्यक्रम को मैं यहीं विराम देता हूं। आपकी ध्यान के लिए बहुत धन्यवाद। ओम सत्यम शिवम सुंदरम, ओम शांति ही शांति ही शांति ओम, श्री सीताराम चंद्रार्पणमस्तु, साधुवाद, जय श्री हरि।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सुधा वृष्टि हिंदू महासभा द्वारा। महाराणा प्रताप दिवस पर आइए सुनिए यह विशेष कार्यक्रम।
2: ओम स्वस्ति रिद्धि प्रपथे श्रेष्ठा ऋग्न स्वस्त्यभि या वाममेति सा नो अमासो अरणे निपातु स्वावेशा भवतु देव गोपा। अर्थ है, जो कल्याण निश्चय करके ऐश्वर्य से युक्त सर्वोत्तम मार्ग पर प्राप्त करने योग्य अच्छे भावों को, अच्छे कर्मों को और अच्छे गुणों को प्राप्त कराता है, वही सर्वत्र हमारी रक्षा करे। ओम शांति शांति शांति। गहलोत राजपूत महासभा की ओर से मैं पंडित आजवंती पियती इस विशेष कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत है। महाराणा प्रताप आज का मेरा विषय है। 9 मई 1540 को राजस्थान के कुंभलगढ़ किले में प्रताप सिंह का जन्म हुआ था। उनके पिता का नाम महाराजा उदय सिंह द्वितीय और माता का नाम महारानी जयवंताबाई था। कुंभलगढ़ कोई आम रहने वाला महल नहीं था, बल्कि यह एक बहुत ही मजबूत और सुरक्षित सैन्य किला था, जो अरावली के ऊंचे पहाड़ों के बीच बना हुआ था। एक ऐसे सुरक्षित और कठोर माहौल में पैदा होने का सीधा असर प्रताप की शुरुआती सोच पर

थी, लेकिन जयवंताबाई ने प्रताप को शासन की असलियत समझाई। उन्होंने प्रताप को सिखाया कि एक शासक का काम केवल युद्ध के मैदान में लड़ना नहीं होता, बल्कि उसे यह समझाना होता है कि उसकी आम जनता अपना जीवन कैसे जी रही है। प्रताप का बचपन महलों की सुख सुविधाओं से ज्यादा बाहर की दुनिया को समझने में बीता। बचपन के दिनों में प्रताप ने अपना एक बहुत बड़ा समय अरावली के घने जंगलों में रहने वाले भील समुदाय के लोगों के बीच बिताया। भील लोग वहां के स्थानीय आदिवासी थे और प्रताप को प्यार से कीका कहकर बुलाते थे। प्रताप की सोच एक केंद्रीकरण के बिल्कुल खिलाफ थी, जहां पर मुगल सम्राट के विचार थे। प्रताप का मानना था कि मेवाड़ की भौगोलिक स्थिति, वहां के पहाड़, वहां के जंगल और वहां की खेती का तरीका दिल्ली या आगरा के मैदानी इलाकों से बहुत अलग हैं। नरेश प्रताप यह मानते थे कि मेवाड़ के किसान और व्यापारी जो भी मेहनत करते हैं और जो भी पैसा कमाते हैं, उसका इस्तेमाल मेवाड़ के ही विकास में होना चाहिए। अगर वे मनसबदारी व्यवस्था का हिस्सा बन जाते हैं तो मेवाड़ का सारा पैसा कर के रूप में आगरा चला जाएगा और बदले में मेवाड़ के लोगों को कोई खास फायदा नहीं होगा। प्रताप की यह सोच आधुनिक समय के स्थानीय स्वशासन यानी डिसेंट्रलाइजेशन के विचार से बहुत मिलती जुलती है। वे मानते थे कि स्थानीय कहानी में लोगों को अपने इलाके के फैसले खुद लेने का पूरा अधिकार होना चाहिए, और जिस प्रकार से मुगल सम्राट चाहते थे अपने हिसाब से सभी को केंद्रीय व्यवस्था बनाते थे, तो प्रताप इस आर्थिक व्यवस्था को बहुत अच्छी तरह समझते थे। वे जानते थे कि अगर मुगलों का मेवाड़ पर अधिकार हो गया तो मेवाड़ के लोग अपने ही इलाके से गुजरने वाले व्यापार से होने वाली कमाई से हाथ धो बैठेंगे और वे पूरी तरह से दिल्ली पर निर्भर हो जाएंगे। इस वैचारिक टकराव के बीच प्रताप के जीवन में बहुत बड़ा मोड़ आया। प्रताप के पिता उदय सिंह ने स्थिति को समझते हुए व्यावहारिक फैसला लिया कि किले के अंदर बंद रहकर लड़ना समझदारी नहीं है, क्योंकि मुगलों के पास बहुत बड़ी तोपें थी और पत्थर की दीवार को गिरा सकती हैं। इसलिए सम्राट उदय सिंह ने चित्तौड़गढ़ को छोड़ दिया और वे अरावली के अंदरूनी हिस्सों में चले गए, जहां उन्होंने उदयपुर का एक नया शहर बनाया, उदयपुर नाम का नया शहर बसाया। उस समय प्रताप की उम्र लगभग 27 साल की थी। पहली मार्च 1572 को गोगुंडा नाम की जगह पर मेवाड़ के सभी प्रमुख लोग और मंत्री इकट्ठे हुए, जहां सर्वसम्मति से प्रताप को मेवाड़ का नया महाराणा चुन लिया। प्रताप ने इस पद को स्वीकार कर लिया। प्रताप का राजा बनना इस बात का एक बहुत बड़ा सबूत है कि उस समय मेवाड़ के लोग योग्यता और क्षमता को जन्मसिद्ध अधिकार से ज्यादा महत्व देते थे। प्रताप का एक बहुत ही शांत और कूटनीति के सोच वाले व्यक्ति थे। वे अच्छी तरह जानते थे कि युद्ध अंतिम विकल्प होना चाहिए। प्रताप जी को सम्राट मुगल द्वारा भेजे गए लोभ, लालच और धन दौलत पद प्राप्ति का लोभ, उन्हें जो भेजे गए वो सब वापस लौट गए। प्रताप ने उनका बहुत ही, जो लोग आए थे उनसे मिलने के लिए, पद आदि देने के लिए, तो बहुत सम्मानजनक तरीके से स्वागत करके उनके साथ लंबी राजनीतिक चर्चा की और वे लोग वापस खाली हाथ लौट गए।
नरेश प्रताप जी ने कहा था कि वे अपने किसानों और स्थानीय व्यापारियों पर दिल्ली से बनाए गए ऐसे नियम लागू नहीं होने दे

0: सकते जो मेवाड़ की जमीन और यहाँ के लोगों के काम करने के तरीके से मेल नहीं खाते हो। उन्होंने दरबारी के स्तर पर एक समझौते का प्रस्ताव रखा। प्रताप की अपनी यह पक्की सोच थी कि केवल अपने राज्य को बचाने या राजनैतिक फायदे के लिए पारिवारिक और वैवाहिक संबंधों का इस्तेमाल करना सही नीति नहीं है। प्रताप ने फिर से वही बात दोहराई कि वे शांति के पक्ष में हैं, लेकिन किसी के अधीन होकर नहीं। सबसे अंत में 1573 के आखिरी महीनों में राजा मुगल सम्राट ने अपने सबसे योग्य वित्त मंत्री राजा को यहाँ पर प्रताप के पास भेजा। फिर भी वे भी अंत में खाली लौट गए। हर स्थिति में राजपूतों का यही मानना है और कहना भी है कि ये समस्त राजपूताना हमारी मातृभूमि है, और जब कोई संतान अपनी माँ की रक्षा करती है तो वह अपना कर्तव्य पूरा करती है और कर्तव्य ऋण से कहीं आगे कहीं ऊपर होता है। जिस धरती को राणा सांगा पन्ना का वरदान मिला, मीरा के एक तारे को गिरधर नागर का गान मिला, मातृभूमि पर शीश कटाने की जब भी बारी आई, हिंदुस्तान में सबसे आगे प्यारा राजस्थान मिला। जय राजस्थान, जय नरेश महाराणा प्रताप। ओम शांति शांति शांति।
1: अभी आप सुन रहे थे महाराणा प्रताप दिवस पर यह विशेष कार्यक्रम।

0: 819 किलोहर्ट्ज़, ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस।
1: सुबह ठीक ठीक 6:30 बज रहे हैं, समाचार सुनिए। नमस्कार, 8 मई की सुबह है, ये नया दिन हम सभी के लिए शुभ हो। शुरू करते हैं आज की सुर्खियों के साथ। व्यापार मंत्री माकिया सिक्वेन ने एबन में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में विपक्ष नेता के बयानों का दिया जवाब। उन्होंने कहा कि एसटीसी और सीईबी के बीच हुए समझौते में तय दरों का पूरी तरह पालन किया गया है। वर्ष 2011 में स्थापित मॉरिशस रीयूनियन कॉन्टैक्ट ग्रुप आज इलाकाई सुरक्षा सहयोग का एक मजबूत मंच, आंतरिक सुरक्षा, समुद्री सुरक्षा और न्यायिक सहयोग से जुड़े कई उप समितियों के माध्यम से 6 महीनों में बैठकें आयोजित की जाती हैं। इस वर्ष के जुलाई महीने में यूएस अफ्रीका बिजनेस समिट का 18वां संस्करण मॉरिशस में लगने वाला है। 4 दिनों तक अफ्रीका और अमेरिका के बीच उच्चस्तरीय आर्थिक और व्यापारिक चर्चाओं का केंद्र ये मंच बनेगा। हर वर्ष सड़क हादसों में लगभग 11,90,000 जानी जाती हैं, ये चिंताजनक आंकड़े WHO ने जारी किए, जो वैश्विक स्वास्थ्य रुझानों पर निगरानी रखने वाली संयुक्त राष्ट्र की संस्था। बुधवार 6 मई तक मॉरिशस में चिकनगुनिया के 147 मामले दर्ज। वर्ष की शुरुआत से अब तक कुल मामलों की संख्या 2,740 तक पहुंच चुकी है। हुर्मुज में अमेरिका और ईरान के बीच तनाव फिर से बढ़ चुका है। ईरानी मीडिया के अनुसार क्षेत्र में विस्फोट और गोलीबारी की घटनाएं सामने आई हैं। नमस्कार, व्यापार मंत्री माकिया सिक्वेन ने कल एबेन में आयोजित प्रेस वार्ता में विपक्ष नेता जुलिस रोंगो के बयानों का दिया जवाब। उन्होंने कहा कि स्टेट ट्रेडिंग कॉरपोरेशन और सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के बीच हुए समझौते में तय दरों का पूरी तरह पालन किया गया है। मंत्री ने याद दिलाया कि यह समझौता वर्ष 2023 में हुआ था, उस समय जुलिस रोंगो ऊर्जा मंत्री थे। माकिया सिक्वेन ने विपक्ष के आरोपों पर सवाल उठाते हुए सरकार की स्थिति को स्पष्ट किया। मंत्री को सुनते हैं, उनसे बात की राजमिता सीतामणि ने। पूजा सुकालु का विवरण है।
2: Il y a probablement un agrément, nous ne respectons le prix de cet agrément-là. Il peut faire comment dire, la CEB paie mon tarif à cause de la STC, une facture plus chère. À aucun moment ça. Nous ne respectons le contrat.
1: मंत्री ने यह भी कहा कि एसटीसी रोजमर्रा के आवश्यक सामानों का आयात करेगी, इसके लिए जल्द ही टेंडर जारी किए जाएंगे। मंत्री को सुनते हैं।
2: La STC peut faire un produit de base et pour certains produits qui la STC peut faire, nous disposer tiers un maximum markup, nous faire vivre une lagée ouverte et la STC ce prix bien parmi les moins chers. Ça veut dire nous donne le choix au public. Si on vient STC, au problème, mais si on vient STC, vous marquez STC.
1: वर्ष 2011 में स्थापित मॉरिशस रीयूनियन कॉन्टैक्ट ग्रुप आज क्षेत्रीय सुरक्षा सहयोग का एक मजबूत मंच बन चुका है। आंतरिक सुरक्षा, समुद्री सुरक्षा और न्यायिक सहयोग से जुड़े कई उप समितियों के माध्यम से हर 6 महीने में बैठकें आयोजित की जाती है। मुख्य उद्देश्य है इलाके में ड्रग्स की तस्करी और संगठित आपराधिक नेटवर्क पर प्रहार करना। इस वर्ष FCC भी इस समूह से जुड़ गई है ताकि मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ लड़ाई को और मजबूत किया जा सके। पोर्टली में कल लाइन बाराक्स में आयोजित एक बैठक के दौरान गृह मामलों के सचिव दोहिंग फोंग वेन पुहन ने कहा कि इस क्षेत्रीय सहयोग से तस्करों और अपराधियों को अब सजा से बचने का अवसर नहीं मिलेगा। गीता सुनार।
3: ये रिपोर्ट पिछले 24 अप्रैल को फ्रेंच समाचार बुलेटिन में चलाई गई थी, जब मॉरिशस और रीयूनियन के बीच सहयोग की बदौलत ड्रग्स जब्त किए गए थे। 1 महीना पहले ये रिपोर्ट चलाई गई थी, जब समुद्र में ये ड्रग्स जब्त किए गए थे। ड्रग तस्करी के खिलाफ संघर्ष में रीयूनियन और मॉरिशस के बीच सहयोग को ये दर्शाता है। अंदरूनी सुरक्षा पर एक सब कमेटी की बदौलत दोनों देश जानकारियों का आदान प्रदान करते हैं। इससे समुद्र में संदिग्ध गतिविधियां पाए जाने पर संसाधनों को एकजुट किया जाता है। अंदरूनी मामलों की सचिव फोंग वेंग पुरन कहती हैं, हर सब कमेटी में एक मुख्य मुद्दा होता है, रीयूनियन का, मॉरिशस का, और हम वास्तविक समय में जानकारियों का आदान प्रदान करते हैं। यही नयापन है। मॉरिशस और रीयूनियन के बीच कई जानकारियां बांटने से ये नतीजे सामने आते हैं। इस गुरुवार को मॉरिशस और रियूनियन के बीच कॉन्टैक्ट ग्रुप के सदस्यों ने लैंड बराक्स में एक बैठक लगाई।

0: आई, जिसमें ड्रग तस्करी और मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ संघर्ष का फॉलोअप किया गया। जांच में जटिलता के चलते सहयोग जरूरी है, पुलिस कमिश्नर रामप्रसाद सुरजपाली कहते हैं। आपराधिक गिरोह प्रणाली की कमियों का फायदा उठाते हैं, इसलिए हमें वैश्विक एकाग्रता और संचालित तरीके से काम करना चाहिए।
1: Que notre réponse doit être globale, intégrée et cohérente.
0: ये कॉन्टैक्ट ग्रुप 2011 में गठित किया गया था। इसमें 3 सब कमेटियां हैं, अंदरूनी सुरक्षा, समुद्री सुरक्षा और न्याय विभाग। रेनियन की ओर से नागरिक सुरक्षा पर एक सब कमेटी कायम करने का प्रस्ताव रखा गया है। रेनियन प्रीफेक्ट के कैबिनेट डायरेक्टर बेनोर लाफोकिया कहते हैं, हमारे समान खतरे हैं जैसे तूफान, जंगलों में आग लगने के। हमारे पास योग्य सेवाएं हैं मॉरिशस, रेनियन और फ्रांस में। साथ मिलकर काम करना चाहिए ताकि सुरक्षा का विकास हो। दोनों टापुओं के बीच सहयोग की एक अन्य पहलू सड़क सुरक्षा पर आधारित है। कॉन्टैक्ट ग्रुप की अगली बैठक सितंबर में लगेगी।
2: इस वर्ष जुलाई महीने में यूएस अफ्रीका बिजनेस समिट का 18वां संस्करण मॉरिशस में आयोजित किया जाने वाला है। 4 दिनों तक अफ्रीका और अमेरिका के बीच उच्चस्तरीय और आर्थिक और व्यवसायिक चर्चाओं का केंद्र बनेगा ये मंच। आयोजकों के अनुसार इस शिखर सम्मेलन में 2500 से अधिक सरकारी प्रतिनिधि और उद्योग जगत की प्रमुख हस्तियाँ शामिल होंगी, जिनमें कम से कम 7 नेता शामिल रहेंगी। कॉर्पोरेट काउंसिल ऑन अफ्रीका की अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी फ्लोरी लीजे ने कल प्रधानमंत्री से मुलाकात की, इस बात की उन्होंने पुष्टि की है। गीता सुनारन।
0: अमेरिका अफ्रीका बिजनेस समिट 2026 मॉरिशस में लगेगा और ये वित्तीय सेवाओं पर आधारित रहेगा। ये मॉरिशस को अफ्रीका और अमेरिका के बीच निवेश के एक मंच के रूप में स्थापित करने का अवसर रहेगा। प्रधानमंत्री के साथ मुलाकात के दौरान अफ्रीका के लिए कॉर्पोरेट काउंसिल की सीईओ और अध्यक्षा ने अफ्रीका ग्रोथ एंड अपॉर्चुनिटी एक्ट बढ़ाने का पक्ष लेने और इस संधि की वैधता की रक्षा करने के लिए लड़ने की कटिबद्धता ली।
3: What we want is 10 years. That's what we want. Whether we'll get 10 years, we don't know, but we're going to ask for it and we're going to push for it and we hope that Congress and the administration will support that, because we do believe that AGOA is not just beneficial to African countries, it's also beneficial to the United States. U.S. companies that source from Africa, their workers, and also all of the people who are the customers and buy African products.
0: अफ्रीकी उच्च अधिकारियों और राष्ट्र नेताओं के अलावा इस शिखर बैठक में अमेरिका का एक महत्वपूर्ण प्रतिनिधि मंडल भाग लेगा, जिसमें सरकारी और व्यवसाय जगत के प्रतिनिधि शामिल होंगे।
2: प्रधानमंत्री ने मोर्श सनातन धर्म टेम्पल्स फेडरेशन के नई कार्यकारिणी मंडल से भी कल ट्रेजरी बिल्डिंग पोटली में मुलाकात की। डॉक्टर नवीन राम गुलाम ने फेडरेशन के अध्यक्ष भोजराज गुरबिन द्वारा की गई मांगों पर गौर किया, विशेषकर चार धाम तीर्थ यात्रा को लेकर। मोर्श सनातन धर्म टेम्पल्स के अध्यक्ष भोजराज गुरबिन को सुनते हैं, उनसे बात की हमारे सहयोगी काविंदा पिसो ने।
4: चार धाम qui nous finit à bord de ce sujet-là, et que le Premier ministre il répond positivement, là. Nous nous faisons une demande pour nous capables de gagner un subside, le ticket d'avion. Nous envie, nous, toute la famille hindoue, à least une fois, nous allons à Chardham. Et aussi, nous nous faisons une demande s'il est capable, cause avec le gouvernement indien, que nous sommes capables de faire nos bandes grands, bandes senior citizens, s'il est capable de gagner un hélicoptère pour depuis que nous sommes pour nous aller et Kedarnath. Comme nous tous connaissons, Sanatan nous fait une place de Gangatalao. Alors, nous faisons une demande et un bâtiment là-bas, Sugar Insurance Labor Welfare Fund, qui est 2 mètres. Et si besoin fait une réparation, nous là pour faire li Ottawa On Coast, nous gagnons sa place là quand nous avons des enfants capables de venir là-bas faire méditation, faire gurukul, nous expliquons. C'est une des plus places sacrées que la communauté hindoue a, c'est à Gangatalao. Nous nous demandons ça, nous aussi accepter positivement et nous bien rapide.
2: हर वर्ष सड़क हादसों में लगभग 11,90,000 लोगों की जान जाती हैं। दुनिया भर में हर दिन 3,000 से अधिक लोग सड़कों पर मौत का शिकार हो जाते हैं। ये चिंताजनक आंकड़े विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO ने जारी किए हैं, जो वैश्विक स्वास्थ्य रुझानों पर निगरानी रखने वाली संयुक्त राष्ट्र की संस्था है। आज सड़क दुर्घटनाएं 529 वर्ष के युवाओं में मौत का सबसे कारण बन चुकी हैं। संयुक्त राष्ट्र की विश्व सड़क सुरक्षा सप्ताह 8 से 14 मई तक इसे मनाया जा रहा है। अवसर पर अधिकारी याद दिला रहे हैं कि इन अधिकांश हादसों को सावधानी और जिम्मेदार व्यवहार से रोका जा सकता है। पूजा सुकालू।
5: हमारी सड़कों पर सालाना 1.19 मिलियन मौतें होती हैं। इसका मतलब है कि हर दिन सड़कों पर 3,000 से अधिक लोग अपनी जानें गंवाते हैं। 5 से 29 वर्ष की उम्र के युवकों की मौत सड़क दुर्घटनाओं में होती है। अंतर्राष्ट्रीय अधिकारियों के अनुसार ये एक चिंताजनक स्थिति है। कुछ कदमों के अपनाने से स्थिति में सुधार लाया जा सकता है। उदाहरण के तौर पर गाड़ी का तेज गति से चलाना, सबसे पहले इसको सुधारना, सीट बेल्ट पहनने से सड़क दुर्घटनाओं में हो रही मृत्यु की संख्या को घटाया जा सकता है, और दो पहिए वाहन चालकों के लिए हेलमेट पहनना सुरक्षित रहने की संभावनाओं को 6 गुना बढ़ा सकता है। एक और बड़ा खतरा है गाड़ी चलाते समय फोन का इस्तेमाल, जो दुर्घटना के जोखिम को 4 गुना बढ़ा देता है। इसके अलावा नशे की हालत में गाड़ी चलाना भी हादसों का कारण होता है। सड़क दुर्घटनाओं में जान गंवाने लोगों में पैदल यात्री, साइकिल चालक और मोटरसाइकिल चालक भी शामिल हैं। वैश्विक लक्ष्य है कि 2030 तक सड़क मौतों की संख्या को आधा किया जाए। ये एक महत्वाकांक्षी चुनौती है, लेकिन इसे हासिल किया जा सकता है यदि हर कोई अपनी जिम्मेदारी समझे और सुरक्षित व्यवहार अपनाए।
2: थिंक बिग एंड एक्ट ग्लोबल विषय पर आधारित नेशनल वुमेन एंटरप्रेन्योर काउंसिल अवार्ड 2026 में 76 प्रतिभागियों में से 12 महिला ठेकेदारों ने फाइनल तक अपनी जगह बनाई। गुरुवार को रिजवी के कुद्दो टेक्नोपोल में आयोजित समारोह में कृषि, कपड़ा, कारीगरी और सेवा सेक्टर सहित विभिन्न श्रेणियों में 5 पुरस्कार प्रदान किए गए। डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर ओया नावामाही ने मॉरिशस में महिला ठेकेदारी के बढ़ते प्रभाव की सराहना करते हुए उद्यमियों को अफ्रीका और हिंद महासागर इलाके में नए अवसरों की ओर आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया। उन्होंने कहा कि वित्तीय सहायता तक पहुंच, तकनीकी सेक्टरों में असमानताएं और पारिवारिक जिम्मेदारियां आज भी कई महिलाओं के सामने बड़ी चुनौतियां हैं। सरकार ट्रेनिंग, मार्गदर्शन तथा डिजिटल और AI से जुड़ी पहलों के माध्यम से सहयोग को और मजबूत करने की तैयारी में है। डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर को सुनते हैं उनसे बात की शैली निर्बल ने।
6: Les femmes à Maurice ont longtemps été au cœur de la famille, du lien social. Ce que nous vivons aujourd'hui est une transformation profonde. Ces mêmes femmes investissent désormais l'espace économique comme entrepreneurs, comme dirigeantes. Les chiffres le confirment. Les femmes représentent un peu plus de la moitié de la population mauricienne. Leur taux de participation au marché du travail avoisine 40%. Et elles sont de plus en plus présentes dans les services, la finance, l'éducation et la santé. Ce sont là des réalités encourageantes, mais je ne veux pas m'en satisfaire. Car il reste des secteurs techniques, des postes de haute direction, où la présence des femmes demeure insuffisante.
2: मोस्ट प्रॉमिसिंग वुमेन एंटरप्रेन्योर का खिताब तथा 1,00,000 रुपए की नकद राशि अफ्रिकाना ग्रुप की शॉप की जुलियन ब्रिजेट पेट्रोनिल को प्रदान की गई। आपको बता दें कि वर्ष 1999 में जेंडर इक्वालिटी मंत्रालय के तहत स्थापित नेशनल वुमेन एंटरप्रेन्योर काउंसिल आज विभिन्न सेक्टरों में 1,100 से अधिक महिला ठेकेदारों को सहयोग और मार्गदर्शन प्रदान कर रहा है। बुधवार 6 मई तक मॉरिशस में चिकुनगुनिया के 147 मामले दर्ज किए गए। इस वर्ष की शुरुआत से अब तक कुल मामलों की संख्या 2,470 तक पहुंच चुकी है, जबकि रेडविक्स में भी एक मामला सामने आया। डॉक्टर फाजिल कोदबाकस के अनुसार गर्मी से सर्दी के संक्रमण काल के दौरान मॉरिशस इस समय महामारी के चरम पर हैं। मामलों में वृद्धि के कारण कॉन्ड्यूस लेबोरेटरी में ब्लड सैंपल्स की जांच पर दबाव है। स्वास्थ्यकर्मी पीसीओ परीक्षण के परिणाम 48 घंटे के भीतर उपलब्ध कराने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। डॉक्टर फाजिल को दबाकस को सुनते हैं विवरण रजनी बीकर।
7: डॉक्टर फाजिल को दबाकस ने कहा, एक दिन में कई जांच करनी है, फिर भी काम कर पा रही है। दो लेबोरेटरियों में समय के बाद काम करने की मांग की गई है, तकरीबन रोज ही ऐसा कर रही है। कुछ नतीजे भी मिल रहे हैं, दो या तीन दिनों पर अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है ताकि 24 घंटों या 48 घंटों में नतीजे मिल जाएं। काफी बहुत स्पेसिमेन मिल रहे हैं, इससे कुछ परेशानी तो हो रही है, लेकिन हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं।
2: नौ मई को मेवाड़ के राजा महाराणा प्रताप सिंह की 446वीं वर्षगांठ मनाई जाएगी। इस अवसर पर गहलोत राजपूत महासभा की पहल पर विशेष गतिविधियों का आयोजन किया जाने वाला है। पोटली में कल आयोजित प्रेस सम्मेलन के दौरान इस पर अधिक जानकारियां दी गई। याचना मिश्रा।
8: हर साल 9 मई को महाराणा प्रताप दिवस मनाया जाता है। उनकी 486वीं वर्षगांठ के अवसर पर 9 मई को बेल विलेज में उनकी प्रतिमा पर फूल चढ़ाए जाएंगे, जबकि औपचारिक समारोह 10 मई को लगेगा। दस मई को कारोलिन के एमकेएस हॉल में औपचारिक समारोह दोपहर 2 बजे से शुरू हो रहा है। साथ में एक सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन किया जा रहा है। राजस्थान से महाराणा प्रताप सिंह के वंशज के एक प्रतिनिधि यहां पर इस मौके पर हमारे साथ होंगे। सभी इसमें आमंत्रित हैं। 9 मई को महाराणा प्रताप सिंह की वर्षगांठ के अवसर पर बेल विलेज में उनकी प्रतिमा पर फूल चढ़ाए जाएंगे। ये समारोह सुबह 10 बजे शुरू होगा और इसमें हमें पंडिताओं का सहयोग मिलेगा।
9: बेल विलेज
8: इस प्रेस सम्मेलन के दौरान सभा के अध्यक्ष ने 30 मार्च को भारत में राजस्थान दिवस के अवसर पर मॉरिशस के डेलीगेशन की भागीदारी पर बात करते हुए सरकार को आभार जताया, जिसकी बदौलत ये दौरा सफल रहा।
2: हुरमुज जलमार्ग में अमेरिका और ईरान के बीच तनाव फिर से तेज हो गया है। ईरानी मीडिया के अनुसार क्षेत्र में विस्फोट और गोलीबारी की घटनाएं सामने आई, जबकि अमेरिकी सेना ने दावा किया कि उसके युद्ध पोतों पर ईरान की ओर से मिसाइल, ड्रोन और छोटी नौकाओं के जरिए हमले किए गए। अमेरिकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक अमेरिकी बलों ने इन हमलों को रोकने पर जवाबी कार्रवाई की। इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि युद्ध विराम अब भी जारी, लेकिन ईरान को अमेरिकी प्रस्तावित समझौते पर हस्ताक्षर करने होंगे, अन्यथा उसे कड़े परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। तनाव बढ़ने के साथ वैश्विक तेल बाजार भी प्रभावित हुआ और ब्रेंट क्रूड की कीमत फिर $102 प्रति बैरल के पार पहुँच चुकी है। और अब चलिए जानते हैं कि मौसम का हाल कैसा रहेगा। हमारे इलाके पर हल्की हवाओं का असर है। अगले 24 घंटों के लिए पूर्वानुमान, आज सुबह के दौरान ऊंचे इलाकों पर रह रहकर बरसात होगी, अन्य जगहों में धूप खिली रहेगी। रात को मौसम कुछ ऐसा ही रहेगा देश भर में। तापमान, न्यूनतम तापमान सेंट्रल प्लाटू पर 17 से 19 डिग्री सेल्सियस, अधिकतम 25 से 27 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम तापमान शहरी इलाकों पर 21 से 24, अधिकतम 29 से 31 डिग्री सेल्सियस के बीच होगा। हवा पूर्व दक्षिण पूर्व की ओर से 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बहेगी, जिसके झोंके इससे ज्यादा तक पहुंच सकते हैं। प्रवाल रेखा के परे समुद्र खराब रहेगा, विशेषकर दक्षिण पश्चिम में 2 मीटर ऊंची लहरें उठेंगी। समुद्र में नहीं निकलने की मांग की जाती है। सूर्योदय हुआ है 6:28 पर और सूर्यास्त होगा शाम को 5:44 पर।

तो देश विदेश और मौसम संबंधी जानकारियों के साथ हम पहुंच गए हैं इस बुलेटिन के अंत में। तकनीकी सहायक हमारे साथ रहे कादिर, उनको हम धन्यवाद देते हैं। बढ़ते हैं शोक समाचारों की ओर। रॉयल रोड थ्रू द दुस्मे, रॉयल रोड थ्रू द दुस्मे 84 साल की 84 साल की कुलमंती भिखारी की मृत्यु हो गई है। पैदाइश नाम हलुमन, लोग उन्हें मानती के नाम से अधिक जानते हैं और वे पहले ट्विस्टहुक में काम किया करती थी। उनकी अर्थ कल दिन के 11 बजे कल शनिवार 9 मई को दिन के 11 बजे उनकी बेटी शैलेश भिखारी के मकान थोड़ेदूस से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए थोड़ेदूस की ही शमशान भूमि ले जाया जाएगी। क्रिमेशन टुमारो एट 11 AM। सुभाष चंद्र बोस स्ट्रीट ग्रैंड पॉइंट पिमो में 68 साल की 68 साल की गीता चैतन्य की मृत्यु हो गई है। पैदाइश नाम दोहू। उनकी अर्थी आज दोपहर बाद 1 बजे उनके पति बलराम चैतन्य के मकान से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए पंथीपी मौके शमशान भूमि ले जाया जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 1 PM। मोसलमान राफ्रेलो शे तेरूज में 86 साल के 86 साल के भाई अहमद रसे पीरन इंतकाल कर गए हैं। भाई अहमद बसर पीरन इंतकाल कर गए हैं। उनका जनाजा आज दिन के 12 बजे उन्हीं के मकान तेरूज से निकाल कर दफनाने के लिए मेजिन कौदमास का कब्रस्तान ले जाया जाएगा। फ्यूनरल टुडे एट नून। महादुलेन न्यूक्रोव में 67 साल की मिस गीताबाई महादू की मृत्यु हो गई है। लोग उन्हें लीला के नाम से अधिक जानते थे। उनके अर्थी आज सुबह के 10 बजे उनके भाई राजेश बाल्मीक महादू के मकान न्यूक्रोव से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए मागी जानी की शमशान भूमि ले जाया जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 10 AM। मिशन क्रॉस रोड खोबाफो लाल माची में 63 साल के 63 साल के जगदीश रामदान की मृत्यु हो गई है। लोग उन्हें संजय के नाम से अधिक जानती थी। उनके अर्थी आज दिन के 10 बजे उनकी पत्नी मिसिस सती सावित्री रामदान के मकान से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए लालमाची की शमशान भूमि ले जाया जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 10 AM। सेनेकर रोड रिवरवॉक लेन प्लेन दी रोश में 58 साल की 58 साल की संगीता रामनियाल की मृत्यु हो गई है। पैदाइश नाम इंदर नारायण, लोग उन्हें सुनीता के नाम से अधिक जानती थी। उनके अर्थी आज दिन के 11 बजे उन्हीं के मकान प्लेंडिगोश से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए पीतों की शमशान भूमि ले जाया जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 11 AM। कोंकारोल केन्या प्लेन मान्यों में 80 साल की 80 साल की मथी गणेश की मृत्यु हो गई है। पैदाइश नाम कुनु, लोग उन्हें सती के नाम से अधिक जानती थी और वे पहले रिवे दे क्रियोल की रहने वाली थी। उनकी अर्थी आज दिन के 10 बजे उनकी बेटी छाया मोहोले के मकान प्लेन मान्यों से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए इलाके ही की शमशान भूमि ले जाया जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 10 AM। जानकी स्ट्रीट पुद्रदो विलेज में 79 साल की विद्वंती मधु की मृत्यु हो गई है। पैदाइश नाम सोहन, लोग उन्हें वंती के नाम से अधिक जानते थे। उनकी अर्थी कल दिन के 10 बजे उनके बेटे संजय मधु के मकान पुद्रदो विलेज से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए बेलमो पुद्रदो विलेज की शमशान भूमि ले जाया जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 10 AM। पालमा रोड कटरबोन में 77 साल की 77 साल की पुष्पामाला बुतन की मृत्यु हो गई है। पैदाइश नाम राम, लोग उन्हें मीला के नाम से अधिक जानते थे। उनकी अर्थी आज दिन के 1:15 बजे उन्हीं के मकान कटरबोन से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए पालमा गांधी की शमशान भूमि ले जाया जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 1:15 PM। C11 NHDC Avenue Ambre Mongoumé 74 साल की 74 साल के जनाब फरुद मुसाफिया का इंतकाल कल हुआ है। उनका जनाजा कल रात्रि के 8 बजे उठाया गया। शोक में डूबे इन सभी परिवारों के प्रति हमारी गहरी सहानुभूति है।

0: 819 किलोहर्ट्ज, ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस
1: आज की सूचनाएं। रविवार 10 मई को कॉफोको फिनिक्स के मारियामेन कोविल में कांजी पूजा का आयोजन किया जाएगा, सुबह 7 बजे से लेकर दिन के 12 बजे तक। इस संदर्भ में शुक्रवार 8 मई से रविवार 10 मई तक शाम 5 बजे से लेकर रात्रि के 8 बजे तक पूजा सत्र आयोजित किए जाएंगे।

0: 819 किलोहर्ट्ज ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस
1: स्पोर्ट्स न्यूज़। सभी सुनने वालों को अरविंद का प्यार भरा नमस्कार। स्पोर्ट्स बुलेटिन में आप सभी लोगों का स्वागत है। यूरोपा लीग स्पेशलिस्ट उनई से नई एस्टन विला यूरोपा लीग के फाइनल में पहली बार ऐसा हुआ कि यूरोप की सभी तीन कप प्रतियोगिताओं में प्रीमियर लीग की टीमें हैं। चैंपियंस लीग फाइनल में आर्सेनल, यूरोपा लीग फाइनल में एस्टन विला और कॉन्फ्रेंस लीग फाइनल में क्रिस्टल पैलेस। एस्टन विला ने 4-0 से नॉटिंघम फॉरेस्ट को पछाड़ा। वाटकिंस का गोल फर्स्ट हाफ में, फिर सेकंड हाफ में पेनाल्टी पर बुइंडिया का गोल और कप्तान मैकगिन का डबल। कोच उनई एमरी अपने पांचवें फिफ्थ यूरोपा टाइटल के करीब और एस्टन विला को 30 साल से एक ट्रॉफी का इंतजार है। शायद इस बार फाइनल में एस्टन विला का मुकाबला फ्रीबर्ग से होगा। फ्रीबर्ग ने 3-1 से भागा को हराया। 20 मई को इस्तांबुल फाइनल, एस्टन विला वर्सेस फ्रीबर्ग। अगर एस्टन विला यूरोपा लीग जीतता है तो प्रीमियर लीग से 6 टीमें चैंपियंस लीग में होंगी, पर इसके लिए एस्टन विला को प्रीमियर लीग में टॉप 4 से नीचे होना चाहिए। अभी विला 5वें स्थान पर हैं। कॉन्फ्रेंस लीग का फाइनल क्रिस्टल पैलेस और रायो वालेकानो के बीच होगा। पैलेस ने 2-1 से शाख्तार दोनेत्स्क को हराया, ऑन एग्रीगेट 5-2 से क्वालिफाई। रायो वालेकानो ने स्ट्रासबर्ग को 1-0 से हराया, वो भी स्ट्रासबर्ग के मैदान में। ऑन एग्रीगेट 2-0 से रायो वालेकानो क्वालिफाई। सो कल के 4 मैचों के नतीजे, एस्टन विला 4, नॉटिंघम फॉरेस्ट 0, फ्रीबर्ग 3, ब्रागा 1, क्रिस्टल पैलेस 2, शाख्तार दोनेत्स्क 1, स्ट्रासबर्ग 0, रायो वालेकानो 1। यूरोपियन चैंपियंस के का फाइनल, यूरोपियन चैंपियंस लीग का फाइनल आर्सेनल वर्सेस पेरिस सेंट जर्मेन, यूरोपा लीग का फाइनल एस्टन विला वर्सेस फ्रीबर्ग और कॉन्फ्रेंस लीग का फाइनल क्रिस्टल पैलेस वर्सेस रायो वालेकानो। सऊदी प्रो लीग में क्रिस्टियानो रोनाल्डो की टीम अल नसर ने 4-2 से शबाद टीम को हराया। युआउ फेलिक्स का हैट्रिक, रोनाल्डो का एक गोल रहा। आज चैंपियनशिप में प्रमोशन प्ले ऑफ का सेमीफाइनल, हल का मुकाबला मिलवॉल से होगा। दूसरा सेमीफाइनल कल मिडल्सब्रो वर्सेस साउथम्पटन। स्पेन के ला लीगा में आज लेवेंटे का मुकाबला ओसासुना से है। जर्मनी के बुंडेसलीगा में बोरुशिया डॉर्टमुंड वर्सेस फ्रैंकफर्ट। इटली के सीरी आ में टोरिनो खेलेगा सासुओलो के खिलाफ। फ्रांस के लीग अ में लॉन्स नॉर्थ। इंडियन सुपर लीग में दिल्ली का मुकाबला ओडिशा से। और प्रीमियर लीग में इस सप्ताहांत, इस वीकेंड के मैच, कल अर्ली किक ऑफ 3:30 3:30 PM लिवरपूल वर्सेस चेल्सी, फिर ब्राइटन वुल्व्स, फुलहम बोर्नमुथ, सनडरलैंड मैनचेस्टर यूनाइटेड, मैनचेस्टर सिटी ब्रेंटफोर्ड। संडे मैच बर्नले एस्टन विला, क्रिस्टल पैलेस एवर्टन, नॉटिंघम फॉरेस्ट न्यूकासल यूनाइटेड, वेस्ट हैम यूनाइटेड आर्सेनल का स्वागत करेगा। और मंडे मैच टोटनहम हॉटस्पर वर्सेस लीड्स। चैंपियंस लीग के फाइनल में आकर आर्सेनल को 122 मिलियन पाउंड स्टर्लिंग प्राइज मनी मिले हैं। अगर फाइनल जीत गए तो 10 मिलियन और मिलेंगे। लिवरपूल क्वार्टर फाइनल तक आया, प्राइज मनी टोटल 95 मिलियन पाउंड स्टर्लिंग, 95 मिलियन पाउंड स्टर्लिंग लिवरपूल को मिलेगा। क्रिकेट आईपीएल 2026 के ग्रुप स्टेज में लखनऊ सुपर जायंट्स ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर को 9 रनों से हराया। लखनऊ की टीम में मिचेल मार्च 111 रन बना पाया। जवाब में विराट कोहली डक आउट 0 पर आउट। आज दिल्ली कैपिटल्स का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से है। अभी सनराइजर्स हैदराबाद 14 अंक लिए पहले पोजिशन पर है। फिर आते हैं पंजाब किंग्स, उसके पास 13 अंक, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर, राजस्थान रॉयल्स और गुजरात टाइटंस के पास 12 अंक हैं। स्विमिंग की हमारी महारानी बन गई है अनिष्टा तिलक। अपने बर्थडे, अपने जन्मदिन के लिए 400 मीटर फ्री स्टाइल में नया रिकॉर्ड उसके नाम। 34 साल का पुराना रिकॉर्ड जो पहले कोरिन लिकला के नाम था, अब अनिष्टा तिलक का हो गया है। अफ्रीकन चैंपियनशिप में एडन लिंगपिन अपना दूसरा मेडल जीत पाया, सिल्वर मेडल। 200 मीटर ब्रास में 100 मीटर में भी वो सिल्वर मेडल जीत पाया था। आप लोग भी खासकर हमारे बच्चे बच्चा पार्टी तैरने के लिए तैयार हो जाएं, क्योंकि इस सोमवार से युवा एवं खेल मंत्रालय की पहल पर स्विमिंग क्लासेज शुरू किए जाएंगे। ये 7 और 17 साल के बीच के युवकों के लिए हैं। सेर्ज अल्फ्रेड बोबासिन, पाविलियन कैथरबोन, मार डालबे और रिविया जुरांपा में स्विमिंग क्लासेज होंगे। 13 और 14 मई को इंस्क्रिप्शंस होंगे। सो खेल समाचारों में फिलहाल इतना ही। चलते चलते प्रमुख खबर आपको फिर से बता दें, एस्टन विला ने नॉटिंघम फॉरेस्ट के जंगल को तहस नहस कर डाला। 4-0 की शानदार जीत। फाइनल में है एस्टन विला और क्रिस्टल पैलेस भी कॉन्फ्रेंस लीग के फाइनल में पहुंचा है। नमस्कार, आप सब लोगों को अरविंद की ओर से शुभ दिन।

0: नमस्कार जय श्रोताओ, घड़ी मिलाते चलिए। इस समय सुबह के 7:60 हो चुके हैं और इस शुक्रवार को साथ निभा रही है पूजा। सुबह का नजराना कार्यक्रम में आप सभी का दिल से स्वागत करती है। कहा जाता है, ना किसी के अभाव में जिए और ना किसी के प्रभाव में, यह जीवन आपका है, अपने स्वभाव में जिए। चलिए इसी शुभ विचार के साथ कार्यक्रम आरंभ करते हैं चिंतन से। आइए इसे सुनते हैं श्रीमती डॉक्टर लक्ष्मी जमन जी की प्रस्तुति में।
1: सदाचार और आत्मिक संतुलन का संगम चिंतन, जहां विचारों में मिठास और मन में शांति। आइए सुनते हैं आज का चिंतन।
2: प्रतिभा के माने हैं बुद्धि में नई नई कोपले फूटते रहना, नई कल्पना, नया उत्साह, नई खोज, नई स्फूर्ति, ये सब प्रतिभा के लक्षण हैं।
3: सबके कदम देखो रम पम पम

0: 819 किलोहर्ट्ज, ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस
1: श्रोताओं, आइए सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड द्वारा चंद विज्ञप्तियां सुनिए। जरूरी मरम्मत कार्यों की वजह से कई इलाकों में बिजली की सप्लाई में कटौती लाई जाएगी। सबसे पहले सुल्फेरिनो के रहने वाले निवासियों को सूचित किया जाता है, खासतौर पर रबुस के रोड, कंपावे रोड, इबिस्क्यूस लेन नंबर 3 और नंबर 8, तनुजा लेन और सुल्फेरिनो नंबर 4 के कुछ हिस्सों में, टेकला सुबल लेन और डॉक्टर मनीलाल एवेन्यू और आसपास के रहने वाले निवासियों को सूचित किया जाता है कि शनिवार 9 मई 2024 को सुबह के 8:30 बजे से लेकर शाम के 4 बजे तक, और फिर हैं वाकवा के रहने वाले निवासियों को, खासतौर पर इन गलियों में गुथों किला, पावेदामो और रागुत बुनतिया के कुछ हिस्सों में, गुत क्लियाफो नंबर 1, नंबर 3 और गुत वैता नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 के कुछ हिस्सों में और मॉडर्न स्क्वायर के कुछ हिस्सों में, गुत ली बेतो और गुत जी क्लब, गुत जैक्सन और गुत लाबियाची के आसपास के रहने वाले निवासियों को सूचित किया जाता है कि रविवार 10 मई 2024 को सुबह के 8:30 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक, और फिर है ग्लेन पार्क वाकवा, ग्लेन पार्क के रहने वाले निवासियों को, खासतौर पर एनआरडी से ग्लेन पार्क के कुछ हिस्सों में के रहने वाले निवासियों को सूचित किया जाता है कि रविवार 10 मई 2026 को सुबह के 9 बजे से लेकर दोपहर के 2 बजे तक, और अंत में है पर्तो कानूनी के रहने वाले निवासियों को, खासतौर पर रुई कोस्टाल, रुई कास गों और ला पॉइंट लग्जरी लिमिटेड और फाज नंबर 2 पॉइंटो कानूनी के रहने वाले निवासियों को सूचित किया जाता है कि रविवार 10 मई 2024 को सुबह के 8 बजे से लेकर दोपहर के 3 बजे तक बिजली की सप्लाई में कटौती लाई जाएगी। इन सभी असुविधाओं के लिए सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड अपने ग्राहकों से क्षमा प्रार्थी हैं। बिना पूर्व सूचना दिए बिजली की सप्लाई को सामान्य रूप पर लाई जाएगी। श्रोताओं, अभी आप सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड द्वारा चंद विज्ञप्तियां सुन रहे थे। ये रेडियो मॉरिशस है।

0: गुम
1: हम
2: झलकियां
3: चलिए नज़र डालते हैं आज के रेडियो कार्यक्रमों पर। और अभी आप सुन रहे हैं सुबह का नजराना कार्यक्रम और 7:30 बजे चंद पॉपुलर गीत आप सभी

का कार्यक्रम जारी रहेगा। और 11 बजे समाचार होंगे, समाचार बॉम्बू से माला जी है, ब्रिजित गैतायत से, और इंदिरा जी है, इंदिरा लौतन जी, माला सुमारू जी, श्यामा रघुनंदन जी, विना रामफल जी, आप सभी का स्वागत है।

0: जिंदगी के अनमोल लम्हे रेडियो मॉरिशस के साथ।
1: सुबह सुबह बड़े प्यार से कुछ लोग जो हैं मैसेजेस भेजते हैं और उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग इतने प्यार और अपनेपन देते हैं और हम आप लोगों के मनोरंजन के लिए चले आते हैं प्यारे प्यारे गीतों के साथ। आशा करती हूँ आप सभी को इन गीतों का जो है आनंद उठा रहे हैं। और साथ में हैं शैला जी गौनखविया सुदेश से और उषा जी हैं हाईलैंड से और ब्रह्मस्थान से हैं उषा जी। और सुबह से ही हमारा जो इस कार्यक्रम से जुड़ी हुई है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद उषा जी। यूं ही हमारे साथ जुड़े रहिए, गुनगुनाते रहिए और इस सफ़र का आनंद उठाइए। कहते हैं कि भाई ये जीवन एक सफ़र है, बहुत सारे लोग मिलेंगे यहाँ पर और ऐसे ऐसे लोग भी मिलते हैं जो इस सफ़र में साथ चलते चलते आपको बहुत कुछ दे जाते हैं। और कुछ ऐसे लोग भी हैं जो साथ चलते चलते सिखाते सिखाते ठोकरें भी देंगे, फिर भी ये ठोकरें जो हैं आदमी को कमजोर नहीं मजबूत बनाता है। कहा जाता है जो आप देते हो ये आवश्यक नहीं कि आपको वापस वही प्यार और अपनापन मिले। जो भी आपने दिया है चाहे वो अच्छाई हो या फिर बुराई, ये लौटकर वापस अवश्य आता है। पर अगर किसी इंसान में वो अच्छाई है तो वो अपनी अच्छाई को अपनी एक खासियत समझे, क्योंकि आजकल इस आधुनिक काल में जिसे हम जी रहे हैं यहां सभी अपने बारे में ही सोचते हैं। किसी की सहायता करना, किसी को समझना, कहां किसी के पास समय है। परंतु जब हम किसी को समझते हैं, किसी को अपनाते हैं, किसी की सहायता करते हैं तो ये जो अपनापन है, ये जो अच्छाई है, ये आपका दिया हुआ या फिर कहूंगी ये भगवान का दिया हुआ एक देन है। ये ना समझे जो आप दे रहे हैं आपको वापस मिलेगा। आप अपनी अच्छाई को बनाए रखें और इस सफर में कर्म करते जाइए, फल की इच्छा मत कीजिए। लीला जी हैं बुआ शेखी से और मन जी हैं ख्वाया से।

याद है मेरा पहला गाना था तुम्हारे साथ, रात को 1 बजे आगे जगाया था तुमने और कहा था नीचे चलो गाड़ी में तुम्हें गाना सुनाता हूँ, और फिर सुबह तक तुम सड़कों पर गाड़ी चलाते रहे और कैसेट पर सुनाते रहे ये गाना।

0: चलते जाना ही है, रुकना नहीं है, और साथ अभी दे रहे हैं विजय बिनी पावसाज जी, जो हैं अपने दोस्त शास्त्री बुनवाली जी के साथ, और अभी अनीता जी हैं गुजबिल से बड़े प्यार से साथ निभा रही हैं, मुंजी हैं इकवायाओ से, आप सभी का दिल से स्वागत है। और मनाली जी ने कहा है, जीना है तो यारो बस खुल कर जियो, ऐसा जियो जैसे कि आखिरी हो, और जो हुआ सो हुआ, और जो होने वाला है वो होकर ही रहेगा। हमारा जो है उसका उस पर कोई हक नहीं है, पर हम इसको संवार सकते हैं। तो चलिए जीवन को मुस्कुराते हुए जिए, चाहे वो संघर्षमय जीवन हो या फिर सुख से बीत रहे हो हर पल को, हर क्षण को। मुस्कुराते हुए, गुनगुनाते हुए इस सफर का आनंद उठाइए, क्योंकि कहा जाता है ना, इन संगीत में कुछ ऐसे लिरिक्स होते हैं, कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं, कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो जीना सिखा देते हैं। तो चलिए अभी के लिए सुनते हैं, आओ ट्विस्ट करें मनाली जी की आवाज में, और जो भी लोग इस गीत को पसंद करते हैं उन सभी के नाम, और जो भी हमारे साथ अभी रेडियो मॉरिशस के साथ जुड़े हुए हैं, चलिए सुनते हैं। सभी अभी जो काम के लिए निकले हैं कहेंगे बोकुहार,
1: पहले तालियां तो बजाओ। आज रात का मैं आखिरी गाना गा रहा हूं, और गाने में ये कहना चाहता हूं कि दुनिया में खुश रहना हो तो मानो मेरी बात।

0: 819 किलोहर्ट्ज ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस
1: श्रोताओं, आइए सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड द्वारा चंद विज्ञप्तियां सुनिए। जरूरी मरम्मत कार्यों की वजह से खुदोदु सेक्ट के रहने वाले निवासियों को खासतौर पर सेक्ट क्वाज मोसलमों पुनीता बो रिवाज उतैल तुसरोक और इलोसेफ मोसलमों डाले देबाओकादेया और पाचोरो शुमें रोबिया और बातिमा चौतोज के रहने वाले निवासियों को सूचित किया जाता है कि शुक्रवार 8 मई 2024 को सुबह के 8:30 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक और फिर हैं थुदुदुस के रहने वाले निवासियों सेपक्वाज और मोसलमा पुनीत के रहने वाले निवासियों को सूचित किया जाता है कि शनिवार 9 मई 2024 को सुबह के 8:30 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक बिजली की सप्लाई में कटौती लाई जाएगी। और अंत में है फ्रोखयाल के रहने वाले निवासियों को खासतौर पर इन गलियों में गजीदौस मंगल खान और गोविंदन लेन एस्पिटालिये नोएल स्ट्रीट नेल्सन स्ट्रीट बालजैक स्ट्रीट फ्लोरियाल रोड और बीडीसी लेन के कुछ हिस्सों में के रहने वाले निवासियों को सूचित किया जाता है कि रविवार 10 मई 2024 को सुबह के 8:30 बजे से लेकर शाम के 4 बजे तक बिजली की सप्लाई में कटौती लाई जाएगी। इन सभी असुविधाओं के लिए सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड अपने ग्राहकों से क्षमा प्रार्थी हैं। बिना पूर्व सूचना दिए बिजली की सप्लाई को सामान्य रूप पर लाई जाएगी। श्रोताओं, अभी आप सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड द्वारा चंद विज्ञप्तियाँ सुन रहे थे। ये रेडियो मॉरिशस है।
0: 819 किलोहर्ट्ज़ ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस
1: भाई, जब सफर में इतने अच्छे अच्छे लिसनर्स हो तो क्यों ना हम आए प्यार से, क्यों ना ऐसे प्लेलिस्ट तैयार करके लाएं जो आप लोगों को पसंद आए। साथ दे रही हैं न्यू ग्रोव से फातिमा जी, मिसिज महंती सियोगतन जी काठबोन से, और साथ में है सुगोबिन परिवार वाकवा से हैं। आप सभी का स्वागत है। माला जी हैं बोबासे से, सुदेवी जी हैं और शैला जी हैं गौन हविया सुदेश से, आरती जी हैं त्रियोले से, आपका भी हम स्वागत करते हैं। तो चलिए आप सभी के नाम कयामत से

0: दिल की बहार, सुबह का नजराना, रेडियो मॉरिशस पर।
1: चलिए इसी के साथ सुबह का नजराना कार्यक्रम यहीं पर समाप्त हुआ। 7 या 8 बजे आप भोजपुरी में समाचार सुन पाएंगे। समाचारों के उस पार फिर से मिलेंगे गर्मा गर्म नाश्ता कार्यक्रम में, जहां पर आप सभी के नाम कुछ प्रश्न लेकर आई हूँ और तैयार रहें दिमाग की कसरत के लिए। और अभी साथ दे रही हैं आरती जी ने पूरे परिवार के साथ, और राफेज जी हैं लाविनिया से, गीता जी हैं पोफिया से। तो चलिए आप सभी के नाम ये प्यारा सा गीत, और कहीं जाइएगा मत, जुड़े रहिए हमारे साथ प्यारे प्यारे गीतों के साथ। और एक बार फिर से जो भी लोग काम के लिए निकले हैं कहेंगे बुखार जा, चलते रहें, रुकिएगा मत, क्योंकि चलना ही जिंदगी है। तब तक मेरी ओर से सभी को शुभ शुक्रवार।

बजे के ठीक 8 बजे तक सुना भोजपुरी में समाचार। नमस्ते, व्यापार मंत्री

0: माइकल सिक्विन कल एबन में एक प्रेस वार्ता के दौरान विपक्ष नेता जुली रोंगो के बयान पर ही जवाब दिलन ऊ बोलन की स्टेट ट्रेडिंग कॉरपोरेशन और सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के बीच जे समझौता भेल रहल ओकर तय दर के पूरा पालन करल गल बा मंत्री ई भी याद दिलैलन कि ई समझौता 2023 में भेल रहल जब जुली रोंगो ऊर्जा मंत्री रहलन मंत्री ई भी बोलन कि एसटीसी रोजमर्रा के जरूरी सामान के आयात करी और ई खातिर जल्दी स्टैंडर्ड प्रक्रिया शुरू करल जाए 2011 में स्थापित मॉरिशस रीयूनियन कॉन्टैक्ट ग्रुप आज क्षेत्रीय सुरक्षा सहयोग के एगो मजबूत मंच बन चुकल बा हर 6 महीना पर ही आयोजित बैठक के मुख्य उद्देश्य बा ड्रग की तस्करी और संगठित अपराध के खिलाफ लड़ाई मजबूत करे के ये बरिस फाइनेंशियल क्राइम्स कमीशन भी ई समूह से जुड़ गल बा जमे अवैध धन लेन देन के खिलाफ कार्रवाई तेज हो सकी काला पोटली के लाइन बाराक्स में आयोजित बैठक लगावल गल सेप्टेम्बर 2026 से मॉरिशस और यूरेनियन के बीच नागरिक सुरक्षा खातिर एगो नवा उपसमिति भी बनावल जाए ई बरिस जुलाई महीना में यूएस अफ्रीका बिजनेस समिट के 18वां संस्करण मॉरिशस में आयोजित हुई 4 दिन ने मोशवासी गल्फ एंड एस्टेट अफ्रीका और अमेरिका के बीच व्यापार और आर्थिक चर्चा के केंद्र रही आयोजक लोगन के अनुसार 2500 से जस्ती प्रतिनिधि सम्मेलन में भाग लियन जा जेमें कम से कम 7 नेता भी शामिल रहियन जा हर बरिस सड़क सुरक्षा दुर्घटना में लगभग 11,90,000 जना जान गवावे लंजा दुनिया भर में हर दिन 3,000 से जस्ती जना सड़क हादसा में मौत के शिकार हो जा लंजा WHO के अनुसार सड़क दुर्घटना अब 529 बरिस के युवा लोगन में मौत के सबसे बड़ा कारण बन गलबा विश्व सड़क सुरक्षा सप्ताह 8 से 14 मई ले मनावल जाता अधिकारी लोगन मांग करत हवन जा कि सावधानी से अधिकांश हादसा रोके जा सकेला थिंक बिग एंड एक्ट ग्लोबल विषय पर आधारित नेशनल वुमेन एंटरप्रेन्योर काउंसिल अवार्ड 2026 में 76 प्रतिभागी में से 12 महिला उद्यमी फाइनल ले पहुंचलन जा रेजुई के कोदो टेक्नोपोल में आयोजित समारोह में 5 पुरस्कार प्रदान करल गल डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर ओयाना वमारी महिला ठेकेदार लोगन से अफ्रीका और हिंद महासागर इलाका में नवा अवसर खोजे खातिर प्रोत्साहित करलन उबुलन की वित्तीय सहायता तकनीकी सेक्टर में असमानता और पारिवारिक जिम्मेदारी आज हो चुनौती बनल बा मोस्ट प्रॉमिसिंग वुमेन एंटरप्रेन्योर के खिताब और 1,00,000 रुपया पुरस्कार अफ्रीकाना ग्रुप के जुलियन ब्रिजेट पेट्रोनिल के प्रदान करल गल 6 मई ले मॉरिशस में चिकुनगुनिया के 147 मामला दर्ज करल गल बा ये बरिस के शुरुआत से अबले कुल संख्या 2,770 ले पहुंच गल बा डॉक्टर फाजिल कोदाबुकस के अनुसार मौसम बदलत समय मॉरिशस महामारी के चरम स्थिति के करीब पहुंच गल बा कौंदोस प्रयोगशाला में जांच के दबाव बढ़ गल बा हालांकि स्वास्थ्य कर्मचारी लोगन 48 घंटा के भीतर PCR परीक्षण के परिणाम देवे के प्रयास करत हवन जा अटलांटिक महासागर में गो क्रूज जहाज पर ही अंता वायरस संक्रमण के मामला सामने आवे के बाद स्वास्थ्य अधिकारी लोगन सतर्क हो गल हवन जा अंता वायरस एगो गंभीर संक्रमण बा जे अधिकतर संक्रमित चूहा के संपर्क में फैलेला जबकि इंसान से इंसान में संक्रमण बहुत ही कम की होइला हुरमुज समुद्री मार्ग में अमेरिका और ईरान के बीच तनाव फिर से बढ़ गल बा ईरानी मीडिया के अनुसार इलाका में विस्फोट और गोलीबारी भइल जबकि अमेरिकी सेना दावा कर ले बा कि ओकर युद्ध पोत पर मिसाइल ड्रोन और छोटा नौका से हमला करल गल अमेरिकी सेना जवाबी कार्रवाई भी करलक अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बोलन कि युद्ध विराम अभियो जारी बा बकेर ईरान के समझौता पर हस्ताक्षर करे के पड़ी तनाव के बीच ब्रेंट क्रूड की कीमत फिर $102 प्रति बैरल से ऊपर पहुंच गल बा तो ये रहल हमने के भोजपुरी में समाचार हमने के सुनना जा धन्यवाद
1: Your news on NBC Play, NBC Play, NBC Radio.tv, NBC Radio.tv.
0: सुनो अशोक समाचार। परमा रोड कटरबोन में 77 बरिस के ससंदी सेतों के पुष्पा माला बुतन पैदाइश नाम राम, पुष्पा माला बुतन पैदाइश नाम राम गुजर गढ़ हवन उन

लेकर माटे कल दिन के 1:15 बजे उन्हीं के घरे का ट्रोबोन से उठा के अंतिम संस्कार खातिर पालमा गांधी के शमशान भूमि ले जावल जाए। जंगी स्ट्रीट पुदुदो विलेज में 79 ईयर्स ओल्ड के 79 के विद्वंती मधु पैदाइश नाम सोहन गुजरगल हवन उनकर माटी काल फजीर के 10 बजे उनकर बेटा संजय मधु के घरे पुदुदो विलेज से उठा के अंतिम संस्कार खातिर इलाके ही के शमशान भूमि ले जावल जाए। कोकाहोल केनिया में कोकाहोल केनिया पैन मान्यों में 80 बरिस के 80 के मती गणेश गुजरगल हवन पैदाइश नाम कुनु उनकर माटी आज फजीर के 10 बजे उनकर बेटी छाया मुगुले के घरे पैन मान्यों से उठा के अंतिम संस्कार खातिर पैन मान्यों के ही शमशान भूमि ले जावल जाए। सनेक रोड रिवर वॉक लेन प्लेन दी रोश में 58 के 58 बरिस की संगीता रामनियाल गुजरगल हवन पैदाइश नाम इंदर नारायण उनकर माटी आज दिन के 11 बजे उनके घरे प्लेंदेकोट से उठा के अंतिम संस्कार खातिर पितों के शमशान भूमि ले जावल जाए। मिशन क्रॉस रोड ग्रां बाफों लालमाथी में 63 बरिस के 63 के जगदीश रामदान गुजरगल हवन उनकर माटी आज फजीर के 10 बजे उनकर पत्नी मिसी सती सावित्री रामदान के घरे से उठा के अंतिम संस्कार खातिर लालमाची के शमशान भूमि ले जावल जाए। महादुले न्यू ग्रोव में 67 ईयर्स ओल्ड के गीताबाई महादु गुजरगल हवन उनकर माटी आज फजीर के 10 बजे उनकर भाई राजेश बाल्मीक महादु के घरे न्यू ग्रोव से उठा के अंतिम संस्कार खातिर मारीजानी के शमशान भूमि ले जावल जाए। मुसलमान गाफरे लोशेतेरूज में 86 बरिस के भाई अहमद बसर पीरन इंतकाल कर हवन उनकर जनाजा आज दिन के 12 बजे उन्हीं के घरे त्यागूर से उठा के अंतिम संस्कार खातिर दफनाई खातिर मिजिन कौदमास के कब्रस्तान ले जावल जाए। सुभाष चंद्र बोस स्ट्रीट ग्रां पॉइंट दे पिमों में 68 ईयर्स ओल्ड के 68 के गीता चायेटन के मृत्यु हो गलबा उन पैदाइश नाम दोहू उनकर माटी आज दिन के 1 बजे उनकर पति बलराम चैतन के खरे पंचपीमों से उठा के अंतिम संस्कार खातिर इलाके ही के शमशान भूमि ले जावल जाए। रॉयल रोड थोड़े दूस में 84 बरिस के 84 के कुलमंती भिखारी गुजरगल हवन पैदाइश नाम होलुमन उनकर माटी काला दिन के 11 बजे उनकर बेटा शैलेश भिखारी के घरे रॉयल रोड थोड़ेदूस से उठा के अंतिम संस्कार खातिर थोड़ेदूस के शमशान भूमि ले जावल जाए। शोकग्रस्त परिवार संगे हमने सहानुभूति प्रकट करें थैंजा।

0: एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। नमस्कार, आदाब और गुड मॉर्निंग। गर्मा गर्म नाश्ता कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। साथ निभा रही है पूजा। इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए आपको डायल करना है 4028085 पर 4200 पर। तो चलिए शुरुआत करते हैं गर्मा गर्म नाश्ता कार्यक्रम। और पहला सवाल कुछ इस प्रकार है, ध्यान से सुनिए।
1: नाश्ता
2: दो गुलाब जामुन भी।
0: क्या चीज है वह जो बिना पंख के उड़ती है? क्या चीज है वह जो बिना पंख के उड़ती है? तो चलिए बताइए 4028085 पर, 4200 पर, या फिर 5251700 पर आप हमें मैसेज भी भेज सकते हैं। क्या चीज है वह जो बिना पंख के उड़ती है? 4028085 पर। तो चलिए तब तक के लिए आप सभी के नाम।
3: हेलो, नानावती हॉस्पिटल आ रहे लाओ, लीलावती हॉस्पिटल जा रहे लाओ, जे हॉस्पिटल।

0: ओ मेरे बाप, अरे किधर किधर, अरे ब्रीच कैंडी, होल्ड मैन होल्ड, आई एम बिजी। हाँ
1: मेरे यहाँ तो बिजी नहीं है भाई। 4028085 पर आप सभी का इंतजार है।

0: नमस्कार गीता जी। हेलो
1: प्यार भरा नमस्कार पूजा जी।
0: नमस्कार आपको भी गीता जी, आपका स्वागत है।
1: मैं सोच रही हूँ पतंग
0: से बोला पतंग। नहीं गलत जवाब, जवाब तो गलत है, कोई बात नहीं, बाय। और आपको कहेंगे शुभ दिन। चलिए एक और श्रोता को हम लेते हैं। हेलो हेलो
2: हेलो नमस्ते।
0: नमस्ते जी,
2: कैसे हो?
0: मैं ठीक हूँ, क्या आप फासिल हैं?
2: हाँ।
0: चलिए बताइए, आपका स्वागत है जी। नाम तो बताइए।
2: लक्ष्मी
0: मेबग से। लक्ष्मी जी मेबग से आपका स्वागत है। और आपके पास क्या जवाब है? क्या जवाब है आपके पास?
2: धुआं।
0: नहीं ये भी गलत जवाब। फिर से
2: न्याग।
0: नहीं ये भी गलत जवाब। कोई बात नहीं, भाग लेने के लिए धन्यवाद, बाय। और शुभ दिन आपको। एक और श्रोता है लाइन पर, उनको सुनते हैं। गुजबिल से कौन आई है, चलिए उनको सुनते हैं। हेलो
3: हेलो नमस्कार जी।
0: नमस्कार, आपका स्वागत है उमा जी।
3: हाँ जी धन्यवाद।
0: और रुमा जी आपके पास क्या जो है जो आपके पास क्या जवाब है?
3: हो सकता है क्लाउड्स नियाज।
0: क्लाउड्स
3: नियाज।
0: नहीं ये भी गलत जवाब। कोई
3: टाइम
0: बात नहीं,
3: हो सकता है टाइम।
0: फिर से बोलिए।
3: टाइम।
0: तो चलिए आपको मैं कहूँगी बधाई हो, वो टाइम ही है। हाँ, और वो टाइम ही है जो बिना पंख के उड़ती है ना। तो आपको कहेंगे
3: हम लोग मैक्सिमम के निकालना है, वही नहीं घूर के नहीं आता है, फिर भी
0: घूम कर नहीं आता है। और आ जाता है ना कि समय से पहले कुछ भी नहीं मिलता, और समय का जो है हमें सदुपयोग करना चाहिए।
3: बहुत धन्यवाद,
0: शुभ दिन आपको भी उमा जी, बाय।
4: क्या बोला
0: अब मैं बोला, फिर से सुनिए दूसरा सवाल।
4: अरे

0: मैं भी अपनी आवाज़ ठीक कर बोलती हूँ। ऐसी क्या चीज़ है जो बिना पैर के चलकर सबके घर सेवा करने आती है? ऐसी क्या चीज़ है जो बिना पैर के चलकर सबके घर सेवा करने आती है? 4028085 पर।
1: மறுநாம்
2: என் பேர் ராஸ்கல்
1: முன்னா பாய் அம்பிபியஸ் முன்னா பாய்
0: कार्यक्रम का नाम है गर्मा गर्म नाश्ता कार्यक्रम। 4028085 पर आप सभी का इंतजार है।
1: बोले तो बोले तो बोले तो बोले तो
0: अजी बोलिए तो कि वो क्या चीज है जो बिना पैर के चलकर सबके घर सेवा करने आती है? क्या चीज़ है जो बिना पैर के चलकर सबके घर सेवा करने आती है?
3: अरे ये सब हटा रे, सावन की घड़ा, चल अपना चला, चल अपना चला, जल्दी।

0: तो बोलेंगे जी बोले तो गर्मा गर्म नाश्ता कार्यक्रम और लाइन पर कुछ लोग हैं, चलिए उनको सुनते हैं। हेलो
1: हेलो नमस्ते पूजा जी।
0: नमस्ते जी, आपका शुभ नाम?
1: मैं देवी हूँ।
0: देवी जी आपका स्वागत है। देवी जी क्यों ऐसे बोल दिया, मैं देवी हूँ, आपका स्वागत है। और अभी मैंने पूछा वो क्या चीज है जो बिना पैर के चलकर सबके घर सेवा करने आती है,
1: तो मेरे विचार से सूर्य देवता।
0: सूर्य देवता? नहीं, गलत जवाब है। कोई बात नहीं,
1: सूर्य देवता आते हैं, उन्हीं से तो हमें ऊर्जा मिलती है।
0: हाँ पर ये गलत, पर ये तो गलत जवाब है ना। कोई बात नहीं, और आपको कहेंगे शुभ दिन, भाग लेने के लिए धन्यवाद। और लाइन पर एक और श्रोता, चलिए मैं एक टिप्स दे देती हूँ कि इसके बिना जीवन नहीं है, इसके बिना जीवन नहीं है। वो क्या है जो चलकर सबके घर सेवा करने आती है? 4028085 पर। हेलो
2: हेलो
0: नमस्ते जी।
2: नमस्ते जी, मैं रोजिल से वीना बोल रही हूँ।
0: रोजिल से वीना जी आपका स्वागत है। वीना जी आपके पास क्या जवाब?
2: पैसा।
0: पैसा? नहीं, ये भी गलत जवाब। वीना जी भाग लेने के लिए धन्यवाद। चलिए लाइन पर एक और श्रोता को हम अवसर देते हैं। हेलो
3: हेलो हेलो पूजा जी।
0: नमस्ते जी।
3: हाँ मैं राधा।
0: राधा जी आप कैसी हैं
3: जी? अच्छी हूँ, थोड़ी नहीं अच्छी हूँ, आप अच्छे हैं ना?
0: मैं ठीक। और आप कहाँ से बोल रही हैं?
3: मैं मोचिदा से बोल रही हूँ।
0: मोचिदा से आपका स्वागत है, और आपके पास क्या जवाब है?
3: जी मेरे मैं प्रयत्न कर रही हूँ, शायद जूता चप्पल।
0: जूता या फिर चप्पल?
3: हाँ
0: नहीं, ये भी गलत जवाब।
3: ओके, ओके, कोई बात।

0: में ही आपको कहेंगे धन्यवाद और
1: धन्यवाद।
0: शुभ दिन। चलिए लाइन पर एक और श्रोता है, उनको सुनते हैं। हेलो,
1: हेलो, नमस्कार जी।
0: नमस्कार जी, कैसी हैं आप? इतनी प्यारी प्यारी आवाज।
1: नहीं, बिल्कुल ठीक हूँ। मैं हूँ नानी प्रेमानंद से। अरे,
0: आपका स्वागत है जी। और आपके पास क्या जवाब है?
1: शायद हम जल जो पानी है,
0: क्या कहा आपने?
1: जल जो पानी है हम उसका इस्तेमाल करते हैं ना।
0: क्या बात है, सही दिमाग लगाया आपने। और आपको कहेंगे बधाई हो, और भाग लेने के लिए
1: शुक्रिया।
0: धन्यवाद।
1: हाँ, बुंदू ने आपको और जितने भी लोग हमें सुन रहे हैं उन लोगों को भी बुंदू ने।
0: आपको भी और आपका
1: ओके
0: भी दिन शुभ हो, बस यही आशा करते हैं।
1: जी,
0: नमस्ते
1: ओके
0: जी,
1: ओके, बाय बाय।
0: बाय बाय। चलिए बढ़ते हैं एक और प्रश्न की ओर।

किस पेड़ के सारे पत्ते ज्ञान का आधार माना जाता है? किस पेड़ के सारे पत्ते ज्ञान का आधार माना जाता है? 4028085 पर।

0: मैं समझूंगी ना। चलिए देखते हैं कौन है वो लैला जो लाइन पर है। हेलो जी, नमस्ते। नमस्ते जी, कैसी हैं आप?
1: मैं ठीक हूँ, मैं वाकवा से शोभा बोल रही हूँ।
0: अच्छा, लैला जी नहीं है, शोभा जी है वाकवा से। चलिए और शोभा जी, आप कैसी हैं?
1: मैं ठीक हूँ, और आप कैसे हो?
0: मैं भी ठीक हूँ। और आप भाग ले रही हैं गर्मा गर्म नाश्ता कार्यक्रम में। और शोभा जी, आपके पास क्या जवाब है?
1: मेरा जवाब है पुस्तक।
0: आपका जवाब है पुस्तक?
1: जी हाँ।
0: कैसे पहचाना आपने?
1: बस कोशिश की, पुस्तक ज्ञान का भंडार है ना। जी हाँ।
0: और आपने सही जवाब दिया है। आपको कहेंगे बधाई हो शोभा जी, और हमेशा इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए धन्यवाद।
1: धन्यवाद आपको पूजा जी, और शुभ दिन।
0: शुभ दिन आपको भी।
1: ओके, बाय
0: बाय बाय
1: बाय।
0: चलिए बढ़ते हैं एक और प्रश्न की ओर।

0: Ogilvy.
1: ऐसी क्या चीज है जो कभी आगे तो कभी आगे दौड़ती है, कभी पैरों के तले आ जाती है तो कभी पीछा करती है, क्या है वह? ऐसी क्या चीज है जो कभी आगे दौड़ती है, कभी पैरों के तले आ जाती है तो कभी पीछा करती है? 4028085

0: भाई इतना भी तो मुश्किल नहीं है। चलिए बताइए कि ऐसी क्या चीज़ है जो कभी आगे दौड़ती है, कभी पैरों के तले आ जाती है, तो कभी पीछा करती है, वह क्या है? 4028085 पर चलिए लाइन पर कुछ लोग जो हैं साथ निभा रहे हैं और इस प्रश्न के उत्तर के लिए बहुत ही जो है
1: हेलो
0: जोर तोड़ कर रहे हैं। चलिए सुनते
1: हेलो,
0: हैं। हेलो, नमस्ते।
1: नमस्ते जीवन।
0: आपका शुभ नाम? जीवन जी, आप कहाँ से बोल रहे हैं?
1: गोजिल
0: गोजिल से आपका स्वागत है जीवन जी, और आपके पास क्या जवाब है?
1: साधु परछाई।
0: साधु, परछाई। और आपने सही जवाब दिया। आपको कहेंगे बधाई हो जीवन जी, और
1: ओके ओके,
0: शुभ दिन आपको। भाग लेने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
1: सब दिन तुझको भी।
0: धन्यवाद। चलिए अब हम जो है एक आखिरी सवाल आप सभी के नाम।
2: गर्मा गरम नाश्ता।

वो क्या चीज है कि जितना भरो उतना ही हल्का होता जाता है? वो क्या चीज है कि जितना भरो उतना ही हल्का होता जाता है? 4028085 पर।

0: भाई डरे क्यों, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे लोग हमारे साथ अभी जुड़े हुए हैं गर्मा गर्म नाश्ता कार्यक्रम में। ऑनलाइन पर कोई है उनको सुनते हैं। हेलो
1: हेलो,
0: नमस्ते जी।
1: नमस्ते पूजा जी, हमारे बहन कैसे हुआ?
0: मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं?
1: हाँ, हम रामेश की पढ़ाई फौजी साग से।
0: अच्छा जी,
1: बोला था। हाँ बोला था बहन, बालों
0: बालों यानी आपने सही जवाब दिया है, आपको बधाई हो।
1: बहुत बहुत धन्यवाद हमर बहिन, इसने भगवान करी फूल लेकर उगल रहा बचू।
0: धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और
1: हमर बहिन बहुत, हाँ
0: शुभ दिन आपको।
1: शुभ दिन हमर बहिन, तू पारे
0: तो चलो अभी इसी के साथ हम गर्मा गर्म नाश्ता कार्यक्रम के अंत तक आ पहुंचे हैं।
2: गर्मा गर्म नाश्ता,
0: तो जितने लोगों ने इस कार्यक्रम में भाग लिए उन सभी को तहे दिल से धन्यवाद, और जिनको लाइन भी नहीं मिला फिर भी व्हाट्सएप के जरिए माध्यम से आप लोगों ने भाग लिए, जोर तोड़ मेहनत की है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अभी हम बढ़ेंगे हमारी धरोहर कार्यक्रम की ओर किरण जानकी जी की प्रस्तुति में, फिर आप सभी के नाम एक भोजपुरी गीत चलाएंगे। 9 बजे समाचार होंगे, समाचारों के उस पार आज की चर्चा कार्यक्रम। पूजा को अनुमति दीजिए, मेरी ओर से सभी को नमस्ते, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए।
3: हमारी धरोहर किरण जानकी के साथ। हमारी धरोहर,
4: नमस्ते, हमारी धरोहर में आपके स्वागत बा। आप सब कोई बहुत बरिस से लखवा रूज या रेड क्रॉस के बारे में सुने लजा, देखे लजा। और लखवा रूज जब आपके मिली तो आपके चाहे चंदा देवे के, फिर आपके एगो स्टिका मिलत रहा आगे के समय में, जो आप सगवा अपन कमीज पर या फिर अपन कपड़ा पर चिपकावे। आज लखवा रूज रेड क्रॉस एगो विरासत बन गल बा। कहे कि लखवा रूज के जो इतिहास पर बहुत पुराना है, जगह जगह पर देखबा लखवा रूज के पेटी लेके आज भी कितने जना चंदा इकट्ठा करे लंजा। रेड क्रॉस दरअसल एगो अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, और रेड क्रॉस और रेड क्रसेंट आंदोलन के मूल सिद्धांत के बल देवे खातिर ओकर पर हर बरिस के 8 मई के विश्व रेड क्रॉस दिवस मनावल जाला। ई दिन पहला नोबेल शांति पुरस्कार विजेता और रेड क्रॉस के अंतर्राष्ट्रीय समिति के संस्थापक हेनरी डुनॉट के जयंती के सम्मान में मनावल जाला। हर बरिस ई दिन के मनावे खातिर एगो विशेष विषय रखल जाला, और उही पर अलग अलग गतिविधि चलेला। कहे कि दुनिया भर के जनता के ई में शामिल होवे के और अपन स्वयं के व्यक्तिगत तरीका से शांति में योगदान देवे खातिर ई प्रोत्साहित करेला। विश्व रेड क्रॉस और रेड क्रसेंट के दिन मनावे के उद्देश्य है सब कोई के मानवीय कार्य में भाग लेवे के प्रोत्साहित करेगे, एके एगो प्राथमिकता मानल जाला। ई संगठन जो चंदा इकट्ठा करेला ओकर से बीमारी से ग्रस्त और जे लोग असमानता, जे लोग गरीबी और अन्य कारण से दरिद्रता के सामना करत हवन जा, मुश्किल के सामना करत हवन जा, उ लोग के दर्द कमती करे खातिर अभियान चलावल जाला, उ लोग के मदद करल जाला। रेड क्रॉस मूवमेंट जरूरतमंद व्यक्ति लोग के मानवीय सहायता देवेला, और दुख दर्द कमती करे खातिर उ एगो प्रतिबद्धता ले लेबा। करुणा और दया के महत्व पर रेड क्रॉस दिवस जोर देवेला। गरीब लोग के सेवा और उ लोग के सेवा में छोटा छोटा कदम उठावे पर उ बहुत जोर देवेला। दयालु दिल के छोटा छोटा कार्य से ही पीड़ित और गरीब लोग के सेवा सकल जाय करे, ई बात पर उ लोग जोर देवेलन सा। रेड क्रॉस के इतिहास 200 बरिस पुराना है। 1864 में पहला हला जेनेवा कन्वेंशन पर ई करल गल रहल, जोन की सशस्त्र संघर्ष के दौरान घायल सैनिक और चिकित्सा कर्मी के सुरक्षा खातिर कानूनी ढांचा स्थापित कर ले रहा है। तब से रेड क्रॉस और रेड क्रेसेंट सोसाइटी 190 से अधिक देश में उपस्थित होके दुनिया भर में मानवतावादी संगठन चला के मानवतावाद के सेवा करेला। 1948 में विश्व रेड क्रॉस दिवस पहला हला मनावा कर रहा है। कार्यक्रम के ध्यान से सुन लो, बहुत धन्यवाद। लेंदी के फिर मिलब जा, नमस्ते।
3: हमारी धरोहर किरण जानकी के साथ, हमारी धरोहर।

0: घर मिलाते चलिए, समय सुबह के 9 बजे है। देश विदेश के समाचारों के साथ स्टूडियो में आ गई है आस्था। चलिए सुनते हैं उनसे संक्षिप्त समाचार। नमस्कार आस्था।
1: नमस्कार जी हाँ, 9 बजे के समाचारों में स्वागत है आप सभी का। व्यापार मंत्री माइकल सिक्योन ने कल एबन में आयोजित एक प्रेस वार्ता में विपक्ष नेता जुली रोंगो के बयानों का उन्होंने जवाब दिया। उन्होंने कहा कि स्टेट ट्रेडिंग कॉरपोरेशन और सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के बीच हुए समझौते में तय दरों का पूरी तरह पालन किया जा रहा है। मंत्री ने याद दिलाया कि ये समझौता वर्ष 2023 में तय किया गया था जब जुली रोंगो ऊर्जा मंत्री थे। मंत्री ने यह भी कहा है कि एसटीसी रोजमर्रा की आवश्यक वस्तुओं का आयात करेगी और इसके लिए जल्द ही टेंडर की प्रक्रिया जारी की जाएगी। वर्ष 2011 में स्थापित मॉरिशस रीयूनियन कॉन्टैक्ट ग्रुप आज क्षेत्रीय सुरक्षा सहयोग का एक महत्वपूर्ण मंच बन चुका है। मुख्य उद्देश्य है ड्रग्स की तस्करी और संगठित अपराध के खिलाफ कार्रवाई को और मजबूत बनाना। इस वर्ष एफसीसी की भी इस समूह से जुड़ गई है ताकि मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ लड़ाई को और मजबूत बनाया जा सके। आपको बता दें कि सितंबर 2026 से मॉरिशस और रीयूनियन के बीच नागरिक सुरक्षा को समर्पित एक नई उपसमिति भी स्थापित की जाने वाली है। अन्य खबरों में, इस वर्ष जुलाई महीने में अमेरिका अफ्रीका बिजनेस समिट का 18वां संस्करण मॉरिशस में लगने वाला है। 4 दिनों तक मॉरिशसी गल्फ स्टेट अफ्रीका और अमेरिका के बीच उच्च स्तरीय आर्थिक और व्यापारिक चर्चाओं का केंद्र रहेगा। आयोजकों के अनुसार सम्मेलन में 2500 से अधिक प्रतिनिधि शामिल होंगे जिनमें 7 नेता भी होंगे। हर वर्ष सड़क दुर्घटनाओं में लगभग 90,000 लोगों की जान जाती है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के अनुसार सड़क दुर्घटनाएं आज 5 से 29 वर्ष के युवाओं में मौत का सबसे बड़ा कारण।

0: कारण बन चुकी है। विश्व सड़क सुरक्षा सप्ताह 8 से 14 मई तक मनाई जा रही है और इस बीच अधिकारियों का मानना है कि सावधानी और जिम्मेदार व्यवहार से ही अधिकांश हादसों को रोका जा सकता है। बुधवार 6 मई तक मॉरिशस में चिकुनगुनिया के 147 मामले दर्ज किए गए। इस वर्ष की शुरुआत से अब तक कुल मामलों की संख्या 2,470 तक पहुंच गई। डॉक्टर फासिल कोदाबुकस के अनुसार मॉरिशस इस समय महामारी के चरम पर है। कौंदुस प्रयोगशाला में जांच का दबाव बढ़ चुका है, हालांकि स्वास्थ्यकर्मी पीसीआर परीक्षण के परिणाम 48 घंटे के भीतर देने का प्रयास कर रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर की खबरों में हुर्मुज जलमार्ग में अमेरिका और ईरान के बीच तनाव फिर से बढ़ चुका है। ईरानी मीडिया के अनुसार क्षेत्र में विस्फोट और गोलीबारी की घटनाएं सामने आई, जबकि अमेरिकी सेना ने अपने युद्ध पोतों पर हमले का दावा किया। अमेरिकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक अमेरिकी सेना ने जवाबी कार्रवाई भी की। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि युद्ध विराम अब भी जारी है, लेकिन ईरान को अमेरिकी प्रस्तावित समझौते पर हस्ताक्षर करने होंगे। तनाव के बीच ब्रेंट क्रूड की कीमत फिर $102 प्रति बैरल के पार पहुंच चुकी है। इसी के साथ ये समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।
1: Your news on NBC Play, NBC Play, NBCRadio.tv, NBCRadio.tv.
2: 819 kHz, ये है रेडियो मॉरिशस।

0: सभी श्रोताओं को विदिता की ओर से प्यार भरा नमस्कार। आज के चर्चा कार्यक्रम में हम आपका स्वागत करते हैं। श्रोताओं, आप जानते हैं कि हमारा जो कार्यक्रम है ये MBC TV3 पर लाइव प्रसारण होता है और साथ ही साथ फेसबुक पर भी लाइव होता है। तो आप जहां से भी हमारे इस कार्यक्रम के साथ जुड़े हुए हैं आपका हम स्वागत करते हैं। और आज का हमारा जो शीर्षक है उस पर बात करने से पहले हम आपको ये बता दें कि आज हमारे साथ स्टूडियो में जो मेहमान हैं उनका नाम है अश्विन कतवाड़ी जी, जो एक ज्यूरिस्ट हैं। नमस्कार अश्विन जी।
1: नमस्ते।
0: हमारे इस कार्यक्रम में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब आपके बारे में अगर हम बताएं तो आप लकी चाइल्ड के फाउंडर प्रेसिडेंट भी हैं और ये एक NGO हैं जो स्पेशल नीड्स वाले जो बच्चे होते हैं उनके लिए आप काम करते हैं। तो जब हम बात करते हैं ना स्पेशल एजुकेशन नीड, है ना, तो जो बच्चे हैं यहाँ पर और जो एजुकेशन है दोनों, तो एक तो बच्चा जो है स्पेशल नीड्स चाहिए उसको और दूसरा होता है पढ़ाई। तो जब हम ऐसे बच्चों की पढ़ाई के बारे में बात करते हैं तो क्या क्या करते क्या हैं हम, और पहले तो हम इन बच्चों के बारे में जानना चाहेंगे।
1: हाँ, तो विदिता जी बहुत बहुत धन्यवाद आप हमको बुलाए स्टूडियो पर। और मैं बताना चाहता हूँ कि जब एक बच्चा जब सो स्पेशल नीड का हम उसको टैग करते हैं तो वो आता है ऑटिज्म, जिसका ADHD होता है, अटेंशन डेफिसिट हाइपर रहता है, और अलग अलग से ऐसे ऐसे जैसे वो है लर्निंग डिफिकल्टीज, इंटेलेक्चुअल इम्पेयरमेंट। तो इन बच्चों के लिए खास एक करिकुलम है और उन लोगों को
0: एक स्पेशल स्कूल,
1: हाँ स्पेशल स्कूल रहता है उन लोगों के लिए, और उन लोगों के लिए थेरेपी भी होता है जिससे कि जो ज्ञान हम ऑर्डिनरी नॉर्मल स्कूल में करते हैं वो उन लोगों को स्पेशल तरीके से उन लोगों को सिखाया जाता है।
0: जी, उनका एक अलग तरीका होता है सिखाने के लिए। हाँ। तो जब हम पढ़ाई की बात करते हैं तो उनको क्या सिखाया जाता है, पढ़ना लिखना?
1: हाँ, सब कुछ
0: जैसे एक स्कूल में बच्चे को पढ़ाया जाता है। लेकिन कभी कभी कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जिनके लिए जैसे कि जो हमारे जो बच्चे होते हैं जो स्कूल नॉर्मल स्कूल जाते हैं तो उनको ABCD पढ़ाया जाता है, उनको वर्ड्स बनाने का सिखाया जाता है और ऐसी कुछ पढ़ाइयाँ चलती हैं, मैथमेटिक्स वगैरह होता है। तो आपके स्कूल में जो बच्चे हैं तो इन बच्चों को ऐसी ही पढ़ाई दी जाए?
1: मैं यहाँ पर एक चीज रेखांकित करना चाहता हूँ कि मेरा स्कूल नहीं है
0: जी।
1: मैं एक ऐसा एक यूनिक संस्था है लकी चाइल्ड जो सभी बच्चों के लिए है।
0: अच्छा।
1: मॉरिशस से ऊपर नॉर्थ से साउथ तक और रोड्रिक्स तक जाता है। तो हम क्या करते हैं, हम आउटरीच प्रोग्राम करते हैं
0: जी।
1: हम ये तक सीमित नहीं रहते हैं कि हमारे पास 10-15 बच्चे हैं और उन लोगों को सिखाते हैं। हम जाते हैं मॉरिशस भर में सभी जगह, सभी जगह जाते हैं। एक तो बच्चों के साथ खेलना, बच्चों के साथ एंगेज करना, बच्चों को स्टोरी टेलिंग करना, स्पेलिंग, बहुत तरह के हम एक्टिविटीज करते हैं।
0: बहुत समय लगता होगा?
1: हाँ, बहुत समय लगता है
0: ऐसे काम के लिए। एक टीचर का उसमें पेशेंस होना,
1: धैर्य
0: से काम करना,
1: हाँ,
0: और उसके साथ साथ काम करने के लिए वो जो प्यार होता है वो बहुत जरूरी होता है।
1: हाँ, ये एक जैसे बोलते हैं जब वी आर ऑल मेड इन द इमेज ऑफ गॉड, तो हम संस्था जैसे लकी चाइल्ड वो समझता है कि एवरी चिल्ड्रन इज मेड इन द इमेज ऑफ गॉड, और वो लोगों को थोड़ा एक टेक्निकल इश्यू है तो हम उस पर काम करते हैं।
0: तो आपको लगता है कि ये जो स्पेशल नीड्स वाले जो बच्चे हैं मॉरिशस में, जो उनका हक है, उनके लिए ये सब काम हो रहा है?
1: हाँ, हो रहा है, क्योंकि जब देखते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में तो कॉन्स्टिट्यूशन में सभी लोगों का ये रहता है, राइट्स रहता है, फ्रीडम ऑफ स्पीच, राइट टू एजुकेशन, तो ये सब काम चलता है। और जब आपने बोला है कि मैं फाउंडिंग प्रेसिडेंट हूँ लकी चाइल्ड का, तो उसमें से और एक संस्था निकला है
0: जी।
1: उसका नाम है जयप्रकाश नारायण सेंटर फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड वर्ल्ड पीस। तो वो एक तरह का थिंक टैंक है
0: जी,
1: जो देश विदेश में जहाँ पर हम ये काम करते हैं इन लोगों के मदद के लिए। तो थिंक टैंक का मतलब ही है कि रिसर्च, अलग अलग संस्थाओं से जोड़ना, अलग अलग प्रोफेशनल से जोड़ना और इन बच्चों के लिए काम करना
0: जी। तो ये जो आपका NGO है लकी चाइल्ड, इसकी प्रेरणा आपको कहाँ से मिली, शुरुआत कैसे हुई, क्या सोच रहे थे, अकेले किया, किसी ने साथ दिया, तो आप मुझे इसके बारे में बताइए।
1: ये असल है कि मैं यूके में पढ़ा हूँ
0: जी,
1: और पढ़ाई के बाद मैं काम करता था यूनिवर्सिटी में, तो मैं देखता था कि कैसे वहाँ पर ये जितने जो अडाप्टेशन होते हैं, जैसे यूनिवर्सिटी के बिल्डिंग है, बच्चों के लिए अलग से जैसे एक संस्था होता है, और वहाँ पर ये लोग कितना आराम से ये एग्ज़ाम के लिए जब पढ़ते हैं तो बैठते हैं तो आधा घंटा एक घंटा और मिलता है, क्योंकि उन लोगों का लर्निंग डिफिकल्टी है ना, तो उन लोगों का ये राइट होता है।
0: अच्छा,
1: तो मैं ये देखा। दूसरी बार है कि वहाँ पर जैसे स्पेशल नीड स्कूल होते हैं और कितने धैर्य से, जैसे आपने बोला, वो बच्चों को पढ़ाते हैं, तो मैं सोच रहा था
0: हाँ पेशेंस, बहुत पेशेंस,
1: हाँ, क्योंकि अलग अलग बच्चे अलग अलग तरीके से वो बिहेव करते हैं,
0: ये 1-to-1 होता है।
1: हाँ, तो 1-to-1 रहता है या 1:2, मैक्सिमम 1:6, तो वहाँ पर हेल्पर भी होता है, क्योंकि बड़ा देश है ना इंग्लैंड, तो बड़ा देश है, तो वहाँ पर रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा है, और जैसे यहाँ हर देश का नागरिक उन लोगों के लिए प्रिय है, तो मॉरिशस में भी हम सब बच्चे तो हमारे ही देश के बच्चे हैं, तो उन सब लोगों को देखना हमारा जिम्मेदारी रहता है ना, तो वहाँ पर भी यूके में खास, तो वहाँ से मैंने प्रेरणा ली है। और जब मैं मॉरिशस आया 11 साल के बाद, तो मैंने देखा कि यहाँ पर काम है लेकिन उतना ज़्यादा नहीं था उस समय, तो मैंने सोचा तो गवर्नमेंट तो अपना काम कर रहा है, तो एज एन NGO मैं क्या कर सकूँगा। जैसे बोलते हैं ना, लुक व्हाट यू कैन डू फॉर योर कंट्री एंड नॉट व्हाट द कंट्री कैन डू फॉर यू, तो उस विषय में तो मैंने सोचा कि एक संस्था हो जो इस क्षेत्र में काम करे, और एक स्कूल से सीमित नहीं हो
0: जी,
1: ज्यादा से ज्यादा बच्चे उससे जुड़े,
0: यानी कि आप बाकी स्कूल को अपने साथ जोड़ लेते हैं।
1: हाँ, जोड़ लेते हैं, या वहां पर जाते हैं, खेल कूद, जैसे खाना वितरण, कुछ ऐसा एक बच्चों को आकर्षित करने के लिए
0: जी।
1: अभी हाल ही में गत हफ्ता मैंने एक स्कूल में वो स्टोरी टेलिंग किया था।
0: अच्छा,
1: तो
0: जो स्टोरी टेलिंग कोर्ट करता है आपके टीचर्स आपके साथ
1: नहीं
0: जाते?
1: मैं खुद,
0: आप खुद करते?
1: हाँ, मैं खुद करता हूँ, और खुद मैं जो वॉलंटियर्स जो होते हैं, जो स्कूल जो बच्चे जो स्कूल से जो छुट्टी पैर पर है, तो मैं उन लोगों को लेकर उन लोगों को मैं जोड़ता हूँ।
0: तो ये तो आप हमारे नौजवानों को, हमारे बच्चों को प्रेरित कर रहे हैं कि वो भी ऐसे जो कि ज़्यादातर आजकल मोबाइल पे समय बिताते हैं, कम से कम वो बच्चे जब उनसे मिलेंगे तो उनको पता चलेगा कि भाई हम कितने खुश नसीब हैं कि हम लोग एक नॉर्मल स्कूल जाते हैं, हमारे लिए किसी को कुछ करना नहीं पड़ता, हम अपनी चीज़ें खुद कर सकते हैं। तो बच्चों के लिए भी प्रेरणादायक होता है कि वो कुछ समझते हैं, कुछ सोचते हैं, और अगर ऐसे बच्चों को छुट्टी के टाइम अगर हम ऐसी जगह लेके जाएं और उनकी दोस्ती कराएं, उनको आदत दें, तो कल को जैसे कि आपने एक अच्छा काम शुरू किया तो ये सारे बच्चे साथ मिलकर काम करेंगे।
1: मैं एक उदाहरण देता हूँ आपको। 20 साल पहले मॉरिशस में जब जैसे देखते हैं यहाँ मॉरिशस में मॉल्स होते हैं बहुत ज़्यादा,
0: जी जी,
1: 20 साल आगे नहीं, तो नहीं था। तो विषय नहीं था, तो हम सिर्फ मार्केट में जाते थे या स्कूल जाते थे जहाँ पर बहुत लोग जुटते थे, जैसे शादी में चले गए, तो अब मॉल है, तो मॉल में एक नॉर्मल बच्चा और एक स्पेशल नीड बच्चा वहाँ पर मिलते हैं, तो वो मान लो उसको एक फिट हो गया, जैसे एक सीजर जैसा, तो ये देखेगा तो उसको जैसे एक अजीब सा दिखेगा, तो ज्यादातर लोग क्या करते हैं, मोबाइल निकाल कर उसको फिल्म करते हैं।
0: ओह हाँ हाँ, आजकल तो ये ही सब चल रहा है कि वीडियो बना लेते हैं, सोशल मीडिया पे डाल देते हैं, मदद करने के लिए कोई नहीं आता।
1: मान लो स्कूल में, स्कूल बस में है या कहीं जा रहा है, तो उसको फिट हो गया, तो वो ये क्या करेगा, उसको बुली करेगा। तो बोलेगा जैसे अलग अलग, मैं यहाँ ये सब शब्दों का मैं उपयोग नहीं करूँगा, लेकिन आप समझ जाएंगे कि ये बोलते हैं कि ये फलाना ऐसा है ऐसा है, तो ये सब इंक्लूजन के दृष्टि से हमने ये संस्था की स्थापना की है, जिससे कि ये दो जो नॉर्मल बच्चे हैं और स्पेशल नीड बच्चे हैं साथ में आकर काम करें।
0: उनको पता होना चाहिए कि कुछ ऐसे भी बच्चे हैं जिनको हमारी ज़रूरत है, तो उन बच्चों को बताना पड़ता है, सिखाना पड़ता है कि आपको जाकर उनकी मदद करनी चाहिए, उन बच्चों को आपकी ज़रूरत है। तो जब उनको लगेगा कि हाँ उन बच्चों को हमारी ज़रूरत है तो हमें जाना पड़ेगा। अब जैसे स्टोरी टेलिंग, जब वो वहाँ पे स्टोरी टेलिंग कर रहा है तो कहीं ना कहीं वो अपने आप को भी एडुकेट कर रहा है।
1: हाँ।
0: तो ये सेल्फ एडुकेशन जो होता है, सेल्फ एडुकेट करें बच्चे खुद को, क्योंकि उनको कहानी सुनाने के लिए कहानी पहले पढ़नी चाहिए, हाँ। सीखनी चाहिए, तो वो सीख कर सिखा रहे हैं जो कि उनके ही
1: ये स्वाध्याय, जैसे मैं बच्चों को मैं डालता हूँ, ये मैं प्रेरणा देता हूँ कि आकर खुद देखें, क्योंकि ये जो बच्चे हैं वो लोग पढ़ते हैं, नॉर्मल बच्चे तो आकर पढ़ लेंगे, एक टेक्स्ट को पढ़ लेंगे, तो ये जिसके डिफिकल्टी है वो शब्द वो नाच रहे, जैसे
0: हाँ।
1: किसी को वो पढ़ रहे ना, तो जैसे मान लो ये शब्द नाच रहे हैं तो उसको फोकस करने में थोड़ा समय लगेगा। किसी को पढ़ना आता है लेकिन वो दिमाग और जो जुबान है वो अलग अलग कोऑर्डिनेशन में चल रहा है,
0: वो बोल नहीं पाता।
1: हाँ, बोल नहीं पाता है। कोई विजुअली इम्पेयर्ड है तो उसके लिए अलग से तरीके।
0: लेकिन सारे बच्चे एक ही स्कूल में होते हैं
1: लगभग। हाँ। लेकिन स्पेशलाइज भी होता है मॉरिशस के अंदर, तो विजुअली इम्पेयर्ड का अलग से स्कूल होते हैं।
0: जिन बच्चों को आंखों की प्रॉब्लम है वो अलग होते हैं, जिनको बोलने की प्रॉब्लम है वो थोड़ा अलग होते हैं, और फिजिकली अगर उनके लिए तो सारे बच्चे जो हैं उनको अलग अलग।
1: लेकिन लगभग जब मॉरिशस में लर्निंग डिफिकल्टी, ऑटिज्म ज़्यादा और डाउन सिंड्रोम, कोई सब एक ही स्कूल में लगभग जाते हैं।
0: तो ये जो ऑटिज्म वाले जो बच्चे होते हैं इनको एक्स्ट्रा अटेंशन देना पड़ता है।
1: हाँ, देना पड़ता है, और उन लोगों के लिए थेरेपी भी है,
0: क्योंकि मुझे पता है कि वो लोग ज़्यादातर लोगों से मिलना पसंद नहीं करते, वो ह्यूमन टच पसंद नहीं करते, जो कि मैंने अभी थोड़ी कुछ जाना है जब हमारे प्रोग्राम के लिए, तो मैं जानना चाहती थी उनके बारे में। तो मुझे पता है कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो मिलना चाहते हैं, जिनको अच्छा लगता है। मेरे साथ भी ऐसा हुआ था कि मैं एक फंक्शन में गई थी जहाँ पर एक बच्चा था और वो आके मुझे टच कर रहा था, मेरे हाथ को टच कर रहा था, ऐसे आके टच कर रहा था, और फिर बहुत खुश हो रहा था, और फिर मेरे गाल को टच करके बहुत खुश हो रहा था। जबकि दूसरे बच्चे, तो मैंने सोचा कि सारे बच्चे ऐसे ही होंगे, तो मैं दूसरे बच्चे के पास जब गई तो वो पीछे हट रहा था, क्योंकि उसको पसंद नहीं है, उनको भीड़ भाड़ पसंद नहीं है। और मैंने ये भी जाना कि उनको लाइट्स वगैरह भी अच्छे नहीं लगते।
1: लाइट,
0: हाँ, जैसे बहुत ज्यादा लाइट्स हो तो उनको अच्छा नहीं लगता, बहुत सारे लोग हो तो उनको अच्छा नहीं लगता।
1: हाँ, कोई फोटो सेंसिटिव होते हैं, जैसे लाइट है ना, तो ज्यादा सेंसिटिव होते हैं, तो उन लोगों को भी वो सब नहीं अच्छा लगता है। और एक मजे की बात मैं बताता हूँ, जैसे यूके में टीवी पर जब कोई ऐसा फ्लैश होता है या कुछ होता है तो आपको चेतावनी दी जाता है। हाँ, नीचे लिखते हैं कि there will be flashing on the, क्योंकि किसी को उसको पसंद नहीं है ना, तो लोग जान जाते हैं कि इसमें थोड़ा फ्लैश होगा या ज्यादा लाइट होगा या कुछ ऐसा रहेगा,
0: तो बच्चों को
1: तो उसको सावधान करने के लिए जैसे लिखते हैं ना, धूम्रपान ये सब मना है, तो उस तरह का फ्लैशिंग लाइट डाल देते हैं।
0: वैसे बात करते हैं जब ऐसे बच्चों की, तो नॉर्मली जब एक बच्चे को डायग्नोसिस किया जाता है, उनका डायग्नोसाइज किया जाता है, जब पता चलता है कि ये जो बच्चा है ये लाइक ऑटिज़म उसको हुआ है या तो फिर उसको आँखों की प्रॉब्लम है, तो ऐसे बच्चे जो हैं, जब माँ बाप को पता चल गया कि बच्चों को कोई प्रॉब्लम है, तो इन बच्चों के लिए उनका लीगल राइट क्या होता है?
1: उन लोगों के लिए जैसे मैंने बताया है कि कॉन्स्टिट्यूशन में उन लोगों का ये सेम, जैसे सब बच्चों का राइट एक ही है, समझना, तो इन लोगों को राइट है कि वो अप्रोच करते हैं, जैसे यहाँ अब अथॉरिटी बन गया है स्पेशल एजुकेशन नीच अथॉरिटी, तो वहाँ पर बच्चों के लिए एक स्पेशल वो वहाँ पर अप्लाई कर सकेंगे। और दो है, एक तो गवर्नमेंट स्कूल रिसोर्स सेंटर्स, और दूसरा है एनजीओज होते हैं, जैसे लकी चार।
0: तो ज़्यादातर बच्चे आपको, आप तो हर एक स्कूल में जाते हैं, तो आपको ज़्यादा बच्चे कहाँ नजर आते हैं?
1: ये सभी जगह है,
0: सभी जगह है,
1: सभी जगह है, जहाँ पर उसका जहाँ पर रहते हैं
0: पास।
1: हाँ,
0: पास में। अगर वो पास में रहते हैं तो जो गवर्नमेंट स्कूल है वहाँ जाते हैं, लेकिन अगर वो जो लोग थोड़ा दूर रहते हैं उनके अगर बगल में अगर कोई एनजीओ हो तो वो बच्चे वहाँ पे जाते हैं। और बहुत सारे एनजीओ हैं
1: मॉरिशस में, बहुत एनजीओ आ रहे हैं इस क्षेत्र में काम करने के लिए, और होना भी चाहिए, क्योंकि देख रहे हैं कि आधुनिकीकरण की वजह से और ये सब पॉपुलेशन और बढ़ रहा है,

0: तो ये है। और लगे हाथ मैं बताना चाहता हूँ कि जितने जो ये बच्चे हैं उन लोगों के लिए जैसे सरकार पूरा उन लोगों को देखते हैं।
1: यानी कि ये गारंटी है
0: हाँ
1: सरकार की
0: गारंटी,
1: तरफ से
0: हाँ कि
1: कि
0: एजुकेशन फुल।
1: फुल

0: को लेने
1: हाँ,
0: के
1: ये
0: लिए
1: सब होता है
0: सारे बच्चों
1: हाँ,
0: के लिए,
1: बच्चों के
0: कोई
1: लिए
0: बच्चा पीछे नहीं रहता, सारे बच्चे
1: हाँ, वो कोई ना कोई उस लोगों के लिए ये रहता है, वो ट्रांसपोर्ट ये सब उपलब्ध हो जाता
0: उनको
1: है,
0: प्रोटेक्ट किया जाता है।
1: हाँ ये सब, क्योंकि इन ये बच्चे स्पेशल नीड होते हैं, लेकिन हमको ये भी दे आर नॉट लेस एबल
0: जी, लेस एबल जी,
1: दे आर नॉट लेस एबल
0: जी जी,
1: इसीलिए आगे बोलते थे ये एक टर्म आया था बीच में, आगे तो हैंडीकैप बोलते थे
0: हाँ,
1: तो बाद में आया कि ऑटोमा कैपाब, तो पुकवा ऑटोमा कैपाब, एवरीबॉडी इज एबल, नोबडी इज, समझ रहे ना,
0: इसीलिए उसको चेंज किया गया,
1: इसको चेंज गया, फिर वापस गया हैंडीकैप पे और इन लोगों को स्पेशल नीड्स,
0: स्पेशल नीड्स
1: हाँ,
0: क्योंकि
1: ऑटोमा कैपाब
0: क्योंकि
1: पॉलिटिकली रॉन्ग हो गया,
0: फर्क है दोनों में, फर्क है दोनों में, एक बच्चा जिनको शारीरिक तौर पे कोई प्रॉब्लम है और एक बच्चा जो अपने आप से पढ़ाई नहीं कर पा रहा है, उनको आंखों से नहीं दिख रहा है, तो दो अलग चीजें हो गई, क्योंकि जिस बच्चे को पैर के साथ प्रॉब्लम है या हाथ के साथ प्रॉब्लम है, फिर भी उनका दिमाग सही चल रहा है और वो अपने स्कूल में जा रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, फोकस कर रहे हैं, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम तब आता है जब बच्चे समझ नहीं पाते हैं, जब उनको समझाना पड़ता है, जब उनसे बात करनी पड़ती है, और मुझे लगता है कि ऐसे बच्चों के साथ बहुत कार्मली पेश आना चाहिए, आराम से,
1: कोमलता से,
0: हाँ बहुत आराम
1: मैं
0: से।
1: एक चीज़ मैं अपना अनुभव से मैं बताता हूँ आपको, जब ये गत हफ्ते की बात है जैसे मैंने बोला स्टोरी वाला, तो एक क्लास में 20 लोग थे, तो पहला जिसको हमने बोला कि एक हमने रखा था कितने अभी स्टोरी बुक्स, तो उन लोगों को बोला गया कि एक चूज करो, पढ़ो और आकर सामने पढ़ो, तो पहला जो सबसे कॉन्फिडेंट था क्योंकि उसमें घर में इंग्लिश ये सब काफ़ी कॉमन था, तो वो आकर बात किया, तो चलते चलते जिसको जो पिछला जो है सत्र में जो सबसे जो टिमिड था बच्चा, वो बोल रहा है नहीं नहीं मैं नहीं जाऊंगा, तो ये बच्चों को देखकर तो बाद में उसको भी थोड़ा कॉन्फिडेंस आ गया,
0: यानी कि बच्चों के साथ रहकर उनके साथ पढ़ लिख कर जब उनको देखते हैं कुछ करते हुए तो उनको कॉन्फिडेंस आता है,
1: आता है,
0: तो ये यानी कि जहाँ तक मैं समझ रही हूँ कि ऐसे जो बच्चे होते हैं उनमें कॉन्फिडेंस नहीं होता है,
1: थोड़ा
0: उनमें डर होता
1: हाँ,
0: है,
1: थोड़ा डर होता है, लेकिन सभी में नहीं। मैं एक उदाहरण देता हूँ, अभी साउथ में एक मैं एक स्कूल में गया था, एक स्पेशल एजुकेशन नीड्स स्कूल में, तो वहाँ पर बच्चे गाना गा रहे थे,
0: बच्चे गाना गा रहे थे
1: हाँ,
0: हाँ
1: बच्चे गाना गा रहे थे और एक आह्वान बजा रहा था
0: हाँ,
1: और जब वे आए तो डीजे थोड़ा देर से वो म्यूजिक चलाया, तो ये बच्चा जाकर सब सबसे ऐसे ऐसे कर रहा है, सबको मिल रहा है, वो बोल रहा है आलो आलो सबसे, तो इतना कॉन्फिडेंस आ गया, तो मैं मेरे पास एक वहाँ के जो एक मंत्री था, तो मैं बोल रहा हूँ देखो कितना हम इन लोगों पर जैसे कॉर्पोरेट में कितना पैसा खर्च करते हैं कॉन्फिडेंस के लिए, और ये देखो इसमें ब्रीमिंग कॉन्फिडेंस इतना ज़्यादा है
0: बच्चों को, जैसे एक टाइम पे जब उनको ये खुशी मिल जाती है, क्योंकि जैसे मैंने कहा था कि मैं भी एक इवेंट में गई थी और वहाँ पर मैंने भी विटनेस किया कि बच्चे जो हैं अगर म्यूज़िक लगा दो, अगर एक ने डांस करना शुरू किया, दूसरा आ गया, तीसरा आ गया, तो एक दूसरे को देखते हुए सब थोड़ा सा उनका डर भाग जाता है कहीं, और फिर एक बात अगर उन्होंने एंजॉय करना शुरू कर दिया, मैंने उनको डांस करते हुए देखा है, मैंने गाना गाते हुए सुना है, मैंने उनको गावान आप बोल रहे हैं, मैंने गावान बजाते हुए सुना है, मैंने उनको बॉलीवुड के गाने गाते हुए सुना है, और मैंने सबसे उनसे मिल एक बच्चा आया जो जिसने मुझे हक किया, फिर दूसरा आया, फिर तीसरा आया, तो सब बारी बारी करके जैसे जैसे उनके लिए एक उनको करना ही है, तो वो मुझे जानते नहीं पहचानते नहीं, एक से मैंने बात करी उसने मुझे हक किया, दूसरे ने देखा दूसरे ने आके हक किया, तो लगा जैसे वो अपनापन ढूंढते हैं, लेकिन थोड़ा सा समय लगता है,
1: समय लगता है, लेकिन एक मैं अब एक उदाहरण देता हूँ, जैसे एक लीड होता है उसी ग्रुप में
0: हाँ।
1: तो जैसे म्यूजिक लगा तो ये उसको देख रहा है,
0: सब फॉलो करते हैं,
1: सब फॉलो करते हैं, तो एक शब्द आता है हमने नेगेटिव उसका कनोटेशन दिया है, पीयर प्रेशर, तो पीयर प्रेशर हो गया ना, तो ये एक मॉब बिहेवियर हो जाता है
0: हाँ।
1: इंग्लिश में मॉब बिहेवियर, तो ये एक किया और दूसरा किया, तो जिसके पास कॉन्फिडेंस बिल्कुल जीरो है
0: वो भी आएगा,
1: वो भी चला आएगा,
0: क्योंकि उसको पता है

0: करना है, सबने के मुझे करना है,
1: तो ये ग्रुप थेरेपी बहुत बहुत आवश्यक है इन बच्चों के लिए. जैसे ग्रुप थेरेपी, जैसे सब लोग आते हैं, तो लकी चाइल्ड एक दूसरा काम करता है.
0: जी,
1: लकी चाइल्ड क्या करता है, जो माँ बाप होते हैं,
0: जी
1: अब ये तो बच्चे हो गए, जो माँ बाप होते हैं उन लोगों को कॉन्स्टेंटली ये परेशानी होती है कि मेरा बच्चा ऐसा है, मेरा बच्चा ऐसा है. कोई तो डिनायल में भी है, वो बोलते हैं नो मुजाफोबिया. तो ये भी एक बुरी बात है. बच्चा यदि पीड़ित है उसको स्पेशल स्कूल में लेकर जाओ
0: जी,
1: उसको अटेंशन वाला ये ऐसा ग्रुप थेरेपी ये सब कराओ. और दूसरी बात है कि पेरेंट्स जितने जो होते हैं, जैसे यूके यूएस में होता है अल्कोहल एनोनिमस, जो जैसे शराब भी है, वो सब आकर एक जगह बात करते हैं. तो प्रयास हो रहा है लकी चाइल्ड में जितने जो पेरेंट्स हैं एक साथ आए और उन लोगों का डिस्कशन कैसे तो वो हैंडल कर रहे हैं.
0: ऐसे बच्चों के साथ इवेंट्स वगैरह होता है, म्यूजिक डे वगैरह होता है, तो पेरेंट्स आते हैं.
1: हाँ आते हैं. तो ये जैसे मैं बता रहा था उस दिन जब ये बच्चा कर रहा था तो उसके माँ बाप बहुत खुश थे, क्योंकि इतने कॉन्फिडेंस से बच्चे आ गए हैं स्कूल में और पढ़ाई के साथ साथ ये सब एक्टिविटी.
0: क्योंकि एक नॉर्मल इंसान को, मान लो कोई इवेंट हो रहा है, एक नॉर्मल इंसान से जब आप बात करने जाते हो, हम ही जब कभी बात करते हैं, कभी इंटरव्यू लेने जाते हैं, अगर हमने माइक लेके अगर किसी के सामने रख दिया तो वो घबरा जाते हैं. नॉर्मल इंसान घबरा जाता है. अब एक इवेंट कर रहे हैं, एक म्यूजिक डे कर रहे हैं, एक स्पेशल प्रोग्राम कर रहे हैं जहाँ पर आपका जो बच्चा है स्टेज पर परफॉर्म कर रहा है, तो ये बड़ी बात होती है,
1: बहुत बड़ी बात.
0: तो ऐसे बच्चों को स्टेज पर लाने के लिए मुझे लगता है कि जो एफर्ट्स होता है वो ज़्यादातर उन टीचर्स का होता है जो उनके साथ काम करते हैं.
1: बहुत सराहनीय बात है, क्योंकि ये क्योंकि बच्चों को पहला तो वो लोग जब आते हैं स्कूल में तो जैसे बोलते हैं फाहुश, क्योंकि एक तो अकेले से उसका है, वो अकेले रहता है, बाद में स्कूल में आता है तो ये मॉब बिहेवियर के साथ वो बढ़ता है, बड़ा होता है. अब बाद में इसको स्टेज पर लेकर जाना तो ये बहुत, एक भरतनाट्यम भी मैंने देखा है जो स्पेशल नीड बच्चे को, और एक पियानो बजाते हुए और गाना, तो मल्टी टैलेंटेड होते हैं ये बच्चे.
0: तो अगर हम बात करते हैं इक्वल अपॉर्चुनिटीज एक्ट 2008, डिस्क्रिमिनेशन को रोकने में क्या रोल अदा करता है?
1: तो जैसे बोलते हैं ना, उसमें इक्वल अपॉर्चुनिटी में सबको एक समान. आप शायद अभी पोर्टलू में जाएंगे तो सोशल ये है NPF बिल्डिंग, उसमें देखेंगे तो काफ़ी एक विकलांग वो एक लड़का है, वो लिफ्ट चलाता है.
0: अच्छा.
1: हाँ, तो उसको सामान्य रूप से उसको रखा है, क्योंकि उसका भी काम होना चाहिए ना उसके रोजगार के लिए.
0: जी,
1: तो उसको बैठाया है वहाँ पर, तो उसको काम है सिर्फ आपको पूछना कहाँ जा रहे हैं, किस फ्लोर पे, तो वो दबा देगा, बस सिंपल सी बात है. किसी को रिसेप्शनिस्ट में बैठाया है रिसेप्शन पे, या फोन ऑपरेटर, तो उसका रोजगार आ रहा है, उसका भी इक्वल राइट है. और एक दूसरा चीज़ है कि हमने ये मॉरिशस में 20 साल पहले हमारे बिल्डिंग्स जो होते थे वो अडाप्टेड नहीं थे. जैसे विकलांग लोग आ गए या कोई ऐसा जो उसको नहीं समझ में आता था या विजुअल इम्पेयर, तो अब देखेंगे बाय है वहाँ पर, जहाँ पर जाएंगे तो डॉट डॉट होता है.
0: हाँ.
1: तो ये सब जैसे हर जगह असिस्टिव ये टेक्नोलॉजी आ गया है और उसमें AI भी आ गया है अब
0: जी
1: सभी जगह, तो इन लोगों की मदद के लिए.
0: ओके, तो हमारे पास एक दो सवाल भी, अगर हमारे श्रोता भी सवाल करना चाहते हैं तो कर सकते हैं. एक सवाल हम आपसे करना चाहेंगे तो कि आप समझा सकते हैं कि ये जो डिसेबिलिटी एक्ट 2016 इंक्लूजन और एक्सेसिबिलिटी जो होता है वो कैसे सपोर्ट करता है?
1: हाँ, तो यही मैं बोल रहा हूँ, जैसे बिल्डिंग, पब्लिक बिल्डिंग्स ज़्यादातर, उसमें स्कूल्स में, तो ये जो जितने जो स्कूल है, जितने जो पब्लिक बिल्डिंग्स है, आप अभी जाएंगे तो
0: इसके अलावा
1: हाँ उसमें ये एक चीज़ हो गया है. और दूसरा है कि इक्वालिटी, उसमें कोई भेदभाव कुछ नहीं.
0: जी
1: हाँ,
0: तो नॉर्मली अगर कोई ऑफिस में जा रहा है काम करने के लिए तो दोनों का हक बराबर बनता है.
1: हक बराबर,
0: यानी कि अगर अगर किसी को कोई समस्या है भी, लेकिन अगर उनका रिजल्ट देखते हैं और देखते हैं कि वो ज़्यादा लायक है.

0: उस काम के लिए, तो उसको इग्नोर करके उनको पूरा हक दिया जाता है कि वो
1: नहीं, उसको उसको उसके हिसाब से एडजस्टमेंट।
0: जी चलो ये तो ठीक है। हाँ। अभी जब हम बच्चों की बात कर रहे हैं तो जैसा भी आप कह रहे थे कि ये जो बच्चे हैं इनके लिए अलग अलग स्कूल बनाए गए हैं, अलग अलग एनजीओज में इनको रखा जाता है, तो वहाँ पे जो बच्चों के लिए काम होता है तो क्या सिर्फ पढ़ाई ऐसी पढ़ाई होता है वो नॉर्मल तरीके से, जो बच्चे होते हैं उनका तो शायद नॉर्मल तरीके से होता है, लेकिन जब हम ऑटिज़म की बात करते हैं तो यहाँ पर बच्चों को समझने में थोड़ी तकलीफ होती है, तो ऐसे बच्चों का जो फ्यूचर होता है सरकार की तरफ से लाइक क्या होता है?
1: यहाँ पर देखेंगे कि एक प्रैक्टिकल थिंग में मैं आपको बस बताता हूँ। हमारे जो ब्रेन होता है वो प्लास्टिक होता है
0: जी,
1: समझे ना, तो उस पर काम करते करते वो जो एक जैसे प्लास्टिसिटी होता है वो बदलता रहता है। हमारा जो दिमाग होता है, जो ब्रेन है, तो वो जाकर अब देखेंगे एक बच्चा जब एक मैंने एक प्रैक्टिकली मैंने देखा है कि बच्चा जो है जो जब आया था स्कूल में तो वो ऐसा स्पेशल नीड का वो हम उसको एक एक्सट्रीम केस था, तो बाद में चलते चलते चलते वो जैसे पेशाक पार कर गया, वो HSC पार कर गया, यूनिवर्सिटी तक चला गया। तो ये भी होता है,
0: ऐसे बच्चे, आपने देखा है।
1: हाँ, यूनिवर्सिटी तक चले जाते हैं
0: तो ऐसे बच्चे, लेकिन बहुत कम ऐसे बच्चे होते हैं।
1: कम होता है लेकिन होता है। हाँ, हो जाता है।
0: वो काम भी करते हैं, नॉर्मल काम करते हैं।
1: कोई आर्टिस्ट बन गया, कोई प्रोफेशनल बन गया, कोई डॉक्टर बन गया,
0: डॉक्टर भी।
1: तो क्योंकि ये बदलता रहता है ना आपका, क्योंकि वो पढ़ रहा है, उसको समझ में आ रहा है। कोई म्यूजिशियन बन गया, बड़ा म्यूजिशियन। तो ये सब होता है।
0: ओके, जब स्कूल की बात करें तो स्कूल में ये लाइक बच्चों के लिए एडजस्टमेंट करना ये उनका अधिकार बनता है कि अगर कोई किसी बच्चे को कोई तकलीफ है, अगर वो स्कूल जा रहा है, नॉर्मल स्कूल भी जा रहा है, तो ये जो स्कूल हैं चाहिए कि वो एडजस्ट करे बच्चे के साथ। जैसे कोई बच्चा अगर व्हीलचेयर में जा रहा है तो
1: वही मैंने बताया ना।
0: मैं स्कूल की बात कर रही हूँ। तो स्कूल में भी ये सब, यानी कि स्कूल में भी ये सारी जो सुविधाएं हैं ये भी बच्चों को प्राप्त हो रहा है अभी।
1: और मॉरिशस में और एक चीज़ है कि हेल्पर भी आ गया है
0: स्कूल में।
1: हाँ, स्कूल में जो जो बच्चे वहाँ पर रजिस्टर करते हैं, जो मान लो कोई हैंडीकैप हो गया या कोई उसमें है, तो उन लोगों के लिए एक खास एक हेल्पर भी आ गया है। तो सरकार उन लोगों को भी ये देते हैं
0: सारे स्कूल में
1: एक बच्चे बच्चा जब भी स्कूल प्राइमरी स्कूल में है तो एक केयरर उसके साथ रहता है। तो मान लो एक क्लास में पढ़ रहा है, मान लो उसको
0: एक क्लास से निकलकर दूसरी क्लास में जाना
1: है या वॉशरूम जाना है,
0: तो वो उनको लेकर जाते हैं,
1: उसको लेकर जाते हैं, हैंडल करते हैं, उसको वॉशरूम लेकर जाना, उसको एक क्लास से दूसरे क्लास में जाना। अब मान लो सेकेंडरी स्कूल में चला गया तो प्राइमरी स्कूल में एक ही क्लास डेडिकेटेड होता है, है ना। और सेकेंडरी स्कूल में एक क्लास से यहाँ कंप्यूटर लैब से आर्ट रूम से डिज़ाइन रूम, डिज़ाइन रूम से म्यूजिक रूम, तो ये सब के लिए एक डेडिकेटेड रहता है।
0: तो ये ज़रूरी है, यानी कि उनको
1: सरकार दे रही है,
0: मांग करनी चाहिए।
1: हाँ, मांग
0: और अगर एक जो हेल्पर है अगर वो नहीं आ पाए तो उसके उसको कोई और किसी और को भेजा जाता है। हाँ, लेकिन हेल्पर होना चाहिए। यानी कि बच्चे का हक है पूरा अधिकार है कि उनके साथ स्कूल में एक हेल्पर हो। हाँ, अब अगर एक क्लास में दो या तीन बच्चे ऐसे हो तो तीनों का अलग अलग हेल्पर होता है या एक ही हेल्पर होता है जो तीनों की मदद करता
1: है? नहीं, तो डेडिकेटेड होना चाहिए ना। तो ये बहुत रेयर है
0: ऐसा अभी तक,
1: क्योंकि
0: अगर हम देखें, अगर लीगली तौर पे हम अगर देखते हैं कि अगर
1: सबका अपना अपना होगा।
0: यानी कि अगर एक क्लास में तीन ऐसे बच्चे हैं तो तीनों का अलग अलग एक हेल्पर होगा,
1: एक नहीं होगा कि सभी, समझे ना। और बहुत यहाँ मॉरिशस में पॉपुलेशन कम है ना
0: जी,
1: तो इंसिडेंस प्रोबेबिलिटी बहुत कम है कि एक क्लास में दो तीन ऐसे बच्चे होंगे, लेकिन होंगे तो सबका अपना अपना रहना चाहिए।
0: तो
1: पर्सनल केयर है ना, तो सबका अपना अपना होना चाहिए।
0: आप कभी, आप लोगों को ऐसे केसेस आए हैं जहाँ पर जो माता पिता हैं उनका बच्चा जो है उनको कोई प्रॉब्लम है लेकिन फिर भी वो अपने बच्चे को स्कूल नहीं भेजते, क्योंकि बच्चे का तो हक है ना स्कूल जाना।
1: नहीं, स्कूल जाना तो अनिवार्य है
0: जी,
1: लेकिन ऐसे
0: मान
1: भी
0: लो, मान लो, मान लो कोई माँ बाप है उनके घर में एक ऐसा बच्चा है जो थोड़ा सा देर से समझता है, लेकिन माँ बाप जो है कहते हैं कि नहीं मैं अपने बच्चे को नहीं स्कूल नहीं भेजना चाहती हूँ, तो लीगली तौर से अगर हम देखते हैं तो ये अच्छी बात नहीं है, क्योंकि वो बच्चे की पढ़ाई रोक रहे हैं, जबकि बच्चा स्कूल जाके कुछ सीख सकता है, जबकि बच्चा हो सकता है कि धीरे धीरे करके अपने आप को इम्प्रूव कर सकता है, लेकिन अगर आपने उनको घर में कहे नहीं हमारे पास दादा दादी हैं बच्चे को वही देखेंगे हम उनको स्कूल नहीं भेजेंगे, ऐसा हुआ है?
1: नहीं, स्कूल भेजना तो ये
0: आपके पास कोई ऐसे
1: नहीं, ऐसे नहीं आया है, लेकिन केसेस आए हैं जहाँ पर माँ बाप डिनायल में है कि मेरा बच्चा स्पेशल नीड्स है। ये है,
0: तो ऐसे में क्या करते हैं वो, उनको नॉर्मल स्कूल भेजना चाहते हैं
1: तो वो जैसे अड़े रहते हैं कि मेरा बच्चा ठीक है और वो ही स्कूल में जाएगा,
0: तो
1: और वहाँ सबको परेशान कर रहा है,
0: ऐसा हुआ है कई केसेस हुए तो ऐसे में लीगली तौर पे
1: तो तब उसको उन लोगों को काउंसलिंग किया जाता है
0: माँ बाप को।
1: हाँ, तो कि
0: उनको समझाया जाता है कि देखो ये सही नहीं है, आप गलत कर रहे हैं, और अगर वो उसी जिद पे अड़े रहे तो
1: होता है और टेस्ट ये सब रहता है, तो ये
0: बच्चों का टेस्ट होता है।
1: हाँ, बच्चों का काउंसलिंग, थेरापिस्ट ये सब जाकर, ये ऑक्यूपेशनल थेरापिस्ट भी होता है, तो उन लोगों को सब जब एक डायग्नोसिस होता है तब ऑफिशियली उन लोगों को बताया जाता है कि
0: तो हम अगर यहाँ से अगर हम 10 या अच्छा ठीक है यहाँ से अगर हम निकलकर 20 साल पीछे जाते हैं तो बच्चों का ये अधिकार था पहले, उनको एक्नॉलेज किया गया था,
1: था, था लेकिन संस्था नहीं थे
0: अच्छा
1: इतना ज़्यादा, बहुत कम NGOs होते थे उस समय
0: उन बच्चों के लिए।
1: हाँ, बच्चों के लिए
0: तो अभी सारी सुविधाएं
1: अब सब है ना, बहुत जब रिसोर्स सेंटर हो गया है, NGO बहुत ज्यादा काम कर रहे हैं, और
0: तो बच्चों को अभी कोई परेशानी नहीं है,
1: अभी तो कोई नहीं बोल सकेगा, लेकिन सिर्फ एक चीज़ है कि मान लो मैं विजुअली इम्पेयर्ड हूँ, मैं माइबू में रहता हूँ और स्कूल बोबासा में है, तो ये थोड़ा दूर पड़ जाता है
0: जी।
1: लेकिन ज़्यादा ऐसा वो हम मॉरिशस के अंदर ये देख रहे हैं कि सभी जगह स्कूल्स हैं, NGO और रिसोर्स सेंटर।
0: आपके हिसाब से जब हम इन बच्चों के बारे में बात करें हैं जो स्पेशल नीड्स वाले बच्चे हैं, तो ये जो बच्चे होते हैं इनको जब पढ़ाया लिखाया जाता है, इनको इनको पढ़ाया लिखाया इसलिए जाता है ताकि बाकी बच्चों की तरह इनको भी वो हक मिले कि वो अपने आप को एडुकेट करे, लेकिन जब आप लोग बाहर जाते हैं जैसे आपने कहा कि एक स्कूल में अगर कोई बच्चा है उसको हेल्पर की ज़रूरत है, तो ऐसे जो बच्चों का जो स्कूल होता है उनको बाहर आप लोग लेकर जाते हैं, पिकनिक्स पे लेकर जाते हैं, तो वहाँ पे उनको हेल्प कौन करता है?
1: तो यही जो डेडिकेटेड जो जो रहता है उन लोगों के साथ, तो उन्हीं लोगों के साथ जाते हैं,
0: क्योंकि अगर एक एक बच्चे के साथ अगर आप एक हेल्पर डाल रहे हैं तो मान लीजिए एक क्लास में 10
1: नहीं, आप स्पेशल स्कूल्स के बारे में बात करें, स्पेशल स्कूल से तो उन लोगों के साथ हेल्पर रहता है, तो एक एक बच्चे मान लो 5 बच्चे के लिए एक हेल्पर और एक टीचर है
0: वो रहता है।
1: हाँ, वो रहता है ना,
0: यानी कि उनकी
1: ये सब सुविधाएं होती है,
0: या तो फिर माँ बाप के साथ उनको भेजा जाता होगा।
1: नहीं नहीं, वो सब लोग आते हैं, अभी इंडिविजुअली स्कूल में मुझको पता नहीं है, लेकिन जैसे देखते हैं कि स्कूल में जब जाते हैं तो वहाँ पर जो सीवियर केसेस है उन लोगों के साथ एक डेडिकेटेड रहता है
0: जी,
1: जो सीवियर केसेस में जो बच्चे हैं तो अटैच रहता है
0: जी,
1: लेकिन बाकी जो होता है वो अलग अलग से एक बाँच का एक टीचर और एक हेल्पर या 6 बच्चों,
0: बच्चों का। आज हम जब हम बात कर रहे हैं बच्चे, वो बच्चे स्पेशल नीड्स वाले जो बच्चे हैं उनका जो अधिकार होता है वो सिर्फ पढ़ाई तक सीमित नहीं होता,
1: पढ़ाई तक सीमित नहीं होता है, जैसे मैंने बोला इक्वल अपॉर्चुनिटी काम के लिए। अब जैसे आप बोल रहे थे कि एक मान लो एक संस्था में उसको काम मिला, तो उसके आधार पे मान लो, क्योंकि सिर्फ मान लो उसका हैंडीकैप उसके पैर में है, तो दिमाग हाथ तो शाम का काम कर रहे हैं ना,
0: हाँ, तो उनको काम करने में कोई तकलीफ नहीं होगी, वो काम कर सकते हैं।
1: सिर्फ अडाप्टेशन होना चाहिए, जैसे एक मान लो विजुअली इम्पेयर है तो उसके लिए अलग से कीबोर्ड होता है और स्क्रीन थोड़ा बड़ा होगा, या उसका अडाप्टेशन वो तो सभी कंप्यूटर में होता है
0: जी। यानी कि बच्चों को अभी ऐसी कोई तकलीफ नहीं होती,
1: नहीं होना चाहिए,
0: और नहीं होना चाहिए,
1: नहीं होना चाहिए।
0: और ऐसे कोई केसेस आपको मिले हैं जहाँ पर माँ बाप शिकायत करते हैं किसी चीज़ को लेकर कि बच्चे जो हैं स्कूल जाना नहीं चाहते, कोई टीचर बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट होता है, ऐसे कोई
1: नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अब जब ट्रेनिंग हो रहा है, MI में ट्रेनिंग होता है और यूनिवर्सिटी में भी ये सब आ गया है, UTM भी कुछ अभी ट्रेनिंग दे रहा था, अभी MI भी इसमें सक्रिय हो गया है, तो जो जो काम करते हैं उस क्षेत्र में, उन लोगों को जैसे बोलते हैं गॉड सेंट, गॉड गिफ्ट है
0: जी,
1: उन लोगों में एक अलग का यो करेज हो जाता है जो इन लोग इन सब बच्चों के साथ काम करता है, और बहुत करेज के। और मैं अभी 6 साल हो गया है जब से हमने लकी चाल का वो हमने किया है, 2019 में हुआ था, तो अब देखते हैं कि बहुत एम्पैथी हो गया है इन टीचरों में,
0: उनके लिए
1: अलग लेवल का हो गया है, तो जो काम करते हैं वो बहुत नमी से पेश आते हैं बच्चों के साथ, कोई कोई तो मारता है भी वो कैरो को, जब एक फिट में उसको मार देता है तो, लेकिन वो सह लेते हैं क्योंकि वो लोग को पता है कि ये,
0: यानी कि जो लोग काम करते हैं बच्चों के लिए उनको पहले से ही समझा दिया जाता है कि देखो ये बच्चे इनको फिट्स आते हैं तो आपको थोड़ा सावधान रहना पड़ेगा, और ऐसे में अगर बच्चे को ये आ गया तो उनको पता है कि ये
1: ये तो नॉर्मल पॉटन पासल, नॉर्मल चीज है।
0: वैसे हमारे जो श्रोता है, अगर आप हमें फोन करना चाहते हैं तो 4028085 पर आप हमें फोन कर सकते हैं अगर आपके पास कोई सवाल है। तो अभी के लिए तो हम इतना जान चुके हैं कि जो बच्चा स्पेशल नीड वाले जो बच्चे होते हैं उनका क्या अधिकार है, उनका अधिकार है कि वो पढ़ाई करें, उनका अधिकार है कि वो समाज में बैठे, उनका अधिकार है कि वो अगर काफ़ी होशियार है तो वो डॉक्टर भी बन सकते हैं, वो जीवन में आगे बढ़ सकते हैं, वो कोई भी ऐसा काम है वो कर सकते हैं, है ना। तो जब हम स्पेशल नीड्स वाले बच्चे बात कर रहे हैं तो 18+ या अगर कोई इंसान जैसे कि कोई डॉक्टर बन गया जैसे आपने बोला, तो कभी ऐसा हुआ है कि बाद में जाकर उनको कोई तकलीफ हो रही है, या हम उनको बच्चे तो नहीं बोलेंगे क्योंकि वो तो बड़े हो गए, एडल्ट्स हो गए हैं, तो मैं थोड़ा सा आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट निकल कर मैं आपसे पूछ रही हूँ, तो कभी ऐसा हुआ है कि लोग आकर कहते हैं कि नहीं ये डॉक्टर के साथ मुझे ये नहीं करना, नहीं, उनको थोड़ा
1: ये
0: मेंटली क्या वो प्रिपेयर्ड होते हैं?
1: नहीं, लेबल नहीं करेंगे ना, क्योंकि
0: वो मेंटली प्रिपेयर्ड होते हैं।
1: हाँ, क्योंकि एक चीज़ है, मैं एक किसी को पर्सनली जानता हूँ, वो उसको ये थोड़ा स्पेशल नीड है फिर भी उसको ये फिट होता है, ये क्या एपिलेप्सी, एपिलेप्टिक फिट होता है, तो अब आधुनिकरण में देखेंगे कि उसको स्लो रिलीज टैबलेट दिया जाता है, तो एक टैबलेट सुबह में लेता है तो पूरा दिन उसको हेल्प करता है,
0: उनको रोज लेना पड़ता है?
1: हाँ, रोज लेना पड़ता है, लेकिन वो ठीक है, वो काम कर रहा है, अपना काम कर रहा है। आगे 20 साल पहले तो रेगुलरली उसको फिट आता था, अब आ गया है टैबलेट जो स्लो रिलीज है, उसको लेता है और आप मज़े से काम करता है।
0: यानी कि अभी अगर हम देखेंगे कि ये जो स्पेशल नीड्स वाले जो बच्चे हैं ये किसी से कम नहीं है, ये सेम है, हम जैसे ही हैं, जैसे हमें लगता है कि उनमें कोई कमी है उनको लगता हो कि हम में कोई कमी है, है ना, हम उनको जिस नज़र से देख रहे हैं वो हमें दूसरी नज़र से देख रहे हैं कि इसका दिमाग बहुत ज़्यादा चलता है, इतना स्ट्रेस क्यों लेता है, क्योंकि ज़्यादातर स्ट्रेस तो जो जिन्हें हम नॉर्मल कहते हैं वही लेते हैं ना, एग्जाम का स्ट्रेस होता है, सबका स्ट्रेस होता है, ऐसे बच्चों को किसी चीज़ का स्ट्रेस नहीं होता है, वो जो भी करते हैं अपने धुन में करते हैं।
1: ये एक चीज़ मैं मज़े की बात में बताता हूँ आपको, मैं किसी को जानता था, वो बहुत बढ़िया वो पेंटिंग करता था
0: जी,
1: तो पेंट करते करते करते एक चूक हो गया, पता क्या किया उसने, उसको फाड़ के फिर उससे बता दिया परफेक्ट।
0: यानी कि उनके दिमाग में होता है कि उनको परफेक्ट बनाना है।
1: हाँ,
0: कहीं कभी कुछ गलती हो गई
1: तो नहीं, गलती से फिर से शुरू करेगा।
0: तो हमारा प्रोग्राम ही ऐसा है कि हम इन बच्चों के बारे में जानें, इनके अधिकार के बारे में जानें। कुछ और ऐसी चीज़ें हैं जो मैं कहीं पे मिस कर रही हूँ जो आप हमारे श्रोताओं को बताना चाहते हैं?
1: हमको उन लोगों को एक बहुत पॉजिटिव तरीके से देखना पड़ेगा।

0: इंक्लूजन, कोई कोई शरारती होते हैं तो ये सब तो नॉर्मल है, लेकिन उन लोगों को डिफरेंट, वी शुड नॉट सी देम एज डिफरेंट,
1: क्योंकि हम बच्चों के बारे में बात नहीं करें, हम बच्चों के अधिकार के बारे में बात करें हैं, उनकी इलीगल राइट्स के बारे में बात करें हैं, चाहे उनकी माँ बाप हो, चाहे वो बच्चे हो, चाहे वो स्कूल हो, हम उनकी लीगल राइट्स के बारे में बात करें हैं कि उनका हक बनता है, तो उनका हक और कहाँ पे बनता है, यही जानने के लिए आज हमने आपको बुलाया है, ताकि जो माँ बाप उनको लगता है कि भाई हमारा बच्चा कुछ कर सकता है, जैसे आपने कहा कि कोई बच्चा है जो पेंटिंग कर सकता है, तो पेंटिंग सिर्फ घर के अंदर चार दीवारी के अंदर क्यों, उनका हक बनता है, तो उनको कहीं ना कहीं सपोर्ट मिलता है कि वो तो कुछ करे।
0: यहाँ पर जब जैसे
1: हर कोई डॉक्टर नहीं बन सकता, हर कोई ऑफिस में बैठ के काम नहीं कर सकता, कुछ बच्चे जो होते हैं जैसे आपने कहा उनको सिर्फ ड्राइंग करना आता है तो वे सिर्फ ड्राइंग करेंगे, तो सिर्फ ड्राइंग से जीवन तो नहीं आगे लेके जा सकते।
0: हाँ, यहाँ पर मैं रेखांकित करना चाहता हूँ कि मॉरिशस में अभी ये सब जितना जो फ्रेमवर्क है वो ज़्यादा ये है, क्या बोलते हैं उसको, मॉरिशस में नेसेंट स्टेज पर है अभी, समझे ना, एडवांस बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन आराम से ये धीरे धीरे वो आ रहा है।
1: तो अब तक
0: तो एजुकेशन में हमने बहुत ठोस कदम ले लिए हैं,
1: यानी कि पढ़ाना है, इनको कुछ सिखाना है, समझाना है। कल को अगर वो कहीं पे ट्रैवल कर रहे हैं, कल को कहीं पे वो जा रहे हैं, जैसे आपने कहा कि ऐसे लोग जो होते हैं, ऐसे बच्चे जो होते हैं, बहुत जैसे उनको बहुत ज़्यादा शोर शराबा, बहुत सारे लोग पसंद नहीं होते, तो धीरे धीरे करके क्या उनको इंट्रोड्यूस किया जाता है, उनको लोगों के साथ, जैसे कोई इवेंट हुआ या कुछ भी हुआ या कहीं पे उनको ले कर गए पिकनिक में, तो ये जो बच्चे हैं वो घुल मिल जाते हैं, तो उनको पता है कि वो, उनको क्या ये जो टीचर्स हैं उनको सिखाते हैं कि देखो आप एक नॉर्मल इंसान हो, आपको ऐसे बिहेव करना चाहिए।
0: तो यही है, यही हम, मैं बता रहा हूँ कि होलिस्टिक एक तो हो गया, होलिस्टिक एजुकेशन, दूसरा है कि एजुकेशन पर बहुत बल है, और जितने जो डिसेबिलिटी आँख हो गया, इक्वल अपॉर्चुनिटी आँख हो गया है, उन लोगों को जोड़ने, समेटने और इसमें रखने के लिए बहुत ज़्यादा काम हो रहा है,
1: यानी कि
0: अवेयरनेस बहुत ज़्यादा हो रहा है,
1: यानी कि इन बच्चों को उनका अधिकार दिलाने के लिए बहुत ज़्यादा काम हो रहा है। और आपका जो लकी चाइल्ड है ये भी शामिल है इसमें, जैसे आपने कहा कि आप हर एक एनजीओज में, स्कूल्स में जाते हैं, और वहाँ पर बच्चों को पढ़ाते हैं, उनका सेशन चलता है, और साथ ही साथ जो छुट्टी पे जो बच्चे होते हैं, हॉलीडेज चल रहा है, उनको लेकर जाते हैं, उनको सिखाते हैं, दिखाते हैं कि देखो भाई इनका भी पूरा, तो उनको दिखाया जाता है, बताया जाता है कि इनका भी पूरा हक है समाज में, जैसा आपका अधिकार है वैसा उसका भी अधिकार है।
0: जैसे बुलिंग हो गया, बुलिंग तो एक तो फिजिकल भी होता है, असॉल्ट भी होता है,
1: ऐसे बच्चों को जब उनको बुली किया जाता है तो सरकार की ओर से भी लीगली उनको कदम उठाया जाता है,
0: क्योंकि उसको मार देते हैं या किसी को मारता है तो असॉल्ट हो जाता है, तो ये
1: ऐसे केसेस भी आए हैं।
0: हाँ, बहुत ज्यादा।
1: और ऐसे में क्या करते हैं?
0: तो पुलिस में जाते हैं, पुलिस में जाएंगे, उसमें कंप्लेंट करेंगे, और वो सब बाद में वो कोर्ट तक चल जाता है।
1: ऐसी चीजें, ऐसे बहुत सारे केसेस आए होंगे,
0: बहुत ज्यादा नहीं, क्योंकि इन लोगों का अलग ट्रांसपोर्ट होता है ना। अब देखो ये मोबाइल पर,
1: आस पड़ोस में भी ऐसे अगर कोई बच्चों के साथ ऐसे बुली करे, उनको कुछ बोले, या माँ बाप को, क्योंकि ज्यादातर लोग बच्चों को बुली करेंगे, बच्चों को तो कुछ समझ में आएगा नहीं, माँ बाप को बुली करते हैं,
0: तो ये भी,
1: तो कोई हक नहीं बनता किसी को कि वो माँ बाप को भी बुली करे, अगर कोई भी उनको बुली करता है तो वो एक्शन ले सकते हैं।
0: एक्शन लेंगे, क्योंकि वो थोड़ा,
1: चाहे बच्चा हो चाहे माँ बाप हो, कोई भी हो, आपने अगर किसी ऐसे बच्चे को बुली किया तो ये एक
0: कानूनी अपराध है
1: जी,
0: तो कानून में अपराध है, और हमको चुप नहीं रहना है,
1: आपको आवाज उठानी चाहिए,
0: आवाज उठानी चाहिए।
1: तो जितने भी हमारे श्रोता इस समय हमें देख रहे हैं, अगर आपके घर में कोई ऐसा बच्चा है, या आपको कोई, अगर आप ऐसे माँ बाप हो जहाँ पर आपको बुली किया जाता है, तो आपको चाहिए कि आप रिपोर्ट करें, क्योंकि किसी को कोई हक नहीं बनता कि वो आप पे आकर उंगली उठाए, आपको बुली करे, या तो फिर आपके बच्चे को बुली करे, तो इसीलिए आपके लिए लीगली ये आपका अधिकार है, कानूनी अधिकार है कि आप जाकर उनके बारे में कंप्लेन करें, और जो लोग आपको परेशान कर रहे हैं, जो आप लोगों को ठीक से रहने नहीं दे रहे हैं आपको, क्योंकि कहते हैं ना कि भाई परेशान करके रख देते हैं, तो किसी का हक नहीं बनता कि आपको परेशान करे, आपको टोटली हक बनता है कि आप ऐसे केसेस को कंप्लेन करें। तो देखिए हमारा प्रोग्राम जो है वो भी

0: अभी थोड़ी देर में समाप्त होने जा रहा है, लेकिन जाने से पहले हम चाहते हैं कि थोड़ा सा हम वाइंड अप कर ले, थोड़ा सा फिर हम उन बच्चों के बारे में बात करें। और जैसे आप कह रहे थे कि जो लकी चाइल्ड है आपकी, जो एनजीओ है, ये भी पूरी कोशिश कर रहा है कि उन बच्चों को, जो बच्चे हैं, वैसे अभी आपने कहा कि 20 साल पहले जो हो रहा था और अभी जो हो रहा है अलग है। पहले एनजीओज नहीं हुआ करते थे, इतने स्कूल्स नहीं हुआ करते थे, अभी हैं। बच्चों को पूरी तरह से उनका ख्याल रखा जाता है, और यहाँ तक कि आपने कहा कि स्कूल में जो हेल्पर हैं उनको भी कहीं ना कहीं उनको भी नौकरी मिल रही है, कि चलो आपको भी नौकरी मिल रही है। तो काम तो दोनों तरफ से बहुत अच्छा चल रहा है, लेकिन लीगली हम जब बात करते हैं बच्चों की, तो कोई भी बच्चा घर पे, ऐसे बच्चे जिनको स्पेशल नीड्स वाले बच्चे, उनको घर पर रखना सही बात नहीं होता है, ये अपराध होता है।
1: अपराध है, और जैसे बोलते हैं राइट टू एजुकेशन अप टू द एज ऑफ 16, तो 16 इयर्स यू शुड बी इन दैट सिस्टम। तो ये सिस्टम में 16 साल तक यू हैव टू बी इन सिस्टम। और यहाँ पर मॉरिशस में बहुत बढ़िया काम सेना कर रहा है, स्पेशल एजुकेशन नीड अथॉरिटी, और मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन भी अच्छा काम कर रहा है उसमें। तो बहुत आदान प्रदान हो रहा है विदेश से, जैसे यूनिवर्सिटी हो गया, जैसे देश में दूसरे देश से वहाँ
0: सब साथ में काम
1: कर रहे हैं, कंसल्टेशन भी हो रहा है, एक्सचेंज प्रोग्राम्स भी हो रहे हैं, अलग अलग यूनिवर्सिटी से हम ये कर रहे हैं, और वी आर नॉट लिविंग एनीबॉडी बिहाइंड। ठीक है,
0: सबका हक बनता है,
1: सबका हक बनता है।
0: हम यहाँ पे लोगों की बात करते हैं, अधिकार की बात करते हैं ज़्यादातर हमारे प्रोग्राम में। तो आज हमारे जो स्पेशल नीड्स वाले बच्चे हैं उनका अधिकार क्या है, ये भी आप भी समझ गए हैं, और समझाना ज़रूरी है। और अभी आप कहते हैं ना अवेयरनेस, ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि लोगों को बताएं कि देखो ये बच्चे जो हैं, ये हो सकता है कि आप जो नहीं सोच रहे हैं ये बच्चे उनसे कहीं ज़्यादा गहरा सोच रहे हैं, और हो सकता है कि जिस सवाल का जवाब आपके पास नहीं है, क्योंकि हम लोग परेशान रहते हैं, हमें स्ट्रेस होता है, ऐसे बच्चों को स्ट्रेस नहीं होता है। मुझे लगता है ऐसे बच्चों को स्ट्रेस नहीं होता है, क्योंकि वो अपने ही धुन में रहते हैं, उनको जो समझना है बस वही समझते हैं, है ना। तो सारे जो बच्चे होते हैं हमारे बच्चे हैं, सारे जो बच्चे हैं वो हमारी क्या कहते हैं हमारे, हम अपने सपनों की तो बात नहीं कर सकते, क्योंकि हर माँ बाप का एक सपना होता है कि उनका बच्चा कुछ करे। तो वो बच्चे भी, उनका भी अधिकार होता है कि वो अपने देश के लिए कुछ करे। जैसा आपने कहा कि अगर कोई पेंटिंग कर रहा है तो हो सकता है कोई किसी और चीज़ में माहिर है, तो क्यों नहीं। तो सारे बच्चों को उनका अधिकार मिलना चाहिए।
1: तो एक चीज़ है, मॉरिशस में है ओम्बुज पर्सन फॉर चिल्ड्रन, श्रीमती अनिता घुरा जी अभी उसका ये है, हेड है। तो वहाँ पर भी उनका ऑफिस है, तो वहाँ पर भी ये कंप्लेंट, जब भी बुलिंग होता है या कुछ ऐसी परेशानी, तो बच्चों, स्पेशली बच्चों का, तो वहाँ पर भी हो सकेगा। तो ये एक एक माध्यम है, या पुलिस में नहीं करेंगे तो ओम्बुज पर्सन
0: लीगल एक्शन लेना पड़ता है।
1: हाँ, तो वो वहाँ पर आपको गाइड करेंगे कैसा क्या करना चाहिए।
0: तो बच्चों को, ऐसे बच्चों को आप घर पे ना रखें, क्योंकि उनका अधिकार है कि वो स्कूल जाएं, और उनका अधिकार है कि वो पढ़ाई लिखाई करें, उनका अधिकार है कि वो समाज में सबके साथ घूमें फिरें। बुली करना मना है, याद रखिए। अगर आप ऐसे किसी परिवार को जानते हैं तो उनको समझाना, क्योंकि वो क्या करते हैं कि भाई अब हैं तो हैं, हम क्या करें, उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस भी खो जाता है, ऐसा होना नहीं चाहिए। उनको भी थोड़ा सा एजुकेट करना चाहिए, उनके समझाना चाहिए। तो हमारा जो आज का कार्यक्रम है, अश्विन कतवारू जी जो एक जूरिस्ट हैं, आज हमारे प्रोग्राम में आए हैं इन बच्चों के बारे में बात करने के लिए, जो स्पेशल नीड्स वाले बच्चे हैं, उनकी जो शिक्षा है, उनको क्या हक है, और इनके बारे में हम बात कर रहे थे। तो हमारा प्रोग्राम यहाँ पर समाप्त होता है। आपने अपना कीमती समय निकाला, उम्मीद करती हूँ कि आपका जो लकी चाइल्ड एनजीओ है वो सबके साथ कर सारे बच्चे जो हैं उनको स्पेशल बनाएं, और जो बच्चे हैं वो अपने आप को अकेला ना समझे, अलग ना समझे, बल्कि वो अपने आप को, जैसे कहते हैं ना स्पेशल, हम स्पेशल नीड्स, तो हम वो उनको स्पेशल नीड्स नहीं बल्कि उनको हम खास बनाना चाहते हैं, और हम चाहते हैं कि उनको खास तौर पे उनको देखा जाए। और जैसे मैंने कहा था ना कि वो जो ऑटिज्म वाले बच्चे होते हैं वो ज़्यादा स्किन वो टच पसंद नहीं करते हैं, लेकिन एक बार अगर उनका दिल आ गया ना आप पे, तो ये बच्चे जो है ना बहुत खुश हो जाते हैं। ये खुशी मैंने महसूस की है, मुझे पता है मैं क्या कह रही हूँ। और कभी ना कभी अगर आपको मौका मिलता है तो ऐसे बच्चों के साथ ऐसे स्कूल में थोड़ा सा समय ज़रूर बिताएगा, फिर आपको पता चलेगा कि हमारा जो दुख है ना वो बहुत कम है, क्योंकि ये जो बच्चे होते हैं शायद उनको पता नहीं कि उनके साथ क्या हो रहा है, उनके माँ बाप जो हैं उनके साथ रहते हैं उनको तकलीफ़ हो सकती है, लेकिन ये बच्चे अपने ही धुन में रहते हैं। तो रिस्पेक्ट करना बहुत ज़रूरी है, बच्चा जैसा भी हो रिस्पेक्ट का हकदार वो भी है, बुली का नहीं। तो हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देंगे, हमारे प्रोग्राम में आप आए, आपने हमारे इन बच्चों के बारे में बताया, और ये जो आपने कहा कि बुली करना या उनको घर पर रखना ये कानूनी तौर से अगर देखें तो ये अपराध होता है और इसकी सज़ा भी होती
1: होगी।
0: हाँ बिल्कुल। तो चलिए जी, हमारा कार्यक्रम यहाँ पे समाप्त होता है, बहुत बहुत धन्यवाद आपको।
1: धन्यवाद।
0: तो हमारे सभी श्रोताओं को हमारे इस कार्यक्रम आज की चर्चा में हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। विदिता आज्ञा चाहेगी, हम अगले शुक्रवार को एक और कार्यक्रम के साथ फिर आएंगे। आज की चर्चा कार्यक्रम यहाँ समाप्त होता है, आप सभी को हम धन्यवाद देते हैं, हमारी टेक्निकल टीम को भी हम धन्यवाद देते हैं। शुभ दिन।

0: सभी को नमस्कार। आप सुनते हैं संक्षिप्त समाचार आस्था से। आस्था आपको नमस्कार।
1: नमस्कार, 10 बजे के समाचारों में स्वागत है आप सभी का। इस वर्ष जुलाई महीने में अमेरिका अफ्रीका बिजनेस समिट का 18वां संस्करण मॉरिशस में आयोजित किया जाएगा। 4 दिनों तक मॉरिशस अफ्रीका और अमेरिका के बीच उच्च स्तरीय आर्थिक और व्यापारिक चर्चाओं का केंद्र बनेगा। आयोजकों के अनुसार सम्मेलन में 2500 से अधिक प्रतिनिधि शामिल होंगे, जिनमें कम से कम 7 नेता भी मौजूद रहेंगे। वर्ष 2011 में स्थापित मॉरिशस यूनियन कॉन्टैक्ट ग्रुप आज इलाकाई सुरक्षा सहयोग का एक महत्वपूर्ण मंच बन चुका है। मुख्य उद्देश्य है ड्रग्स की तस्करी और संगठित अपराध के खिलाफ कार्रवाई को मजबूत बनाना। इस साल फाइनेंशियल क्राइम्स कमीशन भी इस समूह से जुड़ गया है ताकि मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ लड़ाई को और मजबूत बनाया जा सके। सितंबर 2026 से मॉरिशस और यूनियन के बीच नागरिक सुरक्षा को समर्पित एक नई उपसमिति भी स्थापित की जाएगी। अधिकारियों ने जोखिमपूर्ण गतिविधियों और वेश्यावृत्ति नेटवर्क जैसी साझा चुनौतियों का भी उल्लेख किया है। हर वर्ष सड़क दुर्घटनाओं में लगभग 11,090,000 लोगों की जानी जाती है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के अनुसार सड़क दुर्घटनाएं आज 5 से 29 वर्ष के युवाओं में मौत का सबसे बड़ा कारण बन चुकी है। विश्व सड़क सुरक्षा सप्ताह 8 से 14 मई तक मनाई जा रही है। ये मनाया जा रहा है, अधिकारियों ने कहा कि सावधानी और जिम्मेदार व्यवहार से अधिकांश हादसों को रोका जा सकता है। बुधवार 6 मई तक मॉरिशस में चिकुनगुनिया के 147 मामले दर्ज किए गए हैं। इस वर्ष की शुरुआत से अब तक कुल मामलों की संख्या 2,470 तक पहुंच चुकी है। मॉरिशस इस समय महामारी के चरम पर है। कौंडस प्रयोगशाला में जांच का दबाव बढ़ गया है। हालांकि स्वास्थ्यकर्मी PCR परीक्षण और परिणाम 48 घंटे के भीतर देने का प्रयास कर रहे हैं। अटलांटिक महासागर में क्रूज जहाज पर फैले एंटीवायरस संक्रमण को लेकर विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने कहा कि ये COVID-19 जैसी नई महामारी नहीं है। WHO के अनुसार ये वायरस मुख्य रूप से संक्रमित चूहों और नज़दीकी संपर्क से फैलता है। अब तक 5 मामलों की पुष्टि हो चुकी है, जबकि 3 लोगों की मौत हुई है। स्वास्थ्य अधिकारी जहाज से उतरे यात्रियों और चालक दल के सदस्यों का पता लगाने में जुटे हैं। WHO ने फिलहाल खतरे का स्तर कम बताए हैं, लेकिन आने वाले हफ्तों में और मामले सामने आ सकते हैं। दक्षिण पूर्वी मैक्सिको में आयोजित एक मेले में भीषण आग लगने से कम 5 लोगों की मौत हुई। यह हादसा एक संगीत कार्यक्रम के दौरान हुआ, जहां बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे। सोशल मीडिया पर सामने आई वीडियो में लोग घबरा कर भागते दिखाई दे रहे हैं। इसी के साथ संक्षिप्त समाचार समाप्त हुए।
2: NBC Play, NBC Radio.tv, NBC Radio.tv. 819 kHz, ये है रेडियो मॉरिशस।

0: भक्तिमय कार्यक्रम भक्ति धारा रेडियो मॉरिशस पर।
1: चलिए श्रोताओं, आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ये रेडियो मॉरिशस है, मीडियम वेव 119 किलोहर्ट्ज़ पे हमारा प्रसारण हो रहा है। कार्यक्रम है भक्ति धारा। जहाँ से भी आप हमें सुन रहे हैं, हमारा सादर प्रणाम आप सभी सुनने वालों को। तो चलिए, इस समय से लेकर दिन के 11 बजे तक हम आपका साथ निभाएंगे। कार्यक्रम है भक्ति धारा। श्रोताओं, ईश्वर पर विश्वास रखना कभी व्यर्थ नहीं जाता, क्योंकि वही हर कठिन रास्ते को आसान बनाती है। तो चलिए, इसी शुभ विचार के साथ कार्यक्रम की शुरुआत हम कर रहे हैं।

0: तो चलिए श्रोताओ, इस समय आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कार्यक्रम है भक्ति धारा। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए और अब आप सुन सकेंगे शास्त्र नवनीतम कार्यक्रम। ये कार्यक्रम जो है डॉक्टर आचार्य सुनील जी की प्रस्तुति में आप सुन पाएंगे।
1: वेद दर्शन पर आधारित कार्यक्रम शास्त्र नवनीत।

ओम तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। सभी श्रोताओं को सादर सप्रेम नमस्ते। आज का विषय है आयुर्वेद के अनुसार प्रज्ञा अपराध। सब रोगों का मूल प्रज्ञा अपराध है। चरक संहिता के शरीर स्थान में उल्लेख है, धी धृति स्मृति भ्रष्ट कर्म यत् कुरुते अशुभम प्रज्ञापराधम तम विद्यात् सर्वदोष प्रकोपनम। अर्थात धी धृति स्मृति यानी बुद्धि, धैर्य और याददाश्त, इन तीनों को भ्रष्ट करके या अवहेलना करके जो व्यक्ति शारीरिक व मानसिक अशुभ कार्यों को करता है, अनेक भूलें करता चला जाता है, उसे प्रज्ञा अपराध या बुद्धि का अपराध कहा जाता है। अपराध क्या है या प्रज्ञा अपराध किसे कहते हैं? बुद्धि की गलती या ज्ञान होने के बावजूद जानबूझकर हानिकारक कार्य करना, जिसे आयुर्वेद में सभी रोगों का मूल कारण माना गया है। कहते हैं कि प्रज्ञा अपराध से व्यक्ति का जीवन दुखी हो जाता है। यह बुद्धि, धैर्य और स्मृति याददाश्त के भ्रष्ट होने से उत्पन्न होता है, जिसे व्यक्ति को पता होने पर भी कि अमुक चीज हानिकर है या अहितकर है, वह जानबूझकर वही करता है। जैसे कि देर रात जागना, कुपथ्य खाना, नशीली पदार्थों का सेवन करना जैसे कि ड्रग, अफीम, गांजा आदि नशीले तत्व। कहा गया है कि बुद्धि लुम्पति यद् द्रव्यम् मदकारी तदुच्यते। जो कोई भी पदार्थ बुद्धि को विकृत करता है वह मदकारी कहलाता है, वह मादक द्रव्य कहलाता है। आयुर्वेद की दृष्टि से कुपित त्रिदोष ही तन और मन के रोगों का कारण है। जैसे कि रात्रि जागरण करने अथवा रूखा सूखा एवं बासी ठंडा भोजन लेना अथवा ठंडा भोजन खाने से वायु प्रकुपित होता है। अनावश्यक चीज़ों का सेवन करना जैसे कि मादक द्रव्य, आवश्यकता से अधिक खाना पीना, आवश्यकता से अधिक सोना इत्यादि बीमारी के कारण बन जाते हैं। अंतरात्मा की आवाज़ प्रत्येक व्यक्ति को थोड़ा बहुत सुनाई देती है। छोटे बच्चे भी खाने के पश्चात पेट भर जाने पर अधिक आहार लेने में रुचि नहीं रखते। पशु भी पेट भर जाने के बाद आहार नहीं लेते। जबकि मनुष्य जैसे जैसे उसकी समझ बढ़ती है या बढ़ती चली जाती है, उम्र बढ़ती है, वैसे वैसे ज़्यादा प्रज्ञा अपराध करता नज़र आता है। आहार विहार के प्रत्येक मामले में सजग रहकर प्रज्ञा अपराध न होने देने की आदत डाली जाए तो मनुष्य मात्र बीमारियों को निमंत्रण देना बंद कर देगा। इस प्रकार वह संपूर्ण स्वास्थ्य, सुख एवं शांति को प्राप्त कर सकता है, अपने स्वास्थ्य की रक्षा करने में समर्थ हो सकता है। आधुनिक समय में जहां तहां कुछ नौजवान एवं नवयुवती अच्छा संस्कार न मिलने के कारण अपने जीवन को ड्रग अर्थात मादक द्रव्यों में समर्पित कर चुके हैं, जिससे माँ बाप और उनके परिवार के लोग परेशान और दुखी दिखाई देते हैं। ड्रग को खरीदने के लिए घर के आवश्यक सामान भी बेच डालते हैं। यदि कुछ ना मिला तो चोरी करने में पीछे नहीं हटते और प्रज्ञा अपराध करते चले जाते हैं। हमें पता होता है कि मादक द्रव्यों का निरंतर सेवन, अनुचित खान पान, देर तक जागना हमारी सेहत के लिए सही नहीं है, फिर भी हम मोबाइल फ़ोन, टीवी आदि पर अधिक से अधिक समय बिताते रहते हैं। हम थक चुके होते हैं लेकिन खुद को ज़्यादा काम में झोंक देते हैं। आयुर्वेद के अनुसार जब व्यक्ति की धी अर्थात बुद्धि, धृति अर्थात धैर्य नियंत्रण और स्मृति अर्थात याददाश्त भ्रष्ट हो जाती हैं, तब व्यक्ति गलत कर्म करने लगता है। प्रथम है धी विभ्रंश। सही और गलत के बीच अंतर न कर पाना, इसी को धी भ्रंश कहते हैं।
द्वितीय है धृति विभ्रंश, धीरज खो देना एवं मन पर नियंत्रण न होना और हानिकारक विषयों की ओर खींचे चले जाना, इसी को हम धृति विभ्रंश कहते हैं। और स्मृति विभ्रंश क्या है? पिछले अनुभवों या सीख को भूल जाना, जैसे यह भूल जाना कि पिछली बार अमुक चीज़ खाने से बीमार पड़े थे, मादक द्रव्य का सेवन करने से बुद्धि बिगड़ गई थी, इसे हम स्मृति विभ्रंश कहते हैं। प्रज्ञा अपराध के तीन उदाहरण इस प्रकार हैं, आहार विहार और मानसिक असंतुलन। आहार यह प्रज्ञा अपराध का पहला उदाहरण है। आहार यह जानते हुए भी कि बाहर का तला भुना आहार लेने से स्वास्थ्य का नुकसान होता है, फिर भी स्वाद के वश में होकर उसे खा लेते हैं। दूसरा है विहार, अर्थात जीवन शैली, लाइफस्टाइल। रात को देर तक जागना या मोबाइल फोन का अत्यधिक उपयोग करना, उसे गेम खेलते रहना इत्यादि, जबकि आप जानते हैं कि इससे नींद और सेहत पर बुरा असर पड़ेगा, फिर भी आप इस ओर ध्यान नहीं देते। मानसिक अस्थिरता, मानसिक असंतुलन, मेंटल डिसबैलेंस, ईर्ष्या द्वेष क्रोध और लोभ के वश में होकर अनुचित कार्य करने से मानसिक असंतुलन उत्पन्न होता है। प्रज्ञा अपराध से शरीर के तीनों दोषों वात पित्त कफ में असंतुलन पैदा होता है, जो अंततः शारीरिक और मानसिक रोगों को जन्म देता है। कहा गया है कि प्रज्ञापराधो ही मूलम रोगानाम, प्रज्ञापराध ही समस्त रोगों का मूल है। बुद्धि के अनुचित उपयोग से होने वाली भूलें मानव को प्रज्ञापराध की ओर ढकेल देती हैं। एक श्लोक के माध्यम से समझाया गया है, ईर्ष्या शोक भय क्रोधमान द्वेषा द्वयश्च मनोविकारा अपि युक्ता सर्वे प्रज्ञापराधजाः, अर्थात जो भी मन के विकार हैं वे सब प्रज्ञापराध से उत्पन्न होते हैं, चाहे वे ईर्ष्या शोक भय क्रोध द्वेष आदि क्यों न हो। मानसिक स्वास्थ्य की प्राप्ति का सर्वोपरि उपाय यही है कि इच्छाओं में अधिक आसक्ति न रखकर जीवन की आवश्यकताओं को सीमित करें।

0: साधन की अधिकता एवं अति संग्रह अर्थात आवश्यकता से अधिक बटोरना मन को अति चंचल बना देते हैं। योग दर्शन में कहा गया है कि संतोषम ही परमम सुखम। निश्चय ही संतोष परम सुख का कारण है। संतोष से मन और बुद्धि में सकारात्मक तरंग उत्पन्न होती है। संतोष और संयम मानसिक प्रसन्नता के आवश्यक अंग हैं। ऋषियों ने कहा है, सतु भवति दरिद्रो यस्य तृष्णा विशाला मनसि च संतुष्टे को अर्थवान को दरिद्रो। यानी मन के संतोष से करोड़पति और दरिद्र का भेद नहीं रहता। तृष्णा युक्त एवं लोभ युक्त धनवान दरिद्र से भी अधिक दुख जो है उनके जीवन में दिखाई देता है, और तृष्णा विरत एवं लोभ से रहित निर्धन व्यक्ति धनवान व्यक्ति से भी अधिक सुखी तथा स्वस्थ रहता है। मन में यदि संतोष होगा तो बुद्धि एवं मन में विकार उत्पन्न होने का कारण ही नहीं होगा। गीता में योगेश्वर श्री कृष्ण जी अर्जुन से कहते हैं, ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्ते शूपजायते संगात संजायते कामः कामात क्रोधो भी जायते क्रोधात भवति सम्मोह सम्मोहात स्मृति विभ्रमः स्मृति भ्रंशात बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात प्रणश्यति। अर्थात विषयों पर निरंतर ध्यान जमा रहने से वही विषय मन में रम जाते हैं। मन और विषयों के संयोग से काम वासना उत्पन्न होती है, और उसमें थोड़ा सा भी व्यवधान पड़ा तो क्रोध उत्पन्न होता है। क्रोध से सम्मोह उत्पन्न होता है। सम्मोह का अर्थ है गहरा मोह, कर्तव्य अकर्तव्य को न जानना, निर्णय लेने की क्षमता खो बैठना। क्या करें क्या न करें, यह विशेष मोह क्रोध से उत्पन्न हो जाता है। इसी अवस्था को सम्मोह कहा गया है। प्रश्न है कि सम्मोह से क्या होता है? उत्तर है कि सम्मोह से स्मृति का नाश हो जाता है, तभी विवेक शक्ति समाप्त हो जाती है। विवेक के न रहने से मनुष्य बार बार गलती करता चला जाता है, अतः सम्मोह से अक्सर स्मृति भ्रमित हो जाती है। स्मृति के भ्रमित होने से बुद्धि का नाश हो जाता है, और बुद्धि के नाश से व्यक्ति का नाश हो जाता है। आज का वक्तव्य यहाँ विराम लेता है। अब हमें अनुमति दीजिए। ओम शांति ही शांति ही शांति।
1: अभी आप सुन रहे थे वेद दर्शन पर आधारित कार्यक्रम शास्त्र निर्मितम, प्रस्तुतकर्ता डॉक्टर आचार्य सुनील।

0: 10:21 हो चुके हैं स्टूडियो की घड़ी में श्रोताओं, समय हम सुन रहे हैं कार्यक्रम भक्ति धारा। वैसे ईश्वर हर किसी के जीवन में होती है, बस उन्हें महसूस करने के लिए सच्चे मन की आवश्यकता होती है। तो चलिए, आपके लाए हैं तुलसी चालीसा। तुलसी चालीसा आप सुन सकेंगे कविता पोडवाल के स्वर में।
1: तुलसी की महिमा अपरंपार है। तुलसी पृथ्वी को ईश्वर की बहुत बड़ी देन है। वेद पुराणों में तुलसी की महिमा के बारे में अनेक कथाएं कही गई हैं, परंतु तुलसी की सबसे बड़ी महिमा है तुलसी के अंदर छुपे हुए अमृत के गुण। जब समुद्र मंथन से देवताओं को अमृत प्राप्त हुआ, तो सबसे पहले उसे पृथ्वी माता को समर्पित किया गया। जहां अमृत सींचा गया, उस स्थान से एक अलौकिक वनस्पति की उत्पत्ति हुई। वो वनस्पति है तुलसी, जिसे हम तुलसी मैया के रूप में जानते हैं। तुलसी मैया देवताओं को अति प्रिय है। लक्ष्मी का अंश होने के कारण ये भगवान विष्णु को अति प्रिय है। भगवान विष्णु तथा उनके अवतारों श्री राम तथा श्री कृष्ण को समर्पित की गई कोई पूजा

तुलसी के बिना पूर्ण नहीं होती। प्रभु को भोग लगाकर जो प्रसाद पाया जाता है उसमें तुलसी का होना अनिवार्य है। तुलसी चालीसा के 40 छंदों में

चलिए श्रोताओ, गुरु शुक्रवार का दिन है आज। जी हाँ, शुक्रवार का दिन है आज, और आज का दिन हम माँ दुर्गा की महिमा का गुणगान करते हैं, उनकी पूजा पाठ करते हैं और उनके अनेकों स्वरूप को भी पूजते हैं। वे बुराई पर अच्छाई की विजय का संदेश देती है माँ दुर्गा। माँ दुर्गा हमें सिखाती है कि कठिन परिस्थितियों में भी साहस और विश्वास बनाए रखना चाहिए।

श्रोताओं, भक्त सच्चे मन से माँ का स्मरण करती है और उनसे सुख शांति तथा शक्ति की प्रार्थना करती है। माँ दुर्गा की भक्ति से मन में आत्मविश्वास और नई ऊर्जा का संचार होता है। तो चलिए, 10:40 हो चुके हैं, स्टूडियो की घड़ी में आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। भक्ति धारा इस कार्यक्रम को हम जारी रखेंगे।

माँ शक्ति साहस और ममता का प्रतीक मानी जाती है। उन्हें आदि शक्ति कहा जाता है, जो अपने भक्तों की रक्षा करती है और जीवन में सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करती है।

छू जाओ। माँ दुर्गा का आशीर्वाद जीवन में साहस, शांति और सफलता लाता है। जहाँ प्रेम, श्रद्धा और सच्चाई होती है, वही भगवान का वास भी होता है। तो चलिए, कार्यक्रम का समापन जो है हम एक आरती के साथ करेंगे। आप लोगों का साथ रहा, बहुत धन्यवाद। जाने से पहले आइए सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की तरफ से

ये विज्ञप्ति सुनिए। पेची त्रिविया के रहने वाले निवासियों को, जिनमें है आवेन्यू डिवर्सिटी, लिबर्टी, अमांडी, चेन, कॉकॉर्ड, शाओ, डेमोनी, मार्सेल मार्चेडी और रोकुट रॉयल के कुछ भागों के रहने वाले निवासियों को सूचित किया जाता है कि रविवार 10 मई 2026 को सुबह 8:30 बजे से लेकर दोपहर के 3:30 बजे तक बिजली की सप्लाई में कटौती लाई जाएगी। इस असुविधा के लिए सेंट्रल इलेक्ट्रिस बोर्ड अपने ग्राहकों के प्रति क्षमा प्रार्थी है और बिना पूर्व सूचना दिए बिजली की सप्लाई सामान्य पर लाई जाएगी। तो श्रोताओं, अभी आप सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की तरफ से एक विज्ञप्ति सुन रहे थे। ये रेडियो मॉरिशस है, मीडियम वेव 819 किलोहर्ट्ज पे हमारा प्रसारण हो रहा है इस समय। तो चलिए, भक्ति धारा कार्यक्रम का समापन जो है हमें कार्तिक के साथ कर रही है। वैसे आप लोगों का साथ रहा, बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ दिन की कामना हम करते हैं। कुछ ही घड़ी में आप समाचार सुन सकेंगे, वैसे 11 बजने वाली है और आप समाचार सुनेंगे। समाचारों के उस पार आप उर्दू कार्यक्रम सायदा की प्रस्तुति में सुन सकेंगे। तो चलिए, मिलते हैं श्रोताओं।

0: सभी को नमस्कार। अब सुनते हैं संक्षिप्त समाचार आस्था से। आस्था आपको नमस्कार।
1: नमस्कार। 11 बजे के समाचारों में स्वागत है आप सभी का। व्यापार मंत्री माकिया सिक्वेन ने एबन में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में विपक्ष नेता जुली रोंगाओ के बयानों का जवाब दिया। उन्होंने कहा कि स्टेट ट्रेडिंग कॉरपोरेशन और सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के बीच हुए समझौते में तय दरों का पूरी तरह पालन किया गया है। मंत्री ने यह भी याद दिलाया कि यह समझौता वर्ष 2023 में तय किया गया था। उस समय जुली रोंगाओ ऊर्जा मंत्री थे। व्यापार मंत्री ने विपक्ष के आरोपों पर सवाल उठाते हुए सरकार की स्थिति को स्पष्ट किया। माइकल सिक्वेन ने यह भी कहा कि एसटीसी रोजमर्रा के आवश्यक सामानों का आयात करेगी। इसके लिए जल्द ही टेंडर की प्रक्रिया जारी की जाएगी। थिंक बिग एंड एक्ट ग्लोबल विषय पर आधारित नेशनल वीमेन एंटरप्रेन्योर काउंसिल अवार्ड 2026 में 76 प्रतिभागियों में से 12 महिला उद्यमियों ने फाइनल तक अपनी जगह बनाई। कोदो में आयोजित समारोह में 5 पुरस्कार प्रदान किए गए। डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ओयन्ना वोमाही ने महिला ठेकेदारों को अफ्रीका और हिंद महासागर क्षेत्र में नए अवसरों की ओर आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया। उन्होंने कहा कि वित्तीय सहायता, तकनीकी सेक्टरों में असमानताएं और पारिवारिक जिम्मेदारियां आज भी बड़ी चुनौती बनी हुई हैं। मोस्ट प्रॉमिसिंग वुमेन एंटरप्रेन्योर का खिताब तथा 1,00,000 रुपए की नकद राशि अफ्रिकाना शॉप की जूलियन ब्रिजेट पेट्रोनिल को प्रदान की गई है। वर्ष 2011 में स्थापित मॉरिशस यूनियन कॉन्टैक्ट ग्रुप आज क्षेत्रीय सुरक्षा सहयोग का एक महत्वपूर्ण मंच है। उद्देश्य है ड्रग्स की तस्करी और संगठित अपराध के खिलाफ कार्रवाई को मजबूत करना। इस वर्ष एफसीसी भी इस समूह से जुड़ गई है ताकि मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ लड़ाई को और मजबूत बनाया जा सके। सितंबर 2026 से मॉरिशस और यूनियन के बीच नागरिक सुरक्षा को समर्पित एक नई समिति भी कायम की जाएगी। 6 मई तक मॉरिशस में चिकुनगुनिया के 147 मामले दर्ज। इस वर्ष की शुरुआत से अब तक कुल मामलों की संख्या 2,470 पहुंच चुकी है। डॉक्टर फाजिल कोदाबुकस के अनुसार मॉरिशस इस समय महामारी के चरम चरण के करीब पहुंच रहा है। कॉन्डस प्रयोगशाला में जांच का दबाव बढ़ गया है। हालांकि स्वास्थ्य कर्मी पीसीआर परीक्षण के परिणाम 48 घंटे के भीतर देने का प्रयास कर रहे हैं। अटलांटिक महासागर में क्रूज जहाज पर फैले हंटा वायरस संक्रमण को लेकर विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने कहा कि ये COVID-19 जैसी नई महामारी नहीं है। WHO के अनुसार ये वायरस मुख्य रूप से संक्रमित चूहों और नजदीकी संपर्क से फैलता है। अब तक 5 मामलों की पुष्टि हो चुकी है जबकि 3 लोगों की मौत हुई। स्वास्थ्य अधिकारी जहाज से उतरे यात्रियों चालक दल के सदस्यों का पता लगाने में जुटे हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने फिलहाल खतरे का स्तर कम बताया है लेकिन आने वाली हफ्तों में और मामले सामने आ सकते हैं। इसी के साथ संक्षिप्त समाचार समाप्त हुए। बढ़ते हैं शोक समाचारों की ओर। कोट रॉयल पेटी राफ्रेमी 68 साल के 68 ईयर्स ओल्ड के श्री चंद्रदत्त अनंत श्री चंद्रदत्त

0: अनंत की मृत्यु हो गई है। लोग उन्हें पेद्रो के नाम से अधिक जानते थे। उनकी अर्थी आज शाम के 3:30 बजे उनके बेटे विक्रम अनंत के मकान रॉयल रोड पिछराफरे से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए पिछराफरे ही की शमशान भूमि ले जाया जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 3:30 PM। शोक में डूबे इस परिवार के प्रति हमारी गहरी सहानुभूति है।
1: 819 किलोहर्ट्ज ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस
2: शम्मे फरोजा।

0: जुम्मे का मुबारक दिन है आप तमाम सुनने वालों को। हमारी जानिब से जुम्मा बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह पाक आपको ऐसे हज़ारों जुम्मे नसीब फरमाए। मौज़ सामीन, आज के इस उर्दू मजलिस में आप समात फरमाएंगे तिलावत कुरान पाक, हम्द, नातो सलाम और आपके पैगामात। 5251-7005 के ज़रिए आप हमें व्हाट्सएप या नॉर्मल मैसेजेस के ज़रिए अपने पैगामात भेज सकते हैं। तो आइए हर जुम्मे की तरह आगाज़ करते हैं सूरह अल-कहफ़ की तिलावत से। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
1: बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दु

सदाकल्लाहु अज़ीम। अभी आप समाअत फरमा रहे थे सूरह कहफ़ की तिलावत। सूरह कहफ़ की तिलावत के बेशुमार फ़ज़ाइल और फ़वाइद अहादीसे मुबारक में बयान किए गए हैं। ये कुरान पाक की 28वीं सूरह है और इसका पढ़ना 22 बरकत है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने जुम्मे के दिन सूरह कहफ़ पढ़ी उसके लिए एक जुम्मे से दूसरे जुम्मे तक ख़ास नूर रोशन कर दिया जाता है। सूरह कहफ़ पढ़ने से, जी हाँ, इस सूरह की तिलावत से घर में अल्लाह ताला की रहमत का नुज़ूल होता है, सुकून कल्ब हासिल होता है और घर से नहोसत दूर होती है। जो शख्स जुम्मे के दिन सूरह कहफ़ पढ़ता है उसके लिए इस जुम्मे से लेकर अगले जुम्मे तक के सगीरा गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं।

जुम्मे के नमाज़ में जल्द आने की फ़ज़ीलत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, जब जुम्मे का दिन आता है तो फ़रिश्ते मस्जिद के दरवाज़े पर खड़े हो जाते हैं और आने वालों के नाम लिखते हैं। सबसे पहले आने वाला ऊँट की कुर्बानी देने वाले की तरह लिखा जाता है, उसके बाद आने वाला गाय की कुर्बानी देने वाले की तरह, फिर मेंढे की कुर्बानी, उसके बाद मुर्गी का, उसके बाद अंडे का। लेकिन जब इमाम खुतबा देने के लिए बाहर आ जाता है तो ये फरिश्ते अपने दफ्तर बंद कर देते हैं और खुतबा सुनने में मशगूल हो जाते हैं।

अरे हाजियों, तुम हरम जा रहे हो, अम्बसत एहतराम एक पयाम अर्ज़ करना। मज़ारे मुक़द्दस पे जब हाज़िरी हो, मेरा भी नबी से सलाम अर्ज़ करना। ये कहना कि एक उम्मती बेसहारा है, बेचैन वो दर्दे फुरक़त का मारा। ये कहना मदीने से वो दूर रहकर फिरे अंदर बदर, सुबह शाम अर्ज़ करना। अरे हाजियों, तुम हरम जा रहे हो, बसत एहतराम एक पयाम अर्ज़ करना। तड़पता है दिल और बरसती हैं आँखें, बराए ज़ियारत तरसती हैं आँखें। ये कहना बसारत से महरूम है वो, मेरी हालत गम तमाम अर्ज़ करना। हो मक्के से तैबा की जानिब रवाना, हो दिल आशिकाना नज़र आरिफाना। अदब से सरे राह पलकें बिछाना, अकीदत से फिर तुम सलाम अर्ज़ करना। ये कहना इसे एक ही धुन लगी है, सदा उसके होंठों पे ये नाते नबी है। बुलाने का वो मुंतज़िर है खुदारा, उसे भी मिले इज़्ने आम अर्ज़ करना। अरे हाजियों, तुम हरम जा रहे हो, बसत एहतराम एक पयाम अर्ज़ करना।

मौज़ा सामईन, अभी जो कलाम आप समाअत फरमा रहे थे, इसकी फरमाइश हमसे की थी न्यू कोफ की फ़ातिमा ने। जी हाँ, फ़ातिमा, तमाम सुनने वालों को जुम्मे की मुबारकबाद पेश कर रही हैं। आइए इसी के साथ बढ़ते हैं आपके पैगामात की तरफ। जी हाँ, बोयरन फैमिली जो कि मिडलैंड्स की रहने वाली है, वो ईसाले सवाब की गुजारिश कर रहे हैं मरहूम अब्दुल वहाब बोयरन, जिनके इंतकाल को आज 4 महीने हुए हैं। उनके लिए दुआगो हैं कि अल्लाह पाक मरहूम को जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता फरमाए। इसके अलावा जी हाँ, इसके अलावा बंधु और कुरमाली फैमिलीज जो कि त्रियुले की रहने वाली हैं, वो तमाम बहन भाइयों को जुम्मे की मुबारकबाद पेश कर रहे हैं और तमाम हज पर जाने वाले खुश नसीबों को हज की मुबारकबाद भी पेश कर रहे हैं। इसके अलावा मरहूम महमूद आजिम, मरहूम यूसुफ आजिम, मरहूम इद्रीस आजिम, मरहूमा रहीमा आजिम के लिए लाग़ीकुओं से रशीदा आजिम दुआए मगफ़रत की गुजारिश कर रही हैं, और रशीदा तमाम मरीज़ों के लिए दुआए शिफा की गुजारिश भी कर रही हैं, और तमाम हज पर जाने वाले खुश नसीबों को मुबारकबाद भी पेश कर रही हैं। इसके अलावा मरहूम इमाम जमशीद इसमदौ के लिए उनके बेटे मुजम्मिल ने दुआए मगफ़रत की गुजारिश की है। इसके अलावा मरहूम अब्दुल सत्तार फ़कीरा के लिए उनके बेटे मोहम्मद यूसुफ किताबजी फ़कीरा, इसके अलावा अब्दुल कादिर, जी हाँ उनके भाई अब्दुल कादिर, उनकी बीवी नसीमा, बहन रुक्यों और भाभी शकीला ने दुआए मगफ़रत की गुजारिश की है, और हाइलैंड्स की लैला तमाम मुसलमानों को जुम्मे की मुबारकबाद पेश कर रही हैं, और तमाम हज पर जाने वालों के लिए दुआगो हैं कि अल्लाह पाक तमाम हाजियों को हज मबरूर अता फरमाए और हमें भी इस सआदत की तौफीक दे कि हम भी हज अदा कर सकें। इसके अलावा तमाम बच्चों के लिए दुआगो हैं कि अल्लाह पाक तमाम बच्चों को हिदायत अता फरमाए और उनके मुस्तकबिल में उनकी मदद फरमाए। आमीन।

0: 819 किलोहर्ट्ज़, ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस
1: आपकी पसंद। शुक्रवार 8 मई, घड़ी मिला लीजिए दोपहर के 2:30 बज रहे हैं। रेडियो मॉरिशस पर आप सभी का स्वागत हम करते हैं। सुमिता की ओर से नमस्कार। स्वीकार करें आप सबका पसंदीदा प्रोग्राम आपकी पसंद लेकर हम आ गए हैं आपका साथ देने के लिए। अभी से लेकर 4:45 बजे तक हम आपके साथ साथ रहेंगे। तो उम्मीद करते हैं आज का दिन अच्छे से बीत रहा होगा। मौसम भी काफ़ी सुहाना है। हाँ, थोड़ी सी गर्मी भी है और बदलते मौसम में अपना ख्याल रखना मत भूलिएगा। तो चलिए, देर किस बात की है, जुड़ जाइए हमारे साथ आपकी पसंद इस प्रोग्राम में रेडियो मॉरिशस पर। और हमारा नंबर तो आपको पता ही है, 4028085, या तो आप हमें मैसेज भी कर सकते हैं 5251700005 पर। और चलिए आज के इस प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं कारवा फिल्म के इस खूबसूरत गीत के साथ, कितना प्यारा वादा।

0: आपकी पसंद।
1: चलिए, आपकी पसंद की बड़ी ही खूबसूरत से शुरुआत हुई है कारवा फिल्म के इस गीत के साथ, और इसमें जितेंद्र नजर आए थे, आशा पारेख जी थी, फिल्म तो कमाल की थी, फिल्म के गाने भी लाजवाब थे। तो चलिए, ऐसा ही कोई लाजवाब सा गाना आप सुनना चाहते हैं या किसी के नाम करना चाहते हैं तो साथ दीजिए हमारा आपकी पसंद इस प्रोग्राम में रेडियो मॉरिशस पर। अभी के लिए अगले गाने की ओर हम बढ़ते हैं। आप आए बाहर आई फिल्म का ये जो अगला गीत है, रफ़ी साहब और लता जी की आवाज़ों में मुझे तेरी मोहब्बत का सहारा मिल गया होता, ये जो गाना है इसकी फरमाइश आई है माला जी की ओर से, जो पिछित्रित्रित से हमारे साथ जुड़ी हुई है। ऐसे माला जी हमेशा गाने के

फरमाइश नहीं करती है, आज कर रही है। तो चलिए माला जी, ये गाना आपके नाम हम करते हैं। साथ में आपके पति है ईश्वर, बेटा है दीपक, बेटी है रीमा, MBC की हमारी पूरी टीम के लिए थैंक यू सो मच। सभी जरी परिवार के नाम, आपके सभी दोस्तों के लिए, सभी सहेलियों के लिए और जितने लोग इस समय हमें सुन रहे हैं सभी के नाम।

0: आपकी पसंद।
1: यकीनन प्यार मोहब्बत अपनापन एक दूसरे का साथ देने से ही आगे बढ़ते हैं। और अभी के लिए हम आगे बढ़ रहे हैं खूबसूरत गानों के जरिए। और अगला जो तराना है एक फूल दो माली फिल्म का गीत है। लॉन्ग माउंटेन से शकुंतला जी हमारे साथ जुड़ी हुई है और शकुंतला जी की ओर से गाना जाता है गायत्री के नाम, उनकी भाभी गायत्री, बेटा है अजय। और साथ में यही गाना जो है इनके पूरे परिवार के नाम, हमारे तमाम सुनने वालों के नाम।
2: ये पर

0: की पसंद।
1: चलिए, खूबसूरत गानों का सिलसिला यहाँ पर जारी है और अब हम बढ़ेंगे इस अगले गीत की ओर। अगला जो तराना है आपकी कसम फिल्म का, ये गाना है ज़िंदगी के सफ़र में गुजर जाते हैं जो मकाम वो फिर नहीं आते। माला फौदौजी इस समय हमारे साथ जुड़ी हुई है। ये गाना उनकी ओर से उनकी भाभी रिहाना के नाम, सभी फौदा परिवार के नाम। और माला जी, आप थोड़ी सी अस्वस्थ है तो हम प्रार्थना करेंगे कि आप जल्दी से स्वस्थ हो जाएँ, और हमारा साथ आप दे रही है, धन्यवाद। और ये सभी सुनने वालों के नाम भी आपकी ओर से।

0: आपकी पसंद।
1: यकीनन बहुत सी चीज़ें जो है लौट कर फिर नहीं आती, फिर चाहे वो समय हो, वक्त हो, हालात हो, जज्बात हो, वो बदलाव ज़िंदगी का नियम है, समय के साथ बहुत कुछ बदलता है। और चलिए अभी के लिए हम आगे बढ़ते हैं। अगला गाना जो है जाता है मेलिसा और केंगी के नाम, जिनकी शादी थी कल। आप दोनों को ढेर सारी बधाई इस नए जीवन के लिए। आप लोग हमेशा खुश रहे और जीवन में बहुत तरक्की करें। आप लोगों को बधाई आई है रिवेजी पोस्ट से, उदय जी की ओर से, सभी तूफ़ानी परिवार और सभी वाइतिलिंगम परिवार की ओर से। और ये अगला गाना आप दोनों के नाम, और इसी गाने के साथ जो है हम बढ़ने वाले हैं 3 बजे के समाचार की ओर। तो ऐसे ही आप हमारे साथ जुड़े रहिए आपकी पसंद इस प्रोग्राम में। 3 बजे के समाचार के बाद आपकी पसंद ये प्रोग्राम जारी रहेगा।

0: सुनते हैं देश विदेश की खबरें। रजनी से आपको नमस्कार।
1: नमस्कार, श्रोताओं को भी नमस्कार। समाचारों में आप सभी का स्वागत करते हैं। सबसे पहले स्थानीय खबरें। एक टिकाऊ कृषि और कृषि डाइवर्सिफिकेशन के वास्ते खाद्य सुरक्षा की राष्ट्रीय स्ट्रेटेजी के संदर्भ में कृषि उद्योग मंत्री डॉक्टर अरविंद दुडेल और जूनियर मंत्री फैवेज दाविद ने रोजवेल शुगर स्टेट द्वारा संचालित कृषि जमीनों का दौरा किया। यहां पर जमीन तैयार की जा रही है जहां पर मुख्य रूप से सब्जी पैदावार की जाएगी। 300 बीघा कृषि जमीन में से 150 खेतिहरों के लिए निर्धारित, साथ ही अन्य जमीनों पर ईख के गन्ने उगाए जाएंगे। लोगों से वापस जमीन की ओर जाने के अलावा उत्पादन से फसल तक सभी चरणों में मशीनीकरण पर जोर दिया जा रहा है ताकि श्रम शक्ति खर्च कम किया जा सके। कल बोपलों के एक पंप स्टेशन में चलाई गई ये कार्रवाई के बाद दो संदिग्ध लोगों को हिरासत में लिया गया जिनके पास से भारी मात्रा में मादक द्रव्य बरामद हुए। पुलिस ने गाड़ी को रोका जिसे निकोला कौंजी चला रहे थे। उनकी मॉरिशन एवं फ्रांसीसी दोहरी नागरिकता प्राप्त है। गाड़ी में अफसरों को 146 ग्राम से अधिक के तथाकथित हेरोइंस मिले, ड्रग के कई पैकेट्स भी मिले और साथ में कैलिबर 12 की एक बंदूक भी। संदिग्ध व्यक्ति गुडलैंड के रहने वाले एक वॉचमैन इमिलियो बंधु के साथ था। उसके बाद जांचकर्ताओं ने पेरेबिया में निकोला कौशी के घर पर छापा मारा। वहां से गांजा और हेरोइन के कई पैकेट्स मिले। इसके अलावा एक इलेक्ट्रॉनिक तराजू भी जिस पर मादक द्रव्य के निशान थे। दूसरे संदिग्ध के यहां पुलिस को शस्त्र और कैलिबर 12 की गोलियां मिली। संदिग्ध व्यक्ति ने जिस गाड़ी का इस्तेमाल किया गया उसे जब्त कर दिया गया। बरामद मादक द्रव्य की लागत 2.7 मिलियन रुपए से अधिक की बताई जाती है। गांधीनगर नॉर्थवेस्ट के कैदखाने में पेश आए हादसे के बाद एक जांच शुरू की गई है। असल में दो कैदियों पर अस्थायी आरोप है कि उन्होंने एक अन्य कैदी पर हमला किया। 46 वर्षीय व्यक्ति को चेहरे पर चोट लगी। कैदखाने के एजेंट जल्द ही स्थिति को नियंत्रित करने पहुंचे, साथ ही अन्य दो कैदियों पर अन्यों ने हमला किया। कैदियों की मेडिकल यूनिट की ओर से तीनों घायल लोगों को संभाला गया, फिर इलाज के लिए उन्हें रोजवेल स्थित जवाहरलाल नेहरू अस्पताल ले जाया गया। बढ़ते हैं विदेशी समाचारों की ओर। सबसे पहले रुख करते हैं भारत, जहां पर भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी 11 मई को पुनर्निर्मित सोमनाथ मंदिर का लोकार्पण की 75वीं वर्षगांठ के कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। उन्होंने ये जानकारी देते हुए एक लेख में भव्य दिव्य सोमनाथ धाम को समर्पित अपनी भावनाएं भी व्यक्त की। और भारत से ये भी खबर है कि तमिलनाडु में यथापति विजय की पार्टी तमिलनाडु वेंट्री कजगम TVK के सरकार बनाने का रास्ता लगभग साफ हो गया है। CPI, CPIM, VCK और कांग्रेस ने TVK को समर्थन देने की घोषणा की है जिसके बाद पार्टी मुख्यालय के बाहर जश्न मनाया जा रहा है। और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में अमेरिकी नौसैनिक विनाशक और ईरान के बीच गोलीबारी के बावजूद ईरान के साथ अभी भी युद्ध विराम जारी। दोनों ही पक्ष एक दूसरे पर सबसे पहला हमले करने का आरोप लगा रही है। संक्षिप्त समाचार ये पर समाप्त हुए। आपने ध्यान दिया इसके लिए धन्यवाद। कुछ ही समय में शोक समाचार। नंबर 31 सेंट फामी रोड सेंट क्वामे, नंबर 31 सेंट फामी रोड सेंट क्वामे 64 साल के 64 ईयर्स ओल्ड के श्री कुमार नेओल, श्री कुमार नेओल जो दत्त नाम से भी जाने जाते थे की मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थ थी कल सुबह 10 बजे उनके घर नंबर 31 सेंट फामी रोड सेंट कॉसे उठाकर अंतिम संस्कार के लिए वाले दे फतह की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रोमेशन टुमरो एट 10 AM। फेलिक्स देवाटो शॉ दे माउस पोर्टलिस में, फेलिक्स देवाटो शॉ दे माउस पोर्टलिस में 70 साल के 70 ईयर्स ओल्ड के श्री बिपिन रोही, श्री बिपिन रोही जो बिपिन नाम से भी जाने जाते थे की मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी कल दिन के दो बजे उनके घर फेलिक्स देवाटो शॉ दे माउस पोर्टलिस से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए थॉकबर्ग की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रोमेशन टुमरो एट 2 PM। शोक में डूबे इन परिवारों के साथ हमारी दिली हमदर्दी है।
2: Your news on NBC Play, NBC Play, NBCRadio.tv, NBCRadio.tv.
3: 819 kHz, ये है रेडियो मॉरिशस।

0: 19 किलोहर्ट्ज़ ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस
1: 10 मई को, रविवार 10 मई को सुबह के 8:30 बजे से दोपहर के 3:30 बजे के बीच यहाँ पर बिजली की सप्लाई में कटौती लाई जाएगी। साथ ही सितेमौशाल प्लेनवियत के रहने वाले ग्राहकों को बताया जाता है कि यहाँ पर खासकर रुई लातौनीय, इंडियन हाजी इसाक दोरियावू, रूत मिलितेय, यहाँ पर और आसपास रहने वाले ग्राहकों को बताया जाता है कि यहाँ पर भी रविवार 10 मई को सुबह के 8:30 बजे से दोपहर के 2 बजे के बीच यहाँ पर भी बिजली की सप्लाई में कटौती लाई जाएगी। साथ ही विलाज द एक्वायो यहाँ पर और आसपास रहने वाले ग्राहकों को, खासकर जूसरी रोड, स्कूल रोड, डिस्पेंसरी रोड, विलेज हॉल रोड, बिक मांगा रोड, रामखेलावन रोड, रॉयल रोड, एक्वायो, यहाँ पर और आसपास रहने वाले ग्राहकों को सूचित किया जाता है कि यहाँ पर भी रविवार 10 मई को सुबह के 8:15 बजे से सपेर के 4:30 बजे के बीच यहाँ पर भी बिजली की सप्लाई में कटौती लाई जाएगी। साथ ही थ्रोदुदुस के रहने वाले ग्राहकों को बताया जाता है, थ्रोदुदुस के खासकर सितक्वाजे, मौसलमा पुनित, यहाँ पर और आसपास रहने वाले ग्राहकों को बताया जाता है कि यहाँ पर शनिवार 9 मई को सुबह के 8:30 बजे से शाम के 5 बजे के बीच यहाँ पर भी बिजली की सप्लाई में कटौती लाई जाएगी। और साथ ही इन जगहों पर रहने वाले ग्राहकों को बताया जाता है पेरेबे के खासकर कासा फ्लोरिडा रोड, कोलेंदावेलू रोड पेरेबेया, यहाँ पर और आसपास रहने वाले ग्राहकों को सूचित किया जाता है कि शनिवार 9 मई को सुबह के 8 से दोपहर के 3 बजे के बीच यहाँ पर भी बिजली की सप्लाई में कटौती लाई जाएगी। तो इन सभी जगहों पर ज़रूरी मरम्मत कार्यों की वजह से बिजली की सप्लाई में कटौती लाई जाएगी और कार्य सम्पन्न होते ही बिना पूर्व सूचना दिए बिजली की सप्लाई फिर से शुरू कर दी जाएगी। इन सभी असुविधाओं के लिए सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड अपने ग्राहकों के प्रति क्षमा प्रार्थी है। तो ये थी कुछ जरूरी विज्ञप्तियां सीईबी की ओर से।
0: 819 किलोहर्ट्ज़ ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस
2: आपकी पसंद।
1: चलिए 3:09 होने को है, आपकी पसंद इस प्रोग्राम में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत हम करते हैं। और चलिए जितने भी हमारे सुनने वाले आज अपना जन्मदिन मना रहे हैं, आप सभी को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। यहाँ पर देवर जयदत्त मोहन आज 60 वर्ष के हो चुके हैं। तो जयदत्त जी, आपको जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं, खासकर अनिता जोगारा की ओर से, आपकी पत्नी प्रिया की ओर से, भाई बहन, पूरे मोहन परिवारों की ओर से जयदत्त जी आपको जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। और आज बहू वर्षा का जन्मदिन है जो ऑस्ट्रेलिया में है, तो वर्षा जी आपको जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं वाकवा से आपकी सास सुदेवी जी की ओर से। और साथ में शुभकामनाएं आपके पति विमल, बेटी निया, बेटा वीर और तयाक के मामा हेमावती, भाई अश्विन, भाभी देवीना, बेटा लिश्नव, रक्षित मालिंगा से दीदी है, साथ में अनुषा है, किरण है, सभी राम रतन परिवार, सभी राम गुलाम परिवार, सभी कुवारू परिवारों की ओर से वर्षा आपको जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। और जितने भी सुनने वाले आज अपना जन्मदिन मना रहे हैं, आप सभी को जन्मदिन की हार्दिक बधाई। और यहाँ पर अगला गाना जाता है रूमा, आरती, इंदिरा, भाई राकेश, धीरज के नाम। और साथ में यहाँ पर नुमलेश है, बेटी है कीर्तिना, शिमला जो बेलरोज से साथ दे रही है। और यहाँ पर जन्मदिन किसका है आपने ये नहीं लिखा शिमला जी, लेकिन आपने इतना लंबा मैसेज लिखा, तो चलिए जिसका भी जन्मदिन है आपकी ओर से जन्मदिन की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं उनको। और चलिए ये जो अगला तराना है जाता है उन सभी के नाम जो मना रहे हैं अपना बर्थडे।

0: आपकी पसंद।
1: तो चलिए, यहाँ पर जन्मदिन का खास मौका है और जितने भी लोग जन्मदिन मना रहे हैं आपको एक बार फिर से हार्दिक शुभकामनाएं और बेस्ट विशेज हमारी पूरी टीम की ओर से। और चलिए ऐसे में बढ़ेंगे हम इस अगले गाने की ओर। दीवाना फिल्म का ये तराना है, पुरानी फिल्म दीवाना, मुकेश साहब की आवाज़, ए सनम जिसने तुझे। ये जो गाना है जयसी गुलाम जी की ओर से, इसकी फरमाइश आई है, नोबेल फ्रांस से हमें सुन रहे हैं। और ये जो गाना है जय जी आपकी ओर से जाता है रीता और उनके बेटे तरुण के नाम और सभी सी गुलाम परिवार के नाम।

0: आपकी पसंद।
1: चलिए आज बहुत ही मतलब के लाजवाब गानों की फरमाइश आ रही है आप ही की, आप सभी की ओर से एक के बाद एक। तो चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। कुछ गाने ऐसे हैं, ऐसा लग रहा है कि कितने दिनों बाद हम इन्हें सुन रहे हैं, है ना। तो चलिए यहाँ पर अगले तराने की ओर हम बढ़ेंगे। राम तेरी गंगा मैली फिल्म का तराना है, माहिन जी आपके नाम जाता है ये गाना। और ये गाना आपकी ओर से जाता है आपके पूरे परिवार के लिए। सभी जगमोहन परिवार के नाम, खासकर आपकी दीदी मान के लिए।

0: की पसंद।
1: जी हाँ, प्यार से रास्ता तो क्या ज़िंदगी कट जाती है। और चलिए अगला गाना जो है इसकी ओर हम बढ़ते हैं। अमर फिल्म का ये तराना है। अमीना जी की ओर से इस गाने की फरमाइश आई है लता जी की आवाज़ में, तेरे सत के बलम। ये गाना अमीना जी की ओर से जाता है इनके सभी रिलेटिव्स के नाम, सभी दोस्तों के नाम, सभी पड़ोसियों के नाम। चलिए अमीना जी, ये गाना आपके नाम भी हम करते हैं और आपकी ओर से हमारे तमाम सुनने वालों के नाम।

0: आपकी पसंद।
1: और चले यहाँ पर आपकी पसंद इस प्रोग्राम में अगला तराना, एक और जन्मदिन का गीत है। पोती आद्या अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रही है। आद्या, आपको जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं आपकी दादी अनीता की ओर से। और यहाँ पर शुभकामनाएं आई है आपको आपके दादा राज की ओर से, दादी अनीता की ओर से। पापा है अंकुश, मामा है आशीमा, बड़े पापा है अंतिश, बड़ी मामा है मनीषा, सभी कजिन्स की ओर से अंश, फिर साथ में नानी है इंदिरा, और पूरे परिवार की ओर से आपको आद्या जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। तो चलिए ये गाना आपके लिए चल पड़ा।

0: आपकी पसंद।
1: चलो, आने का और जाने का समय कब होता है पता ही नहीं चलता। इतने अच्छे अच्छे गाने सुनते सुनते कब प्रोग्राम का जो टाइम है ये ख़त्म होने को चला, अंदाज़ा ही नहीं हुआ। चलिए, अगला गाना जो है हम माया जी आपके नाम करते हैं, मोताई ब्लॉन्च से हमारा साथ दे रही है। डॉन फिल्म का ये गाना आपने मांगा है, जिसका मुझे था इंतज़ार। लता जी, किशोरदा और साथियों की आवाज़ों में ये गाना आपकी ओर से आपकी बहन प्रेमिला के नाम जाता है। और यहाँ पर जो है इसी गाने को हम विश्वानी दुमन आपके नाम करते हैं, आपकी ओर से इंदिरा, शारदा, नीला, प्रतिभा, शोभा और गीता गजाधर के नाम, सभी दुमन फैमिलीज के नाम इसी गाने को हम डेडिकेट करते हैं। और चलिए, जितने भी सुनने वाले साथ दे रहे हैं, मैसेजेस तो अभी भी आ रहे हैं, लेकिन जाते जाते ये आखिरी गाना इंदिरा लौटन जी आपके नाम भी, पेपे के नाम, कृष्णा के नाम, दीक्षा है, गोपी है, लंदन से सभी परिवार जो इस समय हमें सुन रहे हैं, ये गाना उनके लिए भी जाता है यहाँ पर। और विद्या जी, आपको भी हम नहीं भूले है, आप हमारे साथ जुड़ी हुई है। तो चलिए, इसी गाने के साथ आपकी पसंद यह प्रोग्राम समाप्त हो जाएगा। 4:15 बजे आप निसार की पेशकश में गुलदस्ताए उर्दू इस प्रोग्राम को सुन पाएंगे। हमारी आपकी मुलाकात जल्द होगी, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। ऐसे ही रेडियो मॉरिशस पर जुड़े रहिए, हमारा साथ देते रहिए। आप सभी के प्यार भरे साथ के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और जाते जाते ये अंतिम गाना उन सभी सुनने वालों के नाम जो कभी फरमाइश नहीं करते हैं लेकिन रेडियो से हमेशा जुड़े रहते हैं।
0: आपकी पसंद।
2: ये है रेडियो मॉरिशस।

0: गुलों में रंग भरे बादिनो बहार चले, गुलों में रंग भरे बादिनो बहार चले, चले भी आओ के गुलशन का कारोबार चले। सामईन जी वकार निसार अख्तर की तरफ से आदाब तस्लीमात, आप समात कर रहे हैं ख़ास प्रोग्राम गुलदस्ते उर्दू, वो दिलनशीं बज़्म जहां हर हफ्ते हम उर्दू की खुशबू भरी दुनिया से मुख्तलिफ़ रंगों के फूल चुनकर आपकी खिदमत में पेश करते हैं। तमाम शायकीन उर्दू का हम निहायत मोहब्बत और अकीदत के साथ इस्तकबाल करते हैं। याद रहे ये ख़ास प्रोग्राम उर्दू स्पीकिंग यूनियन के ज़ेर एहतमाम नशर किया जाता है। सामईन मोहतरम, आपको ये इतला दी जाती है कि वज़ारत सकाफ़त व फ़नून के ज़ेर एहतमाम नेशनल ड्रामा फेस्टिवल बराए उर्दू ज़बान 2026 का इनकाद सेज कॉन्स्टांस थिएटर वाकुआ में होने जा रहा है। इसके इब्तदाई मुकाबले यानी प्रिलिमिनरीज पीर 11 मई को दोपहर के 12:30 बजे मुनाकिद होंगे। MGI मुका पेश करेगा ड्रामा बउनवान जंजीर टूट गई। पीतो स्टेट कॉलेज का दीवाना ग्रुप पेश करेगा ड्रामा बउनवान तहते शऊर और सिमाद्री वीरासोमी SSS पेश करेगा ड्रामा बउनवान इतनी सी बात। सामईन, आप तमाम लोगों को शिरकत की दावत है। हम तमाम उम्मीदवारों के लिए दिल की अता गहराइयों से नेक ख्वाहिशात रखते हैं और आप सबसे मुअद्दबाना गुजारिश हैं कि शिरकत फरमा कर अपनी पसंदीदा टीमों का हौसला बुलंद फरमाएं। उर्दू स्पीकिंग यूनियन की मुकम्मल हिमायत हमेशा शामिल हाल है, जो मॉरिशस में उर्दू ज़बान की तरवीज व इशात के लिए कोई कसर नहीं छोड़ रही है। सामईन करामी, आज हम एक ऐसे बेबाक बेमिसाल अफसाना निगार का तज़किरा करेंगे जिन्होंने सच को सच कहने का हुनर भी रखा और हौसला भी। वो कलमकार जिन्होंने समाज के अंधेरों में उतरकर इंसान की असल हकीकत को लफ्ज़ों में ढाला, सादत हसन मंटो। मंटो की पैदाइश 11 मई 1912 को हुई थी। उनके यौम पैदाइश के मौके पर आज हम उन्हें खैराज अकीदत पेश करेंगे। उर्दू फिक्शन की तारीख में सादत हसन मंटो का नाम तारुफ का मोहताज नहीं। मंटो का शुमार उर्दू के सफ़े अव्वल के अफसाना निगारों में होता है। वो एक सच्चे और बेबाक फनकार थे। उन्होंने जो कुछ लिखा खुलूस और ईमानदारी के साथ लिखा। सामईन कराम, किसी भी अदीब को सही तौर पर समझने के लिए ये अशद ज़रूरी होता है कि हम उनके हालात ज़िंदगी और ख़ानदानी पस मंज़र को जानें, क्योंकि एक कलमकार जो कुछ लिखता है वो अक्सर उसकी अपनी ज़िंदगी के तजुर्बात का अक्स होता है। इसी मुनासिबत से आइए मंटो के हालात ज़िंदगी पर एक नज़र डालते हैं।
1: सादत हसन मंटो की पैदाइश 11 मई 1912 को संबराला जिला लुधियाना पंजाब में एक कश्मीरी मुस्लिम घराने में हुई। उनके वालिद गुलाम हसन जज थे, सख्त मिजाज और नज्म व ज़ब्त के कायल, जबकि उनकी वालिदा सरदार बेगम नरम दिल और मोहब्बत करने वाली थी। मंटो की इब्तदाई शख्सियत पर इन दोनों मिजाजों का गहरा असर पड़ा। एक तरफ सख्ती, दूसरी तरफ शफकत, एक तरफ पाबंदी, दूसरी तरफ दिल की नरमी। शायद यही वजह है कि मंटो की तहरीरों में एक साथ बगावत भी मिलती है और इंसान के जख्मों पर झुक जाने वाली हसासियत भी। उनकी तालीम का हाल ये था कि वो मैट्रिक में 2 बार नाकाम हुए, यहाँ तक कि उर्दू में भी फेल हो गए। मगर जिंदगी का दिलचस्प मजाक देखिए कि यही लड़का आगे चलकर उर्दू अफसाने का एक ऐसा उस्ताद बना कि जबान खुद उसके कलम पर फख्र करने लगी। उनके वालिद की सख्त गिरी ने उनके अंदर एक किस्म की बगावत पैदा की और यह बगावत सिर्फ घर तक महदूद न रही बल्कि बाद में समाजी अकदार, मुनाफिकत और झूठे अखलाकी दावों के खिलाफ भी उनकी तहरीर का हिस्सा बन गई। जवानी के आगाज में मंटो की जिंदगी में एक अहम मोड़ उस वक्त आया जब उनकी मुलाकात अब्दुल बारी अलीग से हुई। यही वो शख्सियत थे जिन्होंने मंटो के अंदर छुपे हुए अदीब को पहचाना, उनकी रहनुमाई की और उन्हें मगरबी अदब की तरफ मुतवज्जो किया। उन्हीं के कहने पर मंटो ने विक्टर ह्यूगो की किताब द लास्ट डे ऑफ अ कंडेम्ड मैन का उर्दू तर्जुमा सरगुज़िश्ते असीर के नाम से किया और फिर ऑस्कर वाइल्ड के ड्रामे वीरा का भी तर्जुमा किया। यहीं से मंटो के कलम ने बाकायदा सफर शुरू किया। सन 1930 की दहाई के वस्त में मंटो बंबई पहुंचे और यही शहर उनकी जिंदगी, शख्सियत और तख्लीकी सफर में बहुत अहम साबित हुआ। उन्होंने अखबारात और रसायल में काम किया, फिर फिल्मी दुनिया से वाबस्ता हुए,

0: आगे चलकर इंपीरियल फिल्म कंपनी बंबई टॉकीज, फिल्मिस्तान और दूसरी फिल्मी फजाओं में कहानियां, मकालमे और स्क्रिप्ट लिखे। मंटो ने ऑल इंडिया रेडियो दिल्ली में भी काम किया, जहां उनके रेडियो ड्रामे खासे मकबूल हुए। उस जमाने में उनकी अदबी पुख्तगी तेजी से बढ़ी। वो महज कहानीकार नहीं रहे थे, बल्कि एक ऐसे फनकार बन चुके थे जो रोजमर्रा जिंदगी, फिल्मी दुनिया, गरीब मोहल्लों, मुतवस्सत तबके की घुटन और इंसानी ख्वाहिशात के तारीख कमरों को बेधड़क बयान कर सकता था। मंटो की अदबी दुनिया बहुत वसी है, मगर आम कारी के जहन में उनका नाम आते ही चंद अफसाने फौरन रोशन हो उठते हैं। टोबर टेक सिंह, खोल दो, ठंडा गोश्त, बू, हतक, इन कहानियों में सिर्फ वाकयात नहीं, पूरा जमाना बोलता है। मंटो के फन की असल ताकत ये थी कि वो जिंदगी को खूबसूरत बनाकर पेश नहीं करते थे, वो जिंदगी को वैसा ही लिखते थे जैसी वो है, बेढंगी, जख्मी, मजबूर, ख्वाहिशों से भरी हुई और अक्सर अपने ही बनाए हुए उसूलों से टकराती हुई। उनके नजदीक अगर कहानी बर्दाश्त नहीं हो रही तो कसूर कहानी का नहीं, उस समाज का है जिसने ऐसे हालात पैदा किए। उनके यहां जुमला मुख्तसर होता है, मगर वार गहरा करता है। उनके किरदार किताबी नहीं लगते, जीते जागते आदमी महसूस होते हैं। उन्होंने उर्दू अफसाने को बनावट, खिताबत और जरूरत से ज्यादा आराइश से निकालकर जिंदगी के बीच ला खड़ा किया। उनके असलूब पर मोपसा, ओ हेनरी, दोस्तोवस्की और सोमरसेट माहम जैसे मगरबी लिखने वालों के असरात भी दिखाई देते हैं, मगर मंटो ने अपनी राह खुद बनाई। वो किसी के मुकल्लिद नहीं, अपने मिजाज के मुनफरिद अदीब थे। लाहौर आकर भी वो सुकून से ना रह सके। माली मुश्किलात, अदबी मुखालफत, समाजी तंग नजरी, मुकदमे और अंदर ही अंदर जलता हुआ एक हसास जहन, ये सब उनके साथ रहा। जिंदगी के आखिरी बरसों में मंटो की सेहत गिरती गई। शराब नोशी ने उनके जिस्म को कमजोर कर दिया, मगर उनके कलम की आग पूरी तरह सर्द ना हुई। वो मुसलसल लिखते रहे, अपने अहद से झगड़ते रहे और अपने समाज के सामने आईना रखते रहे। उनका मशहूर खुदनविश्ताना और तंजी अंदाज भी उस जमाने में और ज्यादा नुमाया हुआ। उन्होंने मजामीन लिखे, खाके लिखे, फिल्मी शख्सियात पर लिखा, रेडियो ड्रामे लिखे और अपने मखसूस लहजे में दुनिया को देखते रहे। फिर वो वक्त आ गया जब उर्दू अफसाने की ये बेचैन, बेबाक और सच्ची आवाज खामोश हो गई। 18 जनवरी 1955 को लाहौर में सादत हसन मंटो का इंतकाल हो गया। उस वक्त उनकी उम्र सिर्फ 42 बरस थी। उम्र मुख्तसर थी, मगर असर ऐसा कि आज भी उर्दू अफसाने का जिक्र मंटो के बगैर अधूरा है।
1: 819 किलोहर्ट्ज़, ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस।
2: मुअज़्ज़ज़ सामईन, इस वक्त आप उर्दू स्पीकिंग यूनियन का पेश करदा प्रोग्राम गुलदस्ते उर्दू समात फरमा रहे हैं। सादत हसन मंटो के यौम पैदाइश के मौके पर आज हम उन्हें खैराज तहसीन पेश कर रहे हैं। सादत हसन मंटो की असल अजमत ये है कि उन्होंने अदब को अखलाकी तकरीर नहीं बनने दिया, बल्कि उसे इंसान की असलियत का दस्तावेज बना दिया। जब मंटो का नाम उर्दू अफसाना निगारी की दुनिया में आता है तो एक अजीब सी तपिश, सच्चाई और बेरहम दयानतदारी का एहसास जाग उठता है। मंटो वो अदीब हैं जिन्होंने समाज के चेहरे पर चढ़े हुए शायस्तगी के नकाब को उतार कर इंसान को उसकी असल हालत में दिखाया। वो वही लिखते थे जो वो देखते थे और वही दिखाते थे जिसे देखने से ये मुआशरा अमूमन कतराता है। इसलिए मंटो सिर्फ एक अफसाना निगार नहीं, एक अहद की बेचैन रूह भी है। सामने गरामी, सादत हसन मंटो की तहरीरें दुनिया के कई जबानों में तर्जुमा हुई और सन 2013 में पाकिस्तान ने उन्हें बाअज वक्त निशान इम्तियाज से भी नवाजा। लेकिन सच तो ये है कि मंटो का सबसे बड़ा एजाज रियासती तमगा नहीं, बल्कि ये है कि वो आज भी जिंदा, मुतहर्रिक और परेशान करने वाले अदीब के तौर पर पढ़े जाएं। वो हमें पसंद आए या ना आए, मगर हमें झंझोर ज़रूर

देते हैं, यही एक बड़े अदीब की पहचान है। वो सिर्फ लिखता नहीं बल्कि अपने ज़माने को बेनकाब भी करता है। सामिन कराम, इसी के साथ हमारा आज का अदबी प्रोग्राम गुलदस्ते उर्दू अख्तिताम पज़ीर होता है। मंटो के योम पैदाइश के मौके पर आज हमने उन्हें खैराज अकीदत पेश की। उम्मीद है आपने इसे ज़रूर पसंद फरमाया होगा। जब भी मौका मिले मंटो का एक अफसाना ज़रूर पढ़िएगा, ख़ासकर हमारी नौजवान नस्ल को भी मालूम होना चाहिए कि बड़े अदीब महज किताबों के मुसन्निफ नहीं होते बल्कि वो तहजीब के अमीन होते हैं, ज़बान के मैमार और एहसास के तर्जुमान भी होते हैं। सामईन, अब अपने मेज़बान निसार अख्तर को इजाज़त दीजिए। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़।

घड़ी मिला लीजिए, शाम के ठीक 4 बज रहे हैं। मोहतरम मोहतरम सामीन, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इस वक्त हम रेडियो मॉरिशस से आपसे मुखातिब हैं, बज़्म-ए-नूर का आगाज़ हो रहा है।

मुहतशम मुहतरम सामीन, जुम्मे का मुबारक दिन है, मुबारक साते हैं। आज जिलकद की 19वीं तारीख 8 मई 2026 और 19 जिलकादा 1447 हिजरी का मुबारक दिन है। बिल्यकीन

जो सुलहा अहलुल्लाह में से हुए उनकी बख्शिश और उनकी मग़फ़िरत से रिलेटेड किसी और को ख्वाब आया और उनको बख्शिश का परवाना अता किया गया, चुनाचे काला मुहम्मद इब्न अब्दुल वहाबी काला समीअतुल हुसैन इब्न मंसूर काला समीअतु अब्दुल्लाह इब्न ताहिर अल अमीरा सैयदुना मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब ने फरमाया कि मैंने हुसैन बिन मंसूर से सुना और उन्होंने अब्दुल्लाह बिन ताहिर अल अमीर से सुना, यकूलू रअयतु फिन्नौम फी रमदान, आपने बताया कि मैंने ख्वाब में देखा रमजान में ख्वाब देखा, कअन्न किताबन अदना मिन समा, गोया के आसमान की तरफ से आसमान की जानिब से मुझे एक परवाना दिया गया, एक किताब दी गई, एक तहरीर दी गई, एक वर्का दिया गया। फकील अली हाजल किताब फीह इस्म मन गुफिर लहु, अब्दुल्ला बिन ताहिर ने फरमाया कि मुझसे ये कहा गया कि इस किताब में, इस बुक में या इस पेज और वर्का में उस शख्स का नाम है जिसकी बख्शिश हो गई, जिसकी मग़फ़िरत हो गई, जिसके गुनाह को मिटा दिया गया। फरमाते हैं फ़कुमतु, जब मैंने ये सुना कि ये वो तहरीर है, वो किताब है जिसमें उसका नाम है जिसकी बख्शिश हो गई, तो मैं ये सुनते ही उठ खड़ा हुआ। फतफस्सहतु, और मैं तलाश करने लगा, ढूंढने लगा, फी है उसमें कि कौन खुश नसीब है जिसकी बख्शिश का, जिसकी मग़फ़िरत का ये परवाना अता किया गया, जिसके बख्शिश और मग़फ़िरत के लिए ये किताब आसमान से उतारी गई। फ़इज़ा फ़ीहे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम यहया इब्नु यहया, उस तहरीर में लिखा हुआ था बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और उसके बाद लिखा हुआ था यहया इब्न यहया। इसका मतलब ये है कि वो तहरीर जिसमें बख्शिश का परवाना दिया गया, जिसमें बख्शिश का परवाना अता किया गया, वो यहया बिन यहया की मग़फ़िरत थी,
वो उनकी मगफिरत और बख्शिश का परवाना था। सो मालूम हुआ

0: 819 किलोहर्ट्ज़, ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस
1: गीत और गजल रेडियो मॉरिशस पर। मॉरिशस पर, रेडियो मॉरिशस पर। मिला लीजिए, समय शाम के ठीक 5 बजे हैं। ये रेडियो मॉरिशस का प्रसारण है और AM2 प्रसारण पर मैं हूँ रत्ना, आप पहुँची हूँ आज की इस हसीन महफिल में। आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। अभी से लेकर शाम के 6 बजे तक कुछ चंद गज़लों के साथ हम आपके लिए लेकर आए हैं और चंद गीत, चंद गज़ल, जिससे आशा करते हैं कि आज की ये शाम बहुत ही तरोताज़ा हो जाएगी। और इस हसीन वक्त में जब हम वक्त की बात करते हैं तो दोस्तों, वक्त जैसा भी हो, अच्छा या बुरा, बदलता ज़रूर है। इसलिए अच्छे वक्त में कुछ ऐसा गलत मत करो कि बुरे वक्त में लोग आपका साथ छोड़ दें।

साहब पौडवाल जी की क्या खूबसूरत आवाज़। और भाई कहते हैं ना, बढ़िया से बढ़िया गीत और गज़ल का ये सिलसिला जारी रखा जाएगा शाम के 6 बजे तक। इस वक्त 5:12, कुछ गीत, कुछ गज़ल, कुछ अल्फाज लाए हैं हम आपके लिए। हो रहे हैं आबाद फिर से, हो रहे हैं आबाद फिर से, उजड़ने के लिए देखते हैं कौन मिलता है अब बिछड़ने के लिए।

किसी का साथ ना देना, किसी को दगा देना भी किसी जहर से कम नहीं होता। कुछ रिश्ते आजकल उस रास्ते पर जा रहे हैं, न साथ छोड़ रहे हैं ना ही साथ निभा पा रहे हैं। अगली पेशकश अशोक खोसला की आवाज में रखी ये बढ़िया सी गजल।

गीत और गजल पंकज उदास साहब की इतनी मखमली सी आवाज। मायूस चेहरे पर मुस्कान ले आती है, यादें भी कमाल है फिर जिंदा कर जाती है, बस चाहिए इन्हें।

फुर्सत के दो पल, यादें भी कमाल हैं, दौड़ी चली आती हैं, कभी खुशियाँ तो कभी गम याद दिलाती है। यादें भी कमाल है, कभी कभी आँखें बिघा जाती हैं। गुजर जाता है दिन बीते वक्त की गलियों में, गुजर जाता है दिन बीते वक्त की गलियों में, यादें भी कमाल हैं, लम्हे चुरा ले जाती हैं। बिखरे हुए मन को एक नई उम्मीद देकर आगे बढ़ने का नया रास्ता दिखा जाती है। ये यादें भी कभी कभी हमें जीना सिखा जाती हैं। आइए आबिदा परवीन की आवाज़ से गीत और गज़ल में चार चांद लगाते हैं।

गीत और गज़ल धीरे धीरे शाम जवां होती जा रही है, पर जिंदगी के ये शाम दोस्तों, जिंदगी में कई बार शब्द बहुत भारी हो जाते हैं, जैसे पत्थर दिल पर रखे हो जाते हैं। कहना चाहते हैं बहुत कुछ हम, पर होंठ चुप्पी से भर जाते हैं। वो जो अल्फाज भीतर कैद है, वो ही सबसे ज़्यादा चीखते हैं। अगर उन्हें लिखा ना जाए तो ये धड़कनें भी घुटने लगती हैं। हर दिल के अंदर एक दरिया बहता है, हर दिल के अंदर एक दरिया सा बहता है, पर हर कोई किनारा नहीं पा पाता। कभी शब्द अश्क बनकर गिरते हैं, तो कभी खामोशी से जल जाता है। कह दो जो कहना है, देर न करो, ये मन भी कभी कभी थक जाता है। जो बोझ तुम दिल में दबाए रखते हो, वो ही एक दिन तुम्हें रुला जाता है।

जिंदगी का ये सफर बस यूं ही चलता रहेगा। बार बार गिरे हैं फिर भी उठे हैं, आंधियां चली मगर हम कभी ना रुके हैं। हर मोड़ पर मिला अंधेरा घना, पर उम्मीदों का दीपक हमने खुद जला रखा है। जमाना कहता है अब तो हार मान ले, हम मुस्कुराते हैं और कहते हैं अब भी जान बाकी है। हर ठोकर ने कुछ सिखाया है, हर ठोकर ने कुछ समझाया है। टूटे हैं सही मगर खुद को फिर से बनाया है। क्यों डरे हम इन हालातों की धूप से, हमारी छांव तो हमारे हौसले ने बनाई है। और हाँ, जो सोचते हैं कि हम थक कर रुक जाएंगे, जो सोचते हैं कि हम थक कर रुक जाएंगे, उन्हें नहीं पता हमारी कहानी अभी बाकी है। दोस्तों, इसी के साथ गीत और गजल की आज की ये महफिल, आज की ये शाम को बस हम यहीं पर समाप्त करेंगे। आशा करते हैं कि आज की गजलों से आपका दिल बहला होगा। फिर हाजिर रहेंगे, जिंदगी रही फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए बस रत्ना को दीजिए अनुमति, अभी कुछ ही पल में हम जुड़ेंगे 6 बजे के समाचारों के साथ। आज की ये शाम आपके लिए हसीन हो, खुशगवार हो। नमस्कार, शुभ संध्या आप सभी को।

0: 819 किलोहर्ट्ज, ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस।
1: शुक्रवार 8 मई 2026 ईस्टर सायंकालीन समाचार बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले सुर्खियां जो इस प्रकार है। कुछ पदार्थों के दामों में बदलाव बरकरार, चाहे सब्सिडी भी प्राप्त हो, इन बदलावों के पीछे कई मुद्दे जुड़े हुए। विनिमय मंडली से लेकर फ्रेट का दाम, स्टॉक की उपलब्धता, व्यवसाय मंत्रालय की तरफ से इन सब का हिसाब। एक टिकाऊ कृषि और कृषि डायवर्सिफिकेशन के लिए खाद्य सुरक्षा की राष्ट्रीय स्ट्रेटेजी के संदर्भ में कृषि उद्योग मंत्री डॉ. अरविंद बुलेल और जूनियर मंत्री फैबर्स डेविड ने रोजवेल शुगर स्टेट द्वारा संचालित कृषि जमीनों का किया दौरा। उत्पादन से फसल तक सभी चरणों में मशीनीकरण पर जोर, ताकि श्रम शक्ति खर्च कम किया जा सके। ईद उल अधा के लिए अंतर मंत्री स्तरीय समिति एक नतीजे पर पहुंची। मांस का दाम किलो पीछे 186 रुपए तय। मंत्री शकील मोहम्मद ने कहा कि तय दाम लोगों की खरीद शक्ति को बरकरार रखने के लिए है। सरकारी विभाग में वर्क फ्रॉम होम का ऐलान किए जाने से संबंधित एक सर्कुलर जारी, जिसके कुछ ही समय बाद इसे हटा दिया गया। इससे काफी कंफ्यूजन पैदा हुआ। सार्वजनिक सेवा मंत्री राजबेंजा ने इस बात का दिया आश्वासन कि इस तरह की प्रणाली लागू करने से पहले संबंधित पक्षों के साथ की जाएगी बातचीत। और विदेश एवं समाचारों में, भारत के गृह मंत्री अमित शाह ने पश्चिम बंगाल के नए मुख्यमंत्री का ऐलान कर दिया। बंगाल के नए मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी होंगे और इंग्लिश काउंसिल के प्रारंभिक नतीजों के मुताबिक रिफॉर्म की जीत हो रही है। एक बार फिर से इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत करते हैं और अब समाचार विस्तार से। एक टिकाऊ कृषि और कृषि डायवर्सिफिकेशन के लिए खाद्य सुरक्षा की राष्ट्रीय स्ट्रैटेजी के संदर्भ में कृषि उद्योग मंत्री डॉ. अरविंद बुलेल और जूनियर मंत्री फैब्रिस डेविड ने कल रोजवेल शुगर स्टेट का द्वारा संचालित कृषि जमीनों का दौरा किया। यहां पर जमीन तैयार की जा रही है, जहां पर मुख्य रूप से सब्जी पैदावार की जाएगी। 300 बीघा कृषि जमीन में से 150 खेतिहरों के लिए निर्धारित, साथ ही अन्य जमीनों पर ईख के गन्ने उगाए जाएंगे। लोगों से वापस जमीन की ओर जाने के अलावा उत्पादन से फसल तक सभी चरणों में मशीनीकरण पर जोर दिया जा रहा है, ताकि श्रम शक्ति खर्च कम किया जा सके। सिंचामुतु करुणा लालू।
2: खाद्य आत्मनिर्भरता हासिल करने के मकसद

0: से और ऑस्बेल्श एस्टेट ने अपनी कृषि भूमि, खासकर किसानों द्वारा छोड़ी गई जमीनों के बेहतर उपयोग की दिशा में कदम बढ़ाया है। लगभग 300 बीघा जमीन की पहचान की गई है, जिनमें से करीब 150 बीघा किसानों को सौंपे जाएंगे। बाकी में मुख्य रूप से आलू की खेती की जाएगी। 118 किसानों को जमीन प्राप्त हो चुकी है। मंत्री अरविंद बुले ने कहा, खाद्य आत्मनिर्भरता की बात करेंगे तो जमीन उपलब्ध होनी चाहिए, उसे तैयार करना चाहिए। खेतिहरों को कृषि जमीन दी जा रही है। इस पहल में मशीनीकरण की अहम भूमिका है, जमीन तैयार करने से लेकर फसल तक के लिए। डॉक्टर अरविंद बुलेल कहते हैं, एक मशीन उसकी टेक्नोलॉजी GPS के साथ ली जा रही है, जो दिन में 4 हेक्टेयर तैयार करेगी। इसके लिए संभवतः 75 लोगों की आवश्यकता होती। जूनियर मंत्री फैब्रिस डेविड ने कहा, एक लैंड बैंक कायम किया गया है। वैज्ञानिक अध्ययन की बदौलत एक लैंड स्विटेबिलिटी इंडेक्स भी तैयार किया गया है। ये जान सकेंगे कि कौन सी जमीन पर कौन सी खेती बेहतर होगी। किसानों की ओर से कुछ लोगों द्वारा खेती छोड़ने के बावजूद कई अभी इस क्षेत्र से जुड़े हैं। सूरज सुभन की तरह, जो 38 सालों से खेती करते हैं, कुल 50 बीघा पर खेती करते हैं, जिनमें से 25 बीघा रोजबेल में स्थित हैं। बाजार जाने वाले लोगों के बस्ते में टमाटर, आलू, प्याज होने चाहिए। हमारी मांग अधिक जमीन की है, ताकि रोपाई कर
1: सकें।
0: चेतन ने कहा, पढ़ाई करने के बावजूद मेरे पिताजी ने मुझे खेती बाड़ी करने की सलाह दी। आज खेती करता हूँ। आशा है सरकार हमें जमीन, ग्रांट और मशीन प्रदान करते रहे। कृषि भूमि के उपयोग के अलावा रोजबेल शुगर एस्टेट पिछले कई वर्षों से ऑर्किड की खेती में संलग्न है।
2: कृषि उद्योग खाद्य पदार्थ के क्षेत्र में ही रहते हैं। ईद उल अधा के लिए अंतर मंत्री समिति के नतीजे पर तय पहुंचे हैं। मांस का दाम किलो पीछे 186 रुपये तक तय किया गया है। आयातकों के मांगों के बावजूद प्रति किलो 220 रुपये की मांग कर रहे थे। मंत्री शकील मोहम्मद ने कहा कि तय दाम लोगों की खरीद शक्ति को बरकरार रखने के लिए है। ये कीमत तेहवर के 10 दिन बाद तक बरकरार रहेगी। अधिकारियों ने सख्त काबू रखने का वादा किया है। किसी भी तरह की ज्यादती न हो, ये भी ऐलान किया गया है कि मवेशियों के आयात के मोनोपोल को खत्म करने के कदम उठाए जाएंगे। मंत्री शाकिल मोहम्मद को सुनते हैं।
3: Le prix a été fixé par le gouvernement. Le prix initial qui était demandé par l'importateur, c'était de 220 roupies par kilo. Le gouvernement fin fait ce comité interministériel. Le gouvernement répète lui fin considère tout le prix.
0: सरकार द्वारा दाम निर्धारित किए जा चुके हैं। शुरू में 220 रुपये प्रति किलो की मांग की गई थी। सरकार की अंतरमंत्री बैठक लगाई गई और उसके द्वारा सभी दामों को लिखा गया, सभी लागत को भी, और तब ये फैसला लिया गया कि इसे 186 रुपये प्रति किलो होने चाहिए। भावी ईद उल अधा के लिए हमने एक उचित तरीका अपनाया है। हम सोचते हैं कि हद से ज़्यादा लाभ कमाने की ज़रूरत नहीं। सभी लागत को हमने देखा है, पहले ऐसा कभी नहीं किया गया, और तब हमने मैक्सिमम मार्कअप निर्धारित किया। चाहे लोग नाखुश होते हैं, लेकिन सरकार अपनी स्थिति पर बनी रहेगी, राय नहीं बदली जाएगी। कुछ लोग कहेंगे कि मुनाफा काफ़ी नहीं, कई बहाने होंगे, ये उनकी राय होगी, वे स्वतंत्र होंगे, लेकिन कानून का पालन होना चाहिए। यदि ऐसा नहीं किया गया तो अगली बार परमिट जारी करते वक्त इसे ध्यान में रखा जाएगा। मत भूलना चाहिए कि सरकार का मकसद सब प्रकार की अति को रोकना है, चाहे ग्राहकों को लेकर हो या फिर आयातकों को लेकर।
3: Parce que nous n'oublions pas que l'objectif principal du gouvernement c'est de pas autoriser toutes sortes d'abus que ce soit vers le consommateur que ce soit vers l'importateur. On a choisi and middle ground.
2: निवारण करुणा लालू का रहा। आगे समाचारों को बढ़ाती है, अब स्वास्थ्य की बात करती है। कौंदस स्थित विक्टोरिया अस्पताल में कैंसर के इलाज कर रहे मरीजों के लिए यह खबर। बता दें कि अभी के लिए रेडियोथेरापी विभाग बंद।

0: है रेडिएशन सेफ्टी एंड न्यूक्लियर ऑथोरिटी की ओर से इस सिलसिले में एक प्रोहिबिशन ऑर्डर जारी किया गया और तुरंत के लिए इसे बंद कर दिया गया। जांच रिपोर्ट में इस बात का उल्लेख है कि रेडियो एक्टिव संबंधी इलाज से जुड़ी अपर्याप्त सुरक्षा कदमों के चलते लोगों और पर्यावरण को काफी खतरे हो सकते हैं। जिन मरीजों को कैंसर के लिए इलाज की जरूरत है उन्हें अब से सल्फेरोनियो का नेशनल कैंसर सेंटर की ओर भेजा जाएगा। कुणाल गोजी, करुणा लालू।
1: रेडियोथेरेपी का उपयोग कैंसर के उपचार में व्यापक रूप से किया जाता है। इसमें एक्सरे, गामा किरणों और अन्य किरणों का इस्तेमाल कर ट्यूमर कोशिकाओं को नष्ट किया जाता है। ये उपचार पद्धति अक्सर सर्जरी या कीमोथेरेपी के साथ मिलाकर दी जाती है। विक्टोरिया अस्पताल के रेडियोथेरेपी विभाग के बंद होने के बाद नेशनल कैंसर सेंटर की विभिन्न इकाइयों ने उपचार सुचारू रूप से जारी रखने के लिए विशेष व्यवस्था लागू की है। डॉक्टर एस प्रसाद चुरमुनी ने कहा, फ्लेक्सी टाइम पर काम किया जिस पर स्वीकृति मिल चुकी है, यानी कि एक रेडिएशन टेक्नोलॉजिस्ट और एक मेडिकल फिजिसिस्ट सुबह 7 से रात 7 बजे तक काम करेंगे, यानी सभी मरीजों को अपना इलाज प्राप्त होगा। चिकित्सकों के अनुसार स्टाफ और मरीजों की सुरक्षा सुनिश्चित की गई है। संजय बिहारी ने कहा, जब एक्सरे किया जाता है, इलाज किया जाता है, तो स्कैटर्ड रेज निकलती हैं जिन्हें डिटेक्ट कर रखा जाता है। हर 3 महीने इसे फिजिसिस्ट को भेजा जाता है, वे देखते हैं कि कितना डोज दिया गया है, इसमें सीमा है, हमेशा ये नीचे रहता है। दो बंद दरवाजे, 60 से 45 सेंटीमीटर मोटी मजबूत कंक्रीट की दीवारें, बेसमेंट जहां रेडियोएक्टिव चीज़ों का इस्तेमाल करके इलाज किया जाता है, जिस पर कड़ा नियंत्रण रहता है।
2: मशीन लैम इन मैन केसिंग लेड लाइडों मैन लेड केसिंग
1: वरिष्ठ मेडिकल फिजिसिस्ट मौशी जगन्नाथ बोराम बोली ने कहा, इसमें लेड केसिंग है जिससे इस मशीन के चारों ओर रेडिएशन बहुत कम है। सुरक्षा के कई चरण हैं। नेशनल कैंसर सेंटर में लगभग 40 कर्मचारी कार्यरत हैं और यहां प्रतिदिन औसत 70 मरीजों का उपचार किया जाता है। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार इस वर्ष जनवरी से अब तक कैंसर के लगभग 3,000 नए मरीज पंजीकृत किए गए हैं, जबकि पिछले वर्ष ये संख्या पूरे साल लगभग 2,400 थी।
0: सुर्खियों में हम इसका उल्लेख कर रहे थे, कुछ पदार्थों के दामों में बदलाव बरकरार है, चाहे सब्सिडी भी प्राप्त हो रही हो तब भी। इन बदलावों के पीछे कई मुद्दे जुड़े हुए हैं, विनिमय दर से लेकर फ्रेट का दाम, स्टॉक की उपलब्धता आदि। व्यवसाय मंत्रालय की तरफ से इन सब का हिसाब किया जाता है। यासिन दैन महमूद की रिपोर्ट पर विवरण पूजा सुकालू।
3: 65.70 रुपए ये लक्की स्टॉक के हरे डिब्बे की कीमत है जो मंत्रालय द्वारा तय की गई है। अप्रैल महीने में ये 64.20 रुपए में बिक रहा था। कई अन्य सब्सिडी वाले उत्पादों की तरह कीमतों में बदलाव दिख रहा है। आज 1 लीटर का रीना तेल 63.92 रुपए में बिक रहा है, जबकि फरवरी में इसकी कीमत 69.70 रुपए थी। यही स्थिति 1 किलो वाला फार्मलैंड पैकेट दूध का है। मार्च में इसकी कीमत 269.29 रुपए थी, जबकि आज ये 252.56 रुपए में बिक रहा है। एक्सचेंज रेट के अलावा अन्य पहलुओं को ध्यान में रखा जा रहा है। वर्तमान में लागू नियम के तहत हर खेप की अलग कीमत हो सकती है। अधिकतम बिक्री कीमतें निर्धारित करने का काम व्यापार मंत्रालय की प्राइस मॉनिटोरिंग डिवीजन द्वारा किया जाता है। दाम को सबसे ज्यादा प्रभावित करने वाले तथ्यों में फ्रेट प्रमुख

0: Avant le conflit, disons une frette depuis le Canada, depuis Jebel Ali, c'est environ 2 000 $. Et il finit augmenté par à peu près 215%. Mais cela dit, ce qu'on nous guette ailleurs, par exemple de Chine, l'ICA finit augmenté environ 22 à 27% en 20 pieds. De l'Inde, il est un peu plus bas, 8 à 10% le 20 pieds. Donc, à dire que depuis l'Europe, par exemple, pas fini aucune augmentation de fret, mais les lignes ajoutent une surcharge qui est à la hauteur de 10%. Et il y a impacté directement le coût de la marchandise qu'un importateur fait à venir.
1: इसके अलावा सब्सिडी वाले उत्पादों की एक नई सूची पहले से तैयार है।
2: La liste là bien intéressant. Donc valeur du jour c'est que nous capables dire où nous n'allons demander feu vert ministère finance. Nous attendons ce feu vert dès que nous gagnons feu vert, c'est-à-dire no objection du ministère des finances, là nous parlons au cabinet.
1: इस बात की भी घोषणा की गई है कि कीमतों पर बेहतर नियंत्रण और प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित करने के लिए एसटीसी कई अन्य बुनियादी उत्पादों का आयात करेगी।
3: इक्वल अपॉर्चुनिटीज कमीशन ने नादरा अमीर और मुशीरा अब्दुल्लाही तथा उनके पुराने मालिक के खिलाफ मामले में अपनी रिपोर्ट प्रकाशित की है। इक्वल अपॉर्चुनिटीज कमीशन ने निष्कर्ष निकाला कि ये दोनों महिलाएं भेदभाव की शिकार हुई हैं। 2025 के जून महीने में हिजाब पहनने की वजह से उन्हें सस्पेंड कर दिया गया था। इसके बाद इनसबोर्डिनेशन को लेकर उन्हें नौकरी से हटा दिया गया था। काप मलेरे में कापलिस वॉर शेल्टर के मैनेजमेंट की ओर से बताया जा रहा है कि वहां पर खाद्य सुरक्षा तथा साफ सफाई और किस्म को लेकर नियंत्रण प्रक्रियाएं बढ़ाई जा रही है। जेंडर इक्वालिटी मंत्रालय द्वारा कल प्रकाशित एक विज्ञप्ति में ये बात सामने आई। शेल्टर में रहने वालों के लिए निर्धारित भोजन परोसे जाने में बर्गर ब्रेड खराब होने के तथाकथित आरोप मिलने पर सोशल नेटवर्क पर चित्र दिखाए गए, जिसके बाद ये मामला सामने आया, प्रतिक्रियाएं सामने आई। इसके अलावा विज्ञप्ति में ये भी बताया गया कि मामले को योग्य अधिकारियों के हवाले किया गया है, जैसे कि पुलिस और रिवियर जगहों पर स्थित सैनिटरी दफ्तर। कल बोपलों के एक पंप स्टेशन में चलाई गई कार्रवाई के बाद दो संदिग्ध लोगों को हिरासत में लिया गया, जिनके पास से भारी मात्रा में मादक द्रव्य बरामद हुए। पुलिस ने गाड़ी को रोका जिसे निकोला कौशी चला रहे थे। उनकी मॉरिशन एवं फ्रांसीसी दोहरी नागरिकता है। गाड़ी में अफसरों को 146 ग्राम से अधिक के तथाकथित हेरोइंस मिले, ड्रग के कई पैकेट भी मिले और साथ में कैलिबर 12 की बंदूक भी। संदिग्ध व्यक्ति गुडलैंड्स के रहने वाले एक वॉचमैन जॉन इमिलियो बंदूक के साथ था। उसके बाद जांचकर्ताओं ने पेरेबिया में निकोला कांजी के घर पर छापा मारा। वहां से गांजा और हेरोइन के कई पैकेट्स मिले। इसके बाद एक इलेक्ट्रॉनिक तराजू भी, जिस पर मादक द्रव्य के निशान थे। दूसरे संदिग्ध के यहां पुलिस के को शस्त्र और कैलिबर 12 की गोलियां भी मिली। संदिग्ध व्यक्ति ने जिस गाड़ी का इस्तेमाल किया था उसे भी जब्त कर दिया गया। बरामद मादक द्रव्य की लागत 2.7 मिलियन रुपए से अधिक की बताई जाती है। घान रिवियर नॉर्थ वेस्ट के कैदखाने में पेश आई हादसे के बाद एक जांच शुरू की गई। दो कैदियों पर अस्थायी आरोप है कि उन्होंने एक अन्य कैदी को पीटा, उस पर हमला किया। 46 वर्षीय व्यक्ति को चेहरे पर चोट लगी। कैदखाने के एजेंट जल्द ही स्थिति को नियंत्रित करने पहुंचे। साथ ही अन्य दो कैदियों पर अन्यों ने हमला किया। कैदियों की मेडिकल यूनिट की ओर से 3 घायल लोगों को संभाला गया, फिर इलाज के लिए उन्हें रोजबेल स्थित जवाहरलाल नेहरू अस्पताल ले जाया गया। चलिए अब स्विमिंग तैराकी स्कोर की बात करते हैं। ये युवा एवं खेल मंत्रालय की पहल है जो मॉरिशस स्पोर्ट्स काउंसिल की ओर से संचालित मूल ढांचों के माध्यम से प्राथमिक और माध्यमिक स्कूलों के बच्चों को तैरने के लिए उन्हें प्रोत्साहित करना चाहता है। देश के 4 स्विमिंग पूल से संबंधित 18 मई मादालबेया, पावियों का ट्रोबोन, रिविया जोरांपा और बोबासाई स्थित सेर्ज अल्फ्रेड स्विमिंग पूल। 7 और 17 वर्ष की उम्र के बीच के बच्चे इससे संबंधित होंगे। बता दें कि 3 चरणों में ट्रेनिंग निर्धारित है और 24 सेशंस होंगे। संबंधित वेबसाइट पर 13 और 14 मई को रजिस्ट्रेशन होंगे। और अब ये खबर सुर्खियों में इसकी चर्चा कर रहे थे। सरकारी विभाग में वर्क फ्रॉम होम का ऐलान किए जाने से संबंधित एक सर्कुलर जारी किया गया और कुछ ही समय बाद इसे हटा भी दिया गया। इससे काफी कन्फ्यूजन पैदा हो गया। मंत्रालय की तरफ से कहा जा रहा है कि मंत्रालयों और अर्ध सरकारी विभागों में इस दस्तावेज को भेजे जाने से पहले किसी भी प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया। सार्वजनिक सेवा मंत्री राज पंचा ने इस बात का आश्वासन दिया कि इस तरह की प्रणाली कायम करने से पहले संबंधित पक्षों के साथ बातचीत की जाएगी। यासिंदन महमूद, करुणा लालू।
4: ये सर्कुलर बिना किसी आधिकारिक अनुमति के जारी किया गया था। सिविल सेवा मंत्री राज पंत्या ने कहा कि इस प्रकार का कोई भी निर्णय पहले मंत्रालय स्तर पर इस पर विस्तार से अध्ययन किया जाता है, उसके बाद मंजूरी के लिए मंत्री परिषद में पेश किया जाता है। इस मामले में आवश्यक प्रक्रियाओं का पालन नहीं किया गया।
5: इसे
4: समर्थित करने के लिए कोई भी नीति नहीं। जांच के बाद कि चूंकि कोई पॉलिसी डिसीजन नहीं है, इसे हटाना चाहिए और आवश्यकताएं पूरी की जानी चाहिए। इस संबंध में किसी निर्णय से पहले श्रमिक संघ और सरकारी कर्मचारियों के साथ परामर्श किया जाना चाहिए। एक ऐसा फैसला जिससे 58,000 सरकारी कर्मचारी सीधे रूप से प्रभावित होते हैं, उनका परिवार भी, इस बारे में ठीक से विचार करना चाहिए। उसे लागू करने से पूर्व गहरा विचार विमर्श करना चाहिए ताकि वो स्वीकार्य हो। मंत्री राज पंत्या ने कहा कि इस विषय पर एक प्रारंभिक बैठक पहले ही हो चुकी है, लेकिन आगे की चर्चाओं के बिना कोई निर्णय नहीं लिया जाएगा। साथ ही मंत्रालय द्वारा ऊर्जा बचत के लिए अल्पकालिक उपाय पहले से ही लागू किए गए हैं।
3: बढ़ते हैं विदेशी समाचारों की ओर। भारत में विधानसभा चुनाव में मिली प्रचंड जीत के 4 दिन बाद आज बंगाल को भाजपा का पहला मुख्यमंत्री मिल गया है। बंगाल के नए मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी होंगे। शुभेंदु अधिकारी को विधायक दल का नेता चुन लिया गया है। गृह मंत्री अमित शाह ने बंगाल के सीएम के लिए शुभेंदु अधिकारी के नाम का ऐलान किया। विवरण सुमेरा अकबर अली।
6: आसाम में ऐतिहासिक राजनीतिक पड़ाव को मनाया जा रहा है। शपथ ग्रहण समारोह 12 मई के लिए निर्धारित है, जिसमें भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी भाग लेने वाले हैं। अन्य वरिष्ठ बीजेपी नेता भी मौजूद रहेंगे।
7: वोट टेकिंग सेरेमनी 12 मई को होगा, 11 बजे होगा। मुख्य अतिथि के रूप में आदरणीय प्रधानमंत्री श्रीयुत नरेंद्र मोदी जी उपस्थित रहेंगे। जो प्रमुख हस्तियां है, सभी के उपस्थिति में खानापाड़ा फील्ड में शपथ ग्रहण अनुष्ठान आयोजित किया जाएगा।
6: पश्चिम बंगाल में प्रांतीय मंत्री परिषद को भंग कर दिया गया, बावजूद ये कि ममता बनर्जी ने हार के बाद मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने से इनकार किया। अब शनिवार को भव्य शपथ ग्रहण समारोह लगाया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के संचालक भाग लेंगे। केरल में अभी तक लीडरशिप को लेकर विचार विमर्श किए जा रहे हैं। मुख्य मंत्रालय की जिम्मेदारी किसको सौंपी जाए, लगातार 3 दिनों के लिए सलाह मशवरे जारी है। सबने कहा कि हाई कमांड को फैसला लेना होगा। ऑब्जर्वर दोबारा दिल्ली जाएंगे और हाई कमांड को रिपोर्ट देंगे।
8: ऑब्जर्वर्स विल गो बैक टू दिल्ली एंड दे विल स्पीक टू द हाई कमांड एंड रिपोर्ट, दे विल गिव देयर रिपोर्ट्स।
6: तमिलनाडु में तमिलगा वेत्री कालागम की भारी जीत के बाद अब बाकी की सीटें समेटने की कोशिश की जा रही है। टीवीके को और सिर्फ 5 सीटें चाहिए ताकि वो सरकार बना सके। इसी मकसद से छोटी पार्टियों और स्वतंत्र उम्मीदवारों से बातचीत की जा रही है। विजय की पार्टी के साथ 5 निर्वाचित उम्मीदवार जुड़ चुके हैं। टीवीके के पास अभी 113 सीटें हैं। सरकार बनाने के लिए 118 सीटें जरूरी हैं। ईमेल और अन्य संचार माध्यमों से हमने पार्टियों से रابطہ कायम किया और उनके समर्थन की मांग की। बड़ी घोषणा करने से पहले सलाहकारी बैठक लगाएंगे। कई राज्यों में यही सिलसिला है। मुख्यमंत्री और मंत्रियों की नियुक्ति के सिलसिले में अहम फैसले लिए जा रहे हैं।
3: और एक बार फिर से चुनावों की ही बात करते हैं। इंग्लैंड में इंग्लिश काउंसिल के प्रारंभिक नतीजों के मुताबिक रिफॉर्म की जीत हो रही है। ब्रिटेन के मौजूदा प्रधानमंत्री खैर स्टॉमर ने कहा कि वे जाएंगे नहीं। पूर्व लेबर गढ़ में रिफॉर्म सीट जीत रही है। अभी तक इंग्लैंड में 50 काउंसिल की ओर से नतीजे घोषित किए गए हैं, अभी भी 86 के नतीजे बाकी हैं। विजय दिवस पूरे यूरोप के लिए एक ऐतिहासिक पल दर्शाता है। 8 मई 1945 को नाजी जर्मनी ने अपनी हार स्वीकार करते हुए समर्पण

0: पर दस्तखत किए थे। इस जीत के साथ कई सालों तक चली जंग का खात्मा हुआ। फ्रांस में लोगों ने आज़ादी और शांति की वापसी का जश्न मनाया। तब से ये तारीख हिम्मत, याद और आने वाली पीढ़ियों के लिए उम्मीद का प्रतीक बनी हुई है। ये दिन उन लाखों लोगों को श्रद्धांजलि देता है जिन्होंने युद्ध के दौरान दुख और कष्ट सहे, साथ ही उन सिपाहियों को भी जो आज़ादी और शांति के लिए लड़े। स्पेन में स्वास्थ्य मंत्रालय ने नए आपात कदम लागू किए हैं। कैनारी टापुओं में हंटा वायरस के चलते स्वास्थ्य चेतावनी जारी की गई है। एमवी हॉन्जियस जहाज पर उच्च निगरानी रखी जा रही है क्योंकि संक्रमण के कई शकी मामले, संदिग्ध मामले पाए जा रहे हैं। जहाज पर 5 मामलों की पुष्टि की गई है। इस बीच विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहा कि इंक्यूबेशन अवधि के दौरान और संक्रमित मामले सामने आ सकते हैं। WHO ने निदेशक पेड्रोस अदानोम को सुनते हैं। विवरण सुमेरा बरली।
1: विश्व स्वास्थ्य संगठन के पास पूरी रिपोर्ट है, कितने लोगों में संक्रमण के संकेत पाए जा रहे हैं, किसने संक्रमित यात्रियों से बात की या उनके करीब रहा। हम संबद्ध अधिकारियों के साथ सीधे तौर पर राबता कायम कर रहे हैं। संक्रमित होने के बाद इंक्यूबेशन अवधि 6 हफ्तों की है। इस समय के दौरान और मामले सामने आ सकते हैं। ये एक संगीन घटना है।
0: मौसम संबंधी जानकारियां कुछ इस प्रकार हैं। मॉरिशस के लिए आज रात 10 बजे से ऊंची लहर उठने की चेतावनी जारी की गई है, जो रविवार 10 मई 2026 को सुबह 4 बजे तक लागू है। दक्षिण पूर्व की ओर से बड़े ही कमजोर दबाव वाली हवा के साथ जो बादल जुड़े हैं वे आज रात से हमारे स्थानीय मौसम को प्रभावित करने लगेंगे। अगले 24 घंटों के लिए अनुमान लगाया जाता है कि आज रात धीरे धीरे बादल घिरने लगेंगे और रहकर बारिश होती रहेगी, मुख्य रूप से देश के पूर्वी इलाके, दक्षिणी इलाके और सेंट्रल प्लाटू पर। ऊंचाइयों पर कोहरे छाए रहेंगे। टापू भर में कल मौसम बरसाती ही रहेगा और ऊंचाइयों पर कोहरे छाए रहेंगे। पूर्व दक्षिण पूर्व की ओर से 20 से 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलेगी, जिनके झोंके 60 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच सकते हैं कुछ इलाकों में। समुद्र खराब रहेगा, धीरे धीरे ज्यादा खराब होने लगेगा। 4 मीटर ऊंची लहरें उठेंगी और ये ऊंची लहरें पश्चिमी एवं दक्षिणी लगुनों तटीय इलाकों तक भी पहुंच सकते हैं, खासकर ज्वार भाटे के दौरान। इसीलिए मच्छरों, प्लेजर क्राफ्ट चलाने वालों और आम जनता को सलाह दी जाती है, मांग की जाती है कि दूर समुद्र में ज्वार भाटे के दौरान ना निकले और समुद्र तटों के पास ना जाएं। तापमान सेंट्रल प्लाटू पर न्यूनतम तापमान 18 और 20 डिग्री सेल्सियस के बीच, अधिकतम 22 और 25 डिग्री सेल्सियस के बीच। तटवर्ती इलाकों पर न्यूनतम तापमान 22 और 25 डिग्री सेल्सियस के बीच, अधिकतम 27 एवं 29 डिग्री सेल्सियस के बीच। शाम 5:44 पर सूर्यास्त, जबकि सुबह 6:28 पर सूर्योदय।

0: मौसम संबंधी नई जानकारियों के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। आपने ध्यान दिया इसके लिए बहुत धन्यवाद। साथ ही धन्यवाद कहेंगे अपने तकनीकी सहयोगियों फैजन और लोविशा को। कुछ ही समय में शोक समाचार।
1: Your news on NBC Play, NBC Play, NBCRadio.tv, NBCRadio.tv.
0: नंबर 77 मोसेलमो ओबन बॉम्बू में, नंबर 77 मोसेलमो ओबन बॉम्बू में 85 साल के 85 ईयर्स ओल्ड के श्री महादेव कहानू जो जिसे नाम से भी जाने जाते थे की मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थ कल सुबह साढ़े नौ बजे उनके घर नंबर 77 मोसेलमो ओबन बॉम्बू से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए सेंसोवे बॉम्बू की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुमरो एट हाफ पास्ट 9 AM। नंबर 94 पियतों पेलावाल सेंट क्वा में, नंबर 94 पियतों पेलावाल सेंट क्वा में 88 साल के 88 ईयर्स ओल्ड की श्रीमती सत्यज रशन पैदाशी नाम रामनोथ जो रानी नाम से भी जानी जाती थी की

9 years old की श्रीमती बिद्वंती मधु, श्रीमती बिद्वंती मधु पैदाशी नाम सोहन जो वंती नाम से भी जानी जाती थी की मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थे कल सुबह 10 बजे उनके बेटे श्री संजय मधु के घर जानकी स्थित पुतोदो विलाज से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए बेलमो पुतोदो विलाज की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुमरो एट 10 AM। नंबर 31 सेंट फामी रोड सेंट क्वा में, साल के 64 ईयर्स ओल्ड के श्री कुमार नेओल जो दत्त नाम से भी जाने जाते थे की मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थ है कल सुबह 10 बजे उनके घर नंबर 31 सेंट फामी रोड सेंट क्वा से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए वाली दिपत की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुमरो एट 10 AM। फर्स्ट रोड फोंचीसाक में 44 ईयर्स ओल्ड की श्रीमती दनिशा रघुबीर पैदाशी नाम निरंजन जो सुनंदा नाम से भी जानी जाती थी की मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थ है कल सुबह साढ़े दस बजे उनके घर फर्स्ट रोड फोंचीसाक से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए फोंचीसाक की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुमरो एट 10:30 AM। रॉयल रोड थ्रू दो दूस में 84 साल के 84 ईयर्स ओल्ड की श्रीमती कुलमंती बिखारी पैदाशी नाम होलमन और जो मानती नाम से भी जानी जाती थी और पहले ट्वेस्क होटल में काम करती थी की मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थ है कल दिन के 11 बजे उनके बेटे श्री शैलेश भिखारी के घर रॉयल रोड थ्रोदोदूस से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए थ्रोदोदूस की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रोमेशन टुमरो 8:11 AM। जोली स्ट्रीट 400 में 49 साल के 49 ईयर्स ओल्ड की श्रीमती सुविना द्वारका प्रसाद पैदाशी नाम मंगुत्रोय की मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी बाद में उनके पति श्री शरद चंद द्वारका प्रसाद के घर जोली स्ट्रीट 400 से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए दुफ्रे की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। शमे शांतिनी जंती सैप्य में 82 साल के 82 ईयर्स ओल्ड के श्री तगुमन महादिया जो जैक्सन नाम से भी जानी जाती थी की मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थ है कल दिन के साढ़े बारह बजे उनकी पत्नी ललिता देवी महादिया के घर श्रीमय शांतिनी जंती सैप्य से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए सेकोस्तान सैप्य की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रोमेशन टुमरो एट 9:30 AM। Avenue Guy Rosemont, Trèfle-Rosilmé, 67 साल के 67 ईयर्स ओल्ड की श्रीमती पुष्पा बिसेसर जो रीता नाम से भी जानी जाती थी की मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थ है कल दिन के सवा एक बजे उनके घर Avenue Guy Rosemont, Trèfle-Rosil से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए कॉलिवियर रोजिल की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रोमेशन टुमरो एट 1:15 PM। पाल्मा रोड कैटरबोन में 77 साल के 77 ईयर्स ओल्ड की श्रीमती पुष्पा माला बूतन पैदाशी नाम राम जो मीला नाम से भी जानी जाती थी की मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थ है कल दिन के सवा एक बजे उनके घर पाल्मा रोड कैटरबोन से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए पाल्मा गांधी की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रोमेशन टुमरो 8:15 PM। फेलिक्स देवाटोर शांडेमा स्पोर्ट लुइस में 70 साल के 70 ईयर्स ओल्ड के श्री बिपिन रोही जो बिपिन नाम से भी जाने जाते थे की मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थ है कल दिन के दो बजे उनके घर फेलिक्स देवाटोर शांडेमा स्पोर्ट लुइस से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए थॉकबाओ की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रोमेशन टुमरो 8:00 PM। रोथ रॉयल टेयर रूज में 73 साल के 73 ईयर्स ओल्ड के श्री रामेश्वर गिरधारी जो रमेश बाजौ नाम से भी जाने जाते थे की मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी अगले रविवार 10 मई को सुबह साढ़े नौ बजे
उनकी पत्नी श्रीमती माला देवी गिरधारी के घर गुतवायाल तेहोश से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए बुआ मौशों की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रमेशन ऑन संडे नेक्स्ट।

0: 10th of May at 9:30 a.m. Number 9, Rue La Renaissance. Number 59-120, France May. 72 साल के 72 years old की श्रीमती चित्रलेखा गिरधारी, श्रीमती चित्रलेखा गिरधारी जो अनीता नाम से भी जानी जाती थी और पहले ली बेतो वाकवा रहती थी, की मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी अगले सोमवार 11 मई को दिन के 2:15 उनके घर नंबर 9 रुई दे ला रेनेसांस लॉस फ्रांस से उठाकर उनका अंतिम संस्कार एली लील ऑफ फ्रांस में ही किया जाएगा। मोरा पे चित्रिविया में 62 साल के 62 years old के श्री महेश्वर सिंह लक्ष्मण जो पिपित नाम से भी जाने जाते थे की मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी अगले मंगलवार 12 मई को मोरा पे चित्रिविया से उठाकर दिन के 10 बजे तेमिनिस त्रियोले की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन ऑन ट्यूजडे नेक्स्ट 12th of May at 10 a.m. शुक मेरुवीन सभी परिवारों के साथ हमारी दिली हमदर्दी है।
1: ये है रेडियो मॉरिशस।

0: MBC Radio 24 hours a day.
1: सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड द्वारा जारी चंदा विज्ञप्ति सुनिए। सीईबी अपने ग्राहकों को सूचित करता है कि इन जगहों में बिजली की आपूर्ति में कटौती लाई जाएगी। रविवार 10 मई 2026 को सीटी मौसियाल प्लान व्यत में विशेषकर रुई लातेनिये इंडियन आजी साक दुरियाऊ तथा लागुट मिलिटिया के एक हिस्से में सुबह 8:30 बजे से दोपहर के 2 बजे के बीच शनिवार 9 मई 2026 को पेरेबेर में विशेषकर काजा फ्लोरिडा रोड तथा कालेंडावेल्यू रोड में सुबह 8:30 बजे से दोपहर के 3 बजे के बीच रविवार 10 मई 2026 को एस्पेरेंस ट्रेबुशे में विशेषकर वीआरएस पुत्र दो आमलेट बाजाल्ट पुत्र दो व मैडम बॉब रोड में सुबह 8:30 बजे से दोपहर के 3 बजे के बीच और रविवार 10 मई को ही पॉइंट कानूनी में विशेषकर रुकुस्टाल रुकासगुन ला पॉइंट लग्जरी लिमिटेड फेज 2 में सुबह 8 बजे से दोपहर के 3 बजे के बीच मरम्मत कार्यों के बाद बिना पूर्व सूचित के बिजली की आपूर्ति पुनः जारी की जाएगी। इस कटौती के कारण सीबी क्षमा प्रार्थी है।
2: रेडियो मॉरिशस
3: 800 किलोहर्ट्ज़ पर ये है रेडियो मॉरिशस।
2: रेडियो मॉरिशस
3: रेडियो मॉरिशस

0: रेडियो मॉरिशस
1: 800 किलो हर्ट्ज पर ये है रेडियो मॉरिशस।
0: रेडियो मॉरिशस,
1: रेडियो मॉरिशस।
2: बजली प्रभु का नाम रेडियो मॉरिशस के लहरों पर।
3: भजले प्रभु का नाम। नमस्कार श्रोताओं, श्रोताओं ईश्वर का नाम जब लेते हैं ना, तो ये मन चित्त अहंकार सब जैसे कहीं डूबने लगते हैं। प्रभु का नाम एक बहुत बड़ी ताकत है, इसीलिए ईशोपनिषद कहता है कि वह पूर्ण है। यह भी पूर्ण है क्योंकि पूर्ण में से ही पूर्ण की उत्पत्ति होती है। पूर्ण में से पूर्ण को निकाला तो भी पूर्ण ही बच जाता है। और वैदिक कहता है ईशोपनिषदकार, ओम शांति शांति शांति, अर्थात पूरा संसार उसी का रूप है। वह पूर्ण रूप है, उसमें से कुछ निकाला तो वह भी पूर्ण है। हम आत्म तत्व को समझते नहीं, जिस दिन उसे समझ लेते हैं पूरा जीवन ही बदल जाता है। हम उस पूर्ण से मिलकर पूर्णता की ओर बढ़ जाते हैं। तो ये जो महावाक्य है कि वह पूर्ण है, चहुं ओर पूर्णता है, अद्भुत है ये, क्योंकि ये हमारे सिस्टम को पूरी तरह से बदल देता है। हमारे धर्म का आधार ही यह है कि परमात्मा का मैं अंश हूँ, लेकिन वह सारी शक्तियाँ मुझ में भी हैं क्योंकि मैं आत्मा हूँ। लेकिन यदि मैं शरीर रूप हो जाती हूँ तो पूर्ण नहीं हूँ, क्योंकि शरीर तो इच्छाओं के मुताबिक चलता है। लेकिन आत्म तत्व जो है वो हमें ज्ञान का प्रकाश देता है। तो सूर्य की किरणें भी पूर्ण हैं, और यदि वे किरणें धूप बनकर बिखरती हैं तो वे भी पूर्ण उसी का ही अंश होती हैं। तो श्रोताओं, वास्तव में वह जो प्रभु का नाम है वह हमको उस पूर्णता का एहसास करवाता है। आइए इस भजन को सुनते हैं।

हमारे यहाँ पर दिया लेकर कुछ खोजने की जरूरत नहीं होती है। यहाँ पर तो जीवन में अंधकार हो सकता है, अज्ञान का हो सकता है, संकट का हो सकता है और हमारी बेवकूफियों का भी हो सकता है, लेकिन अचानक एक बिजली कौंध जाती है, बस जीवन ही बदल जाता है। आप सभी को याद होगा, गौतम बुद्ध जंगल से गुजर रहे थे। उस जंगल में अंगुली माल नाम का एक डाकू रहता था। जो भी वहां से जाता था उसकी एक अंगुली काट के अपनी माला में पिरो लेता था और उसे मार देता था। इतना आतंक था कि उस जंगल के रास्ते से कोई गुजरता ही नहीं था। लेकिन गौतम बुद्ध ठहरे सन्यासी, मस्त व्यक्ति, अपना चले जा रहे हैं। लोगों ने मना भी किया कि मत जाइए महाराज। उन्होंने कहा, सन्यासी के लिए क्या मत जाइए और क्या आ जाइए। वे जंगल की ओर बढ़ रहे थे तो अंगुली माल डाकू निकला। उसने कहा, तुम्हें डर नहीं लगता मैं कौन हूं? उन्होंने कहा, तुम भी एक व्यक्ति हो, मैं भी एक व्यक्ति हूं। अंगुली माल ने कहा, ठहर जाइए। गौतम बुद्ध ने कहा, लो मैं तो ठहर गया, तुम कब ठहरोगे? श्रोताओं, इस छोटे से वाक्य ने तुम कब ठहरोगे अंगुली माल का जीवन ही बदल दिया। उसने गले में पड़ी माला तोड़कर फेंक दी, बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा और कहने लगा, इतना ज्ञान का प्रकाश मैं क्या कर रहा था, आपने तो मुझे रास्ता दिखा दिया। और वह बौद्ध धर्म में दीक्षित हुआ, बौद्ध धर्म का उसने प्रचार प्रसार किया और जीवन में अहिंसक हो गया। यह है वो बिजली का कौंधना, अर्थात वह तत्व तो हैं लेकिन हम समझेंगे कब उसे। तो इसीलिए भारतीय धर्म में यही है कि आपके हृदय में कब वह चीज चुप जाए, कब आपको मिल जाए कि एक रेवोल्यूशन हो जाएगा। यह है धर्म कि आपके जीवन को वह बदल ही देता है, लेकिन शुरुआत होती है उस प्रभु के नाम से। तो आइए इस भजन को सुनते हैं।

तो संसार में सब कुछ है, अच्छा है बुरा है, पाप है पुण्य है, सुख है दुख है, दिन है अंधेरा है, धोखा है तो प्यार भी है, कृतज्ञता है कृतज्ञता भी है। लेकिन जो प्रभु से जुड़ जाता है वह अच्छे तत्वों को जोड़ता है अपने साथ, और यही अच्छे तत्व जुड़कर मुट्ठी बन जाते हैं और समाज में परिवर्तन लेकर आते हैं। इसीलिए इसकी शुरुआत भज ले प्रभु का नाम से होती है, जहाँ पर सारे तर्क खत्म हो जाते हैं कि ईश्वर का नाम और उसके गुण यही मेरी भक्ति का आधार है। आइए इस भजन को सुनते हैं।

श्रोताओं, जब ईश्वर का नाम लेते हैं ना, तो जो विवेक है, जो प्रज्ञा है, जो मेधा है, जो हमारी चिंतन की शक्ति है, वह जागृत होने लगती है। और यह जो शक्ति है, यह हमें सही और गलत का निर्णय करना सिखाती है। जैसे हंस नीर क्षीर विवेकी होता है, कहते हैं कि वह दूध दूध पी लेता है और जल छोड़ देता है। तो ठीक ऐसे ही जो व्यक्ति प्रभु नाम से जुड़ जाता है, उसके भीतर भी जो प्रज्ञा शक्ति प्रज्वलित होती है, उससे वह हमेशा सही राह पर चलता है, चाहे वह कितनी भी कठिन क्यों ना हो। इस राह पर महावीर स्वामी चले, गौतम बुद्ध चले, गांधी चले, कृष्ण चले, राम चले, अर्थात जिन्होंने भी समाज के हितार्थ कष्ट सहा, अपने जीवन के समय को दिया, वे सभी मानो उस परम शक्ति से जुड़े हुए थे। आइए इस भजन को सुनते हैं।

और अंत में श्रोताओं, जब पूर्ण से पूर्ण निकलता है तो शेष भी पूर्ण रह जाता है और जो निकलता है वह भी पूर्ण होता है। अर्थात हमारे भीतर भी परमात्मा की शक्तियां हैं, इसीलिए आत्मा जब कुछ विशेष गुणों से भर जाती है तो महान आत्मा महात्मा बन जाती है, और यही महात्मा बनकर जब वह महान कार्य करती है तो एक दिन परमात्मा में ही विलीन हो जाती है। तो आत्मा, महात्मा और परमात्मा, तो श्रोताओं, प्रभु से जुड़ने के बाद हम इन सब सीढ़ियों को पार करते हुए जिन शक्तियों को पहचान नहीं रहे थे उन्हें पहचानने लगते हैं, और संसार धीरे धीरे चलते चलते इन्हीं महान आत्माओं को भगवान कहने लग जाता है, क्योंकि उनके प्रयास से ही सबका भाग्य बदलता है। तो श्रोताओं, शुरू होता है भजले प्रभु का नाम। उस प्रभु के नाम से, उसके गुणों के स्तवन से ही भक्ति प्रारंभ होती है। तो आइए इस अंतिम भजन के साथ ही अलका धनपत और लुडोविक को अनुमति दीजिए। नमस्कार, शुभ रात्रि।

0: रेडियो मॉरिशस
1: 800 किलोहर्ट्ज़ पर ये है रेडियो मॉरिशस।
0: रेडियो मॉरिशस,
1: रेडियो मॉरिशस।
2: मीडियम वेव 819 किलोहर्ट्ज़ पर ये रेडियो मॉरिशस है। परवीज आपसे मुखातिब हैं। उम्मीद है अल्लाह रब्बुल आलमीन और नबी रहमत शफाए महशर मालिक दो जहां जनाब अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके आप तमाम सामीन खैर आफियत से हैं। जहां से भी आप हमारे साथ निभा रहे हैं, आपको दिल की गहराइयों से खुश आमदीद। तो आइए मज़ीद सामीन, उर्दू नशरियात बनाम महफिल शब का आगाज़ करते हैं एक खूबसूरत हमद कलाम के साथ, जो हमारे दिलों को रूहानियत और सुकून से भर दे। समात फरमाइए।

हम्द उस रब की जिसने जहाँ को सवारा, जर्रे जर्रे में अपना ही जलवा उतारा। ना इब्तिदा है जिसकी ना इंतहा कोई, वही अव्वल वही आखिर वही सहारा। शामिल मोहतरम, हज इस्लाम का पांचवा रुकन है, एक ऐसी इबादत जो इंसान को रूहानी बुलंदियों तक पहुंचाती है और उसे अपने रब के करीब कर देती है। शामिल मोहतरम, हज का आगाज़ अहराम बांधने से होता है, वो सादगी मसावात और आजिज़ी की इलामत है। अमीर व गरीब, बादशाह व फ़कीर, सब एक ही लिबास में अल्लाह के हुजूर खड़े होते हैं। ये मंजर हमें अख़वत और बराबरी का दर्स देता है।

मुसलमान खाना काबा का तवाफ करते हैं, जो अल्लाह की वहदानियत की इलामत है। सफ़ा और मरवा के दरमियान सही हमें हज़रत हाजरा रदियल्लाहु ताला की जदोजहद की याद दिलाती है। मैदान अराफात में वकूफ़ हज का सबसे अहम रुकन है, जहां इंसान अपने गुनाहों की मुआफ़ी मांगता है और अल्लाह से नई ज़िंदगी का अहद करता है। शामिल मोहतरम, हज हमें सब्र, कुर्बानी, नज़्म ज़ब्त और इखलास का सबक देता है। हज एक मुकम्मल तरबियत है, एक ऐसा सफ़र जो इंसान की ज़िंदगी बदल देता है। अल्लाह ताला हम सब को हज की सआदत नसीब फरमाए और हमें इसके मकासद को समझने और अपनी ज़िंदगी में अपनाने की तौफीक अता करें। आमीन। हमें भी अपनी दुआओं में शामिल करें। तकनीकी मदद रामा साहब की रही है, शुक्रगुजार है।

0: 7 days a week, 24 hours a day.
1: Live.
0: This is Radio Marxist.
2: भोजपुरी तड़का, भोजपुरी के स्वाद, संगीत के खुशबू, सुरेखा संगीत, भोजपुरी तड़का।

0: भोजपुरी तड़का,
1: भोजपुरी तड़का।
2: नमस्ते हमी के सब श्रोता लोग के, नमस्ते नमस्ते सब श्रोता लोग के, और इले क्या लाए जा हमी के भोजपुरी तड़का कार्यक्रम। भोजपुरी से तड़का लगाओ अब जहाँ स्वाद भोजपुरी की भाषा के मिली तो लोग के, और ये कर में तो लोग अपन फरमाइश के स्वाद भी जोड़ा जा, और ये ऐसा छोंक लगाओ अब जा कि तो हर भोजपुरी के जन प्रेम बा ये और बढ़ जाए। चले तो हर नाम करब जा तो हर पसंद के गाना हमी के कार्यक्रम में भाग लेबा जा, तो टेलीफोन करिया जा 5251700005 पर, मतलब एक पर मैसेज भेजे जा 5251700005 पर मैसेज भेजे जा, और इतने मैंने कर लिया जा 4028085 पर, और हमें तो हर मैसेजेस ले अब जा तोहर से तोहर को ले अब जा, और देख अब जा कौन गाना तो लोग पसंद करेला तोहरे पसंद के गाना चलाओ अब जा। हम ऐसे हो रहे का तोहर संगे संगे चलब, तोहर संगे संगे बढ़ब, और बढ़ते चली जा हमने गीत संगे संगीत संगे राजकमल चिंतामणि जी के गावली गीत संगे। ये गाना हमने बजवाए लज जा मानती जी के फरमाइश पर, का तो बोन से मानती जी मंगले हमारी गाना अपन बहन विद्या खातिर।

चला जा, संगे संगे चली जा, हमने भोजपुरी के दुनिया में चले जा, भोजपुरी के गीतवन के दुनिया में चली जा। अभी 9:21 हो बा, चल अभी सुहानी दीपा जी के गावाली गीतवा सुनी जाए। गाना हमने से मंगले हवन ललिता जी प्रियले से, ललिता कुशल जी गाना मंगले हवन अपन बहन लोग खातिर, उनकर बहन हवन देवयानी ज्ञानी और उनकर ये गाना मंगले हवन ललिता जी अपन संगतिया लोग खातिर, छोटी जी प्रभावती जी आत्माराम जी खातिर, हरीश जी खातिर और उषा लोकाना खातिर, सुखलाल मौसी खातिर और सब सुने वाला लोग खातिर। तो चलो सुनी जाए ये गीत हमने बिस्वानी दीपवा जी के गावल।

चला तने धिन तना सुनी जा हम नीरा जी मंगर जी के गावली गाना और ही गाना हमने बजवाए ला जा वीना जी के पसंद पर वीना जी का फुको से गाना मंगले हवन अपन पति रघु खातिर और अपन बेटा यादव खातिर ता चला सुनी जा हमने ई गाना राजीव मंगर जी के गावल हा चला तरी धिन तना हमने भी संगे संगे गाले ला जा।

और चला अभी कुछ हमने ज्ञान महिपत लाल जी के गावल गाना सुनी जा और ये गाना हमने सुनी जा आत्माराम जी के पसीन पर। आत्माराम जी गाना मंगला है वन अपन बहन ललिता खातिर, बहन छोटी जी खातिर, बहन प्रभावती जी और बहन सुदेवी जी खातिर। और ये गाना इसनु परिवार खातिर मंगला है वन बेलिया के।

और अब चले सुनी जा हमनी चमके चमका थोड़ा झुमका वो झुमका जो चमचमा चमचमकेला पसंदराज जलीम जी गाना सुनावा था वन और सुने खोजा था वन शांति जी तेगोसे। शांति जी गाना अपन पूरा मराठी परिवार खातिर मांगा था वन दागुचिया के और अपा दागुचिया के अपन भगीना ओम खातिर मांगा था वन हमने के पूरा टीम खातिर भी बहुत बहुत धन्यवाद शांति जी।

पाव के पैलिया अभी छमा छम बजते जाए बजते जाए। जुबेदा गाना सुन के चला हमने रामभराम तो हर जी के गावाली गाना सुनी जा। अब्बू जी के फरमाइश पर अब्बू जी गाना मंगले हवन हमने के पूरा टीम खातिर और आफेज आसलम आया जायान जाहिरा काला छोटी खातिर रईस खातिर और अप्पी और उनकर पत्नी खातिर।

दादा के कहानी, दादी के कहानी, चला सुनी जो हमने ये गाना रंभा, माफ करिए, गासन सिंगारों जी के गावल, ये गाना है गासन सिंगारों जी के गावल, और ये गीत हमसे मंगले हवन गायत्री जी नोवेल फ्रांस से, अपन मामी कल्याणी मोहन जी खातिर मायबू के, फिर अपन मौत आइलों के भाभी शकुंतला जी खातिर, अपन बेटा अजय खातिर नोवेल फ्रांस के, अपन संगत या गीता बाई जी खातिर, और यही गाना हमने फ्लिक ऑफ फ्लैग के अनीता जी के पसंद पर बजवावत हैं, जहाँ उनका सब संगत या लोग खातिर और उनका पूरा परिवार खातिर। और ये गाना हमने बजावत है जा गासन सिंगारों जी के गावल, ये गाना है हमने के पूर्वज लोग के आगमन पर आधारित, चला सुनी जा।

दादा दादी की कहानी सुनला के बाद चलम और दालबे के अनीता जी के पसंद पर करुणा अमृता और ईतू परिवार खातिर गोगा परिवार खातिर लाल जी परिवार खातिर बसंत सुपोल जी के गावाले को गाना सुनी जा और ई गाना तो बनाने के सुनी ला जा। चला अनीता जी के पसंद पर आज ही सुन ले ला जा।

चलो खसिया तो भागिएगा अभी मित्रो एक्सप्रेस में चढ़ के जाके ओकरा खोजी ला जा। मित्रो एक्सप्रेस खोला गाना हमने हरिपोल जी के गावल, महिन हरिपोल जी के गावल सुनब जा। और ये गाना हमने बजवाई ला जा मीराबाई दरमियान जी के पसीन पर मौदालबिया के। मौदालबिया से ये गाना मंगले हवन मीराबाई जी अपन बेटी दामाद खातिर, धर्मिया परिवार खातिर और पातिया परिवार खातिर।

यह बहल गौरी जी के गावल गाना है, एगो पुराना गाना सुने खोजत हवन अमृता जी। अमृता जी गणेश परिवार खातिर गाना मंगले हवन पीतों से, सोनिया परी मीनाक्षी और विशान खातिर।

0: भोजपुरी तड़का, भोजपुरी के स्वाद, संगीत के खुशबू, सुरेखा संगीत, भोजपुरी तड़का।
1: तड़का लगायला जे हमने फ्लोरियाल के वीना जी के पसीन के संगे संगे और चला सुनी जे हमने सुना नयन के गावल गाना।

चले जागे बढ़ते चले जाओ रे भोजपुरी तड़का कार्यक्रम में। अभी कुछ हमने सुनी जा संजय सिंह गुलाम जी के गावल गाना और ई गाना हमने बजा थे जब बोल दे एल्बम से लेवल गल्ला। और ई गाना में चांद जैसन मुखड़ा लो कहता हमने के गाना हमने से मंगले हवन संध्या जी रहलन कौफुखो और कौफुखो से गाना मंगले हवन संध्या जी अपन बहिन इंदिरा खातिर अपन बहिन रेणुका और बहिन माया खातिर।

0: भोजपुरी तड़का, भोजपुरी के स्वाद, संगीत के खुशबू, सुरेखा संगीत, भोजपुरी तड़का।
1: 10:19 हो गलबा और श्रीमती जी के पसंद के गाना हमने बजवावा था जा चंद्रदेव जीबो धन जी के गावल। श्रीमती जी सुयाक से गाना मंगले हवन चंद्रमुनि परिवार खातिर और लिस्का लिए के मोहित परिवार खातिर।

0: भोजपुरी तड़का,
1: भोजपुरी तड़का
2: चला तड़का लगाए ला जा। अब रिकुत हमनी राकेश परमेश्वर जी के गीत संगे चिंता ना करे के सलाह देवा था, और चिंता ना करे के सलाह मान ल। चिंता कर बजा तो बड़ी दुख हो जाला, बाकी कोनो कोनो चिंता रही ओकरा एगो तरह से अपन एगो समस्या के हल के तरह देखी जा। और ये जे हल खोज बजाता हल सब चीज के मिलेला, खोजला से सब हल मिलेला। चले ये गाना हमने बजवाए ला जा मनोज जी के पसीन पर। मनोज जी रहे लन प्लैंदे घोष, और ये गाना मंगले हवन अपन पत्नी सीता खातिर, अपन बेटा कवि और बेटी मीना खातिर। तो चला सुनी जा ये गीत हमने चिंता ना करे होला गाना है राकेश परमेश्वर जी के गावल।

और अभी कुछ चला हमने राजन लक्ष्मण जी के गावली गाना सुनी जा, माफ करिए राजन लक्ष्मण जी के पसीन के गाना सुनी जा, और तो पसीन करे लनी गाना बसंत सिपोल जी के आवाज़ में दूल्हा राजा के लेके चले वाला गाना, राजन लक्ष्मण जी के फरमाइश के गाना हमने बजवा थे जा उनकर पत्नी माला खातिर, बेटी प्रगति खातिर और बेटी प्रार्थना खातिर, लाफलो आके परिवार हवन जा, और उनकर बहिन मानती जी हवन, भगिनी उर्मिला तुलसी हवन, और बसे के पूरा लक्ष्मण परिवार खातिर मंगले हवन।

रंभा राम तुहल जी के पोपुरी गाना चलो सुनी जाओ। और ये पोपुरी गाना तो बहुत खुशी रहे जा सुने के। आज हम इसी गाना मंगले हवन सिद्धार्थ जी सुयाक रहलन। और ये गाना मंगले हवन अपन पूरा परिवार खातिर, अपन पत्नी राधिका खातिर और अपन बेटी मनीषा खातिर। और संगे संगे उनका संगतिया लोग भी हवन जा अभी, और उनका संगतिया

0: भोजपुरी तड़का, भोजपुरी के स्वाद, संगीत के खुशबू, सुरेखा संगीत, भोजपुरी तड़का,
1: भोजपुरी तड़का,
2: भोजपुरी तड़का,
3: भोजपुरी तड़का में अभी कुछ सुनी जावनी पूर्णिमा फकीर जी के गावले को गाना पलना में झूलेला श्री राम। और ए श्री राम जी आल हवन साबित जी के घर में, साबित जी के परिवार में एगो नन्हा सा प्यारा सा राम आलबा और उनकर बेटा अजय और बहू सुनैना के माता पिता के दर्जा दे दिलेवा। तो चल ई गाना हमने ई प्यारा सन राजा बेटा के नाम करी जा।

और अब समय होलबा हमने बजावत है जब बिहारी ये हरि प्रेम जी के प्रसिद्ध के गाना प्रियोले से मंगले हवन हरि प्रेम जी गाना यह अभितानंद बीजन जी के गावत।

और चला हमने प्रस्तुत करी जा हमने के भोजपुरी तड़का कार्यक्रम के अंतिम गाना, और ये अंतिम गाना हमने आदेश ठाकुर प्रसाद जी के गावल सुना थे जा। ये गाना नया नया सफेर वाल लोग पर ध्यान देवे के एगो सलाह है, चला ये गाना सुनी जा। और ये हमने ये कार्यक्रम जब समाप्त करे जा रात के 11 बजे सुनिया जा। आज के हमने के सुनहरे पल कार्यक्रम गिनीशा के प्रस्तुति में आवतला फिर मिलब जा। तब तक खातिर शुभ रात्रि, नमस्ते।

0: This is Radio Marches.
1: Assalamu alaikum. Kim to Mauritius.
2: Namaskar.
3: Shotarandariki Hrudaya Purvaka Namaskaram.
4: Ungal anaivarukkum vanakkam.
5: Radio Mauritius par dil se swagat hai aap sabhi ka.
6: सुनहरी पल रेडियो मॉरिशस के साथ
7: गुड इवनिंग जी, नमस्कार और गिनिशा का प्रणाम स्वीकार कर लीजिए. जी हाँ दोस्तों, रेडियो मॉरिशस पर लेकर आ रहे हैं वो खूबसूरत लम्हे, वो नगमे जो दिल को सीधा गुजरे हुए जमाने में लेकर जाते हैं. आज रात सचेगी

0: एक महफिल पुराने बॉलीवुड के अमर गीतों का, लता जी की मधुर आवाज, किशोर दा की मस्ती, रफी साहब का जादू और मुकेश जी का एहसास। बिल्कुल, तो तैयार हो जाइए इस म्यूजिकल सफर के लिए जहां हर गाना एक कहानी सुनाएगा और हर सुर आपकी यादों को फिर से महकाएगा। ये है आपका सुनहरे पल ऑन रेडियो मॉरीशस।
1: ओ मेरी

आज का विश्व एक ऐसा शो है जहां हर गाना लेकर आता है यादों की खुशबू, वो दिन, वो पल, वो मोहब्बत, सब कुछ फिर से महसूस होगा इन एवरग्रीन बॉलीवुड मेलोडीज के साथ। बिल्कुल जी, अगर आज आप भी चाहते हैं अपने किसी खास को डेडिकेट करने के लिए प्यारा सा गाना, तो बस आंखें बंद कर लीजिए और उनको याद कर लीजिए और अपने उन खूबसूरत यादों के सहारे आप बस इन गीतों को एंजॉय कर लीजिए। तो जुड़े रहे हमारे साथ और बने रहे इस शाम को और भी यादगार बनाने के लिए। पुराने गीत, सुकून भरी बातें और दिल से जुड़ी यादें, बस यही है सुनहरे पल की पहचान।

आई रियली होप कि आपको दिल से अच्छा लग रहा है हर एक गाने जो हम बस पेश कर रहे हैं आप लोगों के लिए, एक ऐसी शाम जहां वक्त धीरे ही चलने लगता है दोस्त, और पुराने बॉलीवुड गीत दिल को सुकून देने लगते हैं। बिल्कुल हम हैं गिनिशा जो बड़े प्यार से आपका साथ दे रहे हैं। वैसे देखा जाए चाहे वो पहला प्यार, बचपन की यादें या किसी अपने की मुस्कान, हर एहसास को फिर से जिंदा करेंगे ये अमर नगमे। तो अपने रेडियो का वॉल्यूम जो है थोड़ा सा ऊँचा कर लीजिए, दिल को हल्का सा मुस्कुराने दीजिए हमारे साथ और खो जाइए सुनहरे पल के जादू में।

पुराने गाने सिर्फ सुनने के लिए नहीं होते हैं मेरी जान, देखा जाए तो ये महसूस करने के लिए होते हैं। और ये हमेशा इस बात को हम दोहराते रहते हैं ताकि आप दिल से महसूस करें। और इसी एहसास के साथ रेडियो मॉरीशस लेकर आए हैं एक खास म्यूजिकल सफ़र, जहां हर गीत में बसी है मोहब्बत, बसी है दोस्ती और जिंदगी की प्यारी सी मिठास। तो जुड़े रहे हमारे साथ और चलिए लौट चलते हैं उस खूबसूरत दौर में जहां म्यूजिक में सच्चा सुकून था।

those who are working right now, जी हाँ दोस्तों, बहुत कोशिश तो यानी जितने भी लोग फिलहाल ड्राइव कर रहे हैं, हम तो कहेंगे धीरे धीरे हौले हौले गाड़ी चलाना। और रेडियो का वॉल्यूम तो वैसे ही बढ़ा चुके हैं, तो चलिए ये अगला नगमा खासकर आपके नाम।

तो चलिए जी, फिलहाल के लिए इट्स टाइम फॉर निशा टू से गुडबाय टू यू. आप हमें इजाजत दीजिए. शुभ रात्रि, शब्बा खैर. फिर से मिलेंगे एक और नए सुनहरे पल के खूबसूरत सफर में.

0: रेडियो मॉरिशस
1: 800 किलोहर्ट्ज़ पर ये है रेडियो मॉरिशस
0: रेडियो मॉरिशस
1: रेडियो मॉरिशस।

आपकी खट्टी मीठी यादों में आपके संग MVC रेडियो